0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला।

0: मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित करते हैं।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं। अब सुनेंगे
2: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वो ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव एफएम बैंक पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले समूह स्वर में सुनते हैं भीष्म सिंह चौहान की ये मातृवंदना।

अभी आपने पंडित नरेंद्र शर्मा का यह भक्ति पद सुना पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। लीजिए सुनिए पीयूष कैलाश अनुस्वर में यह भक्ति पद।

0: इसी के साथ भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख सुश्री वंदना सिन्हा का है।
1: जब हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे शिक्षक अनायास ही परीक्षा के बारे में कहा करते थे कि परीक्षा मतलब पर की इच्छा। तात्पर्य ये था कि जो अपनी इच्छा से न होकर किसी अन्य की इच्छा से हो, उनकी इस बात पर हम सब विद्यार्थी बहुत जोर से हंसते थे और शिक्षक द्वारा लिए जाने वाली परीक्षा के सवालों में प्रसन्न मन से सम्मिलित हो जाते थे। विद्यालय में अध्ययन उपरांत सीखे हुए ज्ञान के मूल्यांकन के लिए परीक्षा अनिवार्य है। परीक्षा द्वारा ही हमारा मूल्यांकन सरल हो जाता है। परीक्षा एक ऐसा माध्यम है जो कि आपके ज्ञान का मापन करता है। प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा जब अस्तित्व में थी, तब से परीक्षा का अस्तित्व है। प्राचीन काल में राजा के पुत्र महल की सुख सुविधा को त्याग कर वन में अपने गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। उनके साथ अन्य जाति संप्रदाय के लोगों के बालक भी गुरुकुल के नियमों का पालन करते हुए विद्याध्ययन करते थे। उस समय गुरु उच्च कोटि के मार्गदर्शक की भूमिका में होते थे। गुरुकुल में विद्यार्थी समाज और जीवन में प्रगति हेतु सारी विद्याएं और विभिन्न कलाओं में पारंगत होने का प्रयास करते थे। विद्या ग्रहण पश्चात या मध्यांतर या कुल काल के अंतर में समय समय पर गुरुदेव द्वारा परीक्षाएं भी ली जाती थीं, ताकि इस तथ्य का अनुमान उचित रूप से लगाया जा सके कि किसने गुरु द्वारा दत्त ज्ञान को कितने अच्छे ढंग से सीखा। प्रसंगवश एक लघु कथा का स्मरण होता है। एक बार ऋषि द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे। उनके शिष्यों में पांडव और कौरव वंश के राजकुमार शामिल थे। मुनि श्रेष्ठ ने सभी को वन में ले जाकर पेड़ पर बैठे एक तोते की तरफ उंगली से इशारा करते हुए दिखाया। वो तोता जीवित न होकर नकली था। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, दुर्योधन आदि सभी शिष्यों से बारी बारी से बुलाकर एक ही प्रश्न किया कि उस वृक्ष की ओर ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। एक ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे वृक्ष, वृक्ष की टहनियां, सुंदर फूल, वृक्ष की डालियों पर विश्राम करते पक्षी और तोता दिख रहा है। दूसरे ने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया। एक एक करके अन्य ने भी लगभग समान उत्तर दिए। गुरु द्रोण कुछ क्षण मुस्कुराए, फिर कहा, पेड़ पर तोता जो बैठा दिख रहा है, तुम्हें उसकी आंख पर निशाना साधना है। सभी ने ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुना। गुरु द्रोण ने एक बार पुनः सभी के सामने अपना प्रश्न दोहराया, सामने पेड़ पर अब क्या दिख रहा है। इस बार भी सबने लगभग पुराने जवाब से मिलते जुलते से ही जवाब दिया। अंत में द्रोणाचार्य अर्जुन को बुलाकर पूछे कि बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे तोते की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने इस बार सबको तोते की आंख पर निशाना लगाने कहा। किसी का तीर तोते की आंख पर न लग सका। अंत में द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन को निशाना साधने कहे जाने पर अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण की प्रत्यंचा लगाई और बाण तोते की ओर चला दिया। सब आश्चर्यचकित थे। सहसा बाण तोते की आंख पर सटीक लगा था और वो खिलौने वाला तोता जमीन पर गिर चुका था। इस परीक्षा के द्वारा द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की एकाग्रता का मूल्यांकन कर रहे थे। परीक्षा आपके ज्ञान का स्तर बताती है। यदि सीखने में किसी प्रकार की कमी रह गई है तो उस कमी को समझकर उसे दूर करने का प्रयास विद्यार्थी को करना चाहिए। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिर पर परत निशान। अर्थात अभ्यास बार बार करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। जैसे रस्सी दिखने में पत्थर से कमजोर या लचीली दिखती है, लेकिन जब वही रस्सी बार बार पत्थर पर टकराती है तो कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाता है। अंत में परीक्षा आकलन का तरीका है, न कि कोई प्रतिस्पर्धा जो हानि पहुंचाए। हाँ, जरूर ये सकारात्मक स्पर्धा कही जा सकती है जो हर प्रकार से व्यक्ति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है।
0: चिंतन। अभी आप सुन रहे थे आलेख सुश्री वंदना सिन्हा का था। मीडियावेयर एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ पलों में। मीडियावेयर एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का।

भरत तथा कुलगुरु वशिष्ठ के साथ अयोध्या तथा जनकपुर से आए सभी लोग चित्रकूट में 4 दिनों से निवास कर रहे हैं। श्री राम को देख सभी नरनारी अत्यंत हुलसित हैं। सबकी यही इच्छा है कि वे श्री राम को साथ लिए बिना वापस न लौटें। उन्हें वन में छोड़कर जिन्हें घर नगर में रहना अच्छा लगे, समझ लेना चाहिए कि विधाता उनके विपरीत हो गया है। यदि दैव अनुकूल हो तभी राम के निकट वन में निवास करने का सौभाग्य मिल सकता है। एक दिन माताओं के पास समय देख राजा जनक का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदर सहित उनका सत्कार किया, उन्हें उचित सम्मान से आसन दिए। दोनों टोलियों के व्यक्ति पुलकित किंतु शिथिल हैं। उनकी आंखों में है प्रेम और शोक

0: श्री रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। इसके संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। मुख्य गायक स्वर वाणी जयराम का था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृषि चर्चा में पोषक तत्व के भंडार मुनगा की जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर बीएस असाटी।
1: जय जोहार। आज हम चर्चा करेंगे मुनगा के पोषक तत्व के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि मुनगा को सुपर फूड के रूप नाम से जाना जाता है और इसको न्यूट्रिशनल डायनामाइट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये दुनिया की ऐसी क्रॉप है जो पोषक तत्व में सबसे शक्तिशाली मानी गई है, इसलिए इसको बोला जाता है मोस्ट न्यूट्रिशनल क्रॉप इन द वर्ल्ड। तो इस मुनगा कि इस गुड़ के कारण हमारे छत्तीसगढ़ में सभी लोग इसको बाड़ी बेड़ा में लगाते हैं, एक पौधा के रूप में, दो पौधा के रूप में लगाते हैं, और कुछ वर्षों में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से इसको व्यावसायिक रूप से इसकी खेती की जाती है। और देखा जाए तो इसको 4F प्लांट बोलते हैं, फ्यूल, फॉडर, फर्टिलिटी और फूड। इसका हर भाग उपयोग में लाया जाता है, जड़ हो, पत्ती हो, फूल हो, तना हो। और देखा जाए अनुसंधान से ये पाया गया है कि पत्ती में ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं वनस्पति की उसके फल और फूल में, इसलिए पत्ती का उपयोग भी आजकल खेती के माध्यम से किया जाने लगा है। और पोषक तत्व की यदि अपन इसकी पत्ती की बात करें या फल की बात करें तो दूध से 4 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत करता है, और ख़ासतौर से बच्चों को, महिलाओं के लिए कैल्शियम ज़्यादा आवश्यक रहता है। और विटामिन सी जो दांत की बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है जिसकी कमी से, तो संतरे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी अपने मुनगा में पाया जाता है, इसकी पत्तियों में, इसके फल में। केला से 3 गुना ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, शरीर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और गाजर से 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए जो हमारे आँख की रोशनी के लिए उपयुक्त रहता है, जिससे रतौंधी की बीमारी नहीं आती। प्रोटीन जो हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करता है, बॉडी बिल्डिंग के रूप में जानते हैं। 2 गुना ज़्यादा दही से इसमें अपन पाया जाता है। और खून बढ़ाने के लिए जो पोषक तत्व जिम्मेदार होता है, आयरन, जो खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए खून की आवश्यकता होती है, तो पालक से 3 गुना ज़्यादा इसमें आयरन पाया जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखा जाए तो ये पूरे पोषक तत्वों से भरपूर क्रॉप है, इसलिए शासन का भी ये प्रयास रहता है कि इसको आंगनबाड़ी में या फिर मध्यान्ह भोजन में इसको शामिल किया जाए। तो अपना छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रयास कर रही है कि इसका उपयोग हम कैसे भोजन में शामिल किया जाए, जिससे ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर उनके पोषक लेवल को, आवश्यकताओं को बढ़ाया जा सके। और यदि अपन देखते हैं छत्तीसगढ़ का आंकड़ा, तो 37% कुपोषण है जो ICMR की रिपोर्ट है अपने भारत में, 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं। और यदि महिलाओं में खून की कमी की बात करें, एनीमिया जिसको बोलते हैं, 41% तक जो नीति आयोग बोलता है अपने छत्तीसगढ़ में। तो इतनी ज़्यादा समस्याएं ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, तो इसको जो दूर कर सकता है वो एक मुनगा ही एक सर्वोत्तम विकल्प है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस पर जोर दिया है हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से कि कैसे मुनगा को कहीं ना कहीं उनके भोजन में शामिल किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने भी प्रयास किया है कि बहुत सारे उत्पाद पत्तियों से तैयार किए हैं, जिसमें बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के सहयोग से 3 साल के अनुसंधान से हम लोगों ने एक मुनगा चाय बनाया, जिसको छत्तीसगढ़ मोरिंगा हर्बल टी के नाम से जानते हैं, जिसमें मुनगा की पत्ती का उपयोग के साथ साथ स्टीविया का उपयोग करके हम लोगों ने एक एंटीऑक्सीडेंट रिच बनाया, जो हमारे शरीर को एक ताजगी के साथ साथ आपके लिए एक पोषक तत्व का विकल्प बन सकता है। इसके अलावा मुनगा के लड्डू बनते हैं, मुनगा की चॉकलेट बनती हैं, और अलग अलग शासन ने भी अलग अलग जिला प्रशासन के सहयोग से मुनगा के आउटलेट भी खोलने का प्रयास किया है, जिसमें आप टोस्ट, बिस्किट, कुकीज़, ये सब भी मिलते हैं सूरजपुर में, रायपुर में। और इसके गुण को देखते हुए अपने छत्तीसगढ़ का मुनगा जो है विदेश तक भी गया है, इवन अमेरिका में भी इसकी डिमांड रही थी यहाँ के मुनगा के पत्ते की, और एक स्वस्थ जीवन अपन इसको तैयार कर सकते हैं और एक आर्थिक आमदनी ले सकते हैं। राम राम।
0: कृषि चर्चा में पोषक तत्व के भंडार मुनगा की जानकारी दे रहे थे डॉक्टर बीएस असाटी। मीडिया में एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, आइए आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। संदेश टू सोल्जर्स, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 4 बजे। स्पोर्ट्स सीन का समय होगा रात 8:30। इन कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10 बजे सुनिएगा पंडित कुमार गंधर्व का गायन राग पूरिया धनाश्री में। प्रगति के सोपान का समय होगा सुबह 9 बजे। इसमें आप सुनेंगे पीएम स्वनिधि योजना पर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पीएम स्वनिधि के स्टेट नोडल अधिकारी श्री सुनील अग्रहरी से रमाशंकर की बातचीत। गांठ, ये नाटक का समय होगा रात 9:30। लेखक श्री डीएस भटनागर और निर्देशक होंगे सत्येंद्र शरत। बच्चों का कार्यक्रम बालवाटिका का समय होगा सुबह 8:30। इसमें बेरा के बाद में चर्चा होगी पढ़ाई और खेलकूद माँ संतुलन जरूरी है। साथ ही सुनेगा श्री कामता प्रसाद साहू की वार्ता छत्तीसगढ़ के बांध, और होगा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मंदलोर विकासखंड अभनपुर जिला रायपुर के लयिका मन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम फुलवारी। निर्देशक हैं सुश्री सीमा भाट शंकर और श्री केशवराम साहू। प्रस्तुति बीरभान साहू की होगी। दोपहर 1:30 पर प्रसारित होगा महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। इसमें आज की बात का विषय होगा जरूरी है कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान। साथ ही सुनेगा हेलो बिंदिया और दीदी की सलाह में बच्चों में डालें सफाई की आदत पर होगी चर्चा। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी शाम 5:10 पर छत्तीसगढ़ी में। अपन गोट का विषय होगा गांव के मेधावी मन ले सीख लेना चाहिए। साथ ही सुनेगा कार्यक्रम पहुना जोहार में चित्रकला से जुड़े कलाकार श्री शिवा साहू से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता होंगे दीपक तिवारी और होगा हमर गांव। किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा परंपरा के संग नवाचार ने आर्थिक लाभ कमाओ। शाम 7:30 पर किसानवाणी में आज की सलाह में लाख की खेती अपनाओ आर्थिक लाभ कमाओ की जानकारी देंगे डॉक्टर योगेश कुमार मिश्राम। सुबह 7:05 पर सुनिएगा हमारा दैनिक प्रसारण नमस्कार रायपुर। सुबह 9:40 और रात 8:15 पर लोक संगीत कार्यक्रम में प्रसारित होगा बांस गीत। कलाकार होंगे गुलाल राम निषाद और साथ ही किस्सा होगा हरिश्चंद्र और तारामती का। दोपहर 12:30 पर लोक सुधा में सुनेगा आदिवासी जनजाति संगीत में सरगुजिया गीत। कलाकार होंगे शिवराम भरोस राम और साथी। इसी कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे मंत्राम पटपरिया और साथियों के गाय छत्तीसगढ़ी गीत। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का समय होगा दोपहर 12 बजे और प्रायोजित कार्यक्रम तो दीदी के गोट का समय होगा दोपहर 2 बजे। इसके प्रायोजक होंगे छत्तीसगढ़ संवाद। प्रायोजित कार्यक्रम हमारा हाथी हमारे गोट सुनेगा शाम 5 बजे। ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिराष्ट्र यात्रायाः द्वितीये चरणे ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबोर्न नगरं सम्प्राप्तवान्। ह्यः तस्य आगमन समये ऑस्ट्रेलिया देशस्य नगरावासन मंत्री क्लेयर ओ नील इत्येषा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्नेहपूर्वकं स्वागतम् अकरोत्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् इयं यात्रा भारताऑस्ट्रेलिया समग्र सामरिक सहभागितायाः ऊर्जां वर्धिष्यति इति। सामाजिक संचारपटले एकस्मिन् संदेशे श्री मोदी अवदत् यत् असौ ऑस्ट्रेलिया देशस्य समकक्षेण एंथनी एल्बनीज इत्यनेन सह संवादम् आचरिष्यति। असौ एतदपि कथितवान् यत् भारताश्ट्रेलिया सहभागित्वस्य महत्वपूर्णस्तम्भेन भारतीय प्रवासिना सह संवादाय अवसरः अपि प्राप्स्यामि इति। यात्रावधौ श्रीमोदी तृतीये भारताश्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। असौ भारताश्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मञ्चे अपि भागं ग्रहीष्यति।

0: यत्र सः उभय देशयोः प्रमुखानां व्यापार नेतृणां समागममपि सम्बोधयिष्यति। भारत म्यांमार देशौ द्वैपाक्षिक सुरक्षा सहकारिता विषये चर्चां कृतवन्तौ। द्वैपाक्षिक संवाद व्यवस्थायाः अन्तर्गते प्रगतिं च समीक्षितवन्तौ। भारत म्यांमार देशयोः मध्ये त्रयोविंशतितमं द्विदिवसीय राष्ट्रिय स्तरीय सम्मेलनम् अद्य ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् भयोत्पादनं विद्रोहः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं शस्त्राणां क्रयविक्रयणं मानवव्यापारं वन्यजीवानां क्रयविक्रयणम् इत्यादीनां संघटितानां अपराध प्रकाराणां निवारणार्थं सहकारिता विषये उभयपक्षौ चर्चां कृतवन्तौ। भारत रूस देशाभ्यां ह्यः संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स यूरेशियन समूह शंघाई सहयोग संघटनानि समेत्य बहुपाक्षिक मंचेषु आतंकवाद रोधी सहयोगम् इतोपि सुदृढीकरणस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूहस्य चतुर्दशोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितमासीत्। द्वौ देशौ सीमापारे आतंकवादं समेत्य आतंकवादस्य सर्वेषां रूपाणां अभिव्यक्तिनां च निन्दां कृतवन्तौ। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनम् मध्यप्रदेशस्य श्योपुर नगरस्य एरियल डिलीवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इत्यस्य ड्रॉप जोन इत्यत्र गगनयान उपक्रमस्य कृते महत्वपूर्णम् एकीकृतम् IMAT इति परीक्षा सफलतया आयोजिता। भारतर्तु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृषे उत्तर अरब सागर राजस्थान गुजरात हरियाणा पंजाब इत्येतेषां शेष भागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूलः अस्ति। अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय बिहार पूर्व राजस्थान मध्य प्रदेश उप हिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम पश्चिमोत्तर प्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन ह्यः श्री अमरनाथजी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वैः तीर्थयात्रिभिः पञ्जीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकञ्च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पञ्जीकरणं करणीयम् अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पञ्जीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा अस्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है।
2: भारत आपके फंड्स को सेफ स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने कीप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी

0: 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के फिर से किए गए हमलों को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद किए गए हैं। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4th मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले 3rd मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रायपुर सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक प्रसारण। नमस्कार रायपुर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय पाठक का नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन।

श्रोताओं, इन दिनों मौसम का रंग थोड़ा सा अलग है। आसमान में बादलों का पहरा है और मौसम में एक अलग तरह की नमी है।

ठंडी हवाओं के झोंके इसमें झूमते तरुअर, नदियां और तालाब भी मानो सरगम गा रही हों। प्रकृति भी हरे रंग का चादर ओढ़ने के साथ सृजन का राग गा रही हो। ऐसा मौसम हमारा मन बरबस ही मोह लेता है, कुछ पल सुकून के दे जाता है। बारिश होने के बाद अब किसान भी हल और बैल लेकर खेतों की ओर रुख कर रहे हैं। नमी भरे मौसम में छोटे छोटे जीवाणु और विषाणु भी पैदा होते हैं जो बीमारी के कारक होते हैं। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी बरतनी जरूरी है, पानी उबालकर पीना जरूरी है। साथ ही यदि हम नदी या बड़े नहरों या तालाब या तलैया की ओर जा रहे हैं तो सावधानी बरतना भी जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी हटी तो दुर्घटना की आशंका बनी रह सकती है, ऐसे में लापरवाही हम पर भारी पड़ सकती है।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
3: श्रोताओ, सफर की जल्दबाजी में कई बार यात्री अपना रेलवे आरक्षण काउंटर से लिया हुआ टिकट, जो कंफर्म सीट वाला होता है, भूल जाते हैं और ट्रेन में बैठने के बाद टिकट याद आते ही उन्हें ये चिंता सताने लगती है कि टीटी बिना टिकट मानकर भारी जुर्माना वसूल करेगा। हालांकि भारतीय रेलवे के नियमों में ऐसे यात्रियों के लिए एक व्यवस्था है, जिसके तहत तय प्रक्रिया अपनाने पर बिना जुर्माने की यात्रा पूरी की जा सकती है। यदि कोई यात्री रेलवे काउंटर से जारी वैध आरक्षित यानी PRS का टिकट घर पर भूल गया है, खासकर काउंटर टिकट होना इसमें ज़रूरी है और ट्रेन में सवार हो चुका है, तो उसे सबसे पहले ट्रेन में मौजूद TTE को इसकी जानकारी देनी होगी और फिर अपने परिजनों से मूल टिकट लेकर उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर के पास पहुंचने के लिए कहना होगा जहां से आपने यात्रा शुरू की है। स्टेशन मास्टर टिकट का सत्यापन कर रेलवे के सिस्टम के माध्यम से संबंधित ट्रेन स्टाफ और आगे के स्टेशन को इसकी सूचना भेजेंगे। सत्यापन की आधिकारिक सूचना मिलने के बाद TTE यात्री पर कोई जुर्माना नहीं लगाएगा और यात्री अपना यात्रा जारी रख सकेगा। ये सुविधा केवल उन यात्रियों के लिए है जिनके पास वैध काउंटर से जारी आरक्षित टिकट है, लेकिन वो गलती से घर पर छूट गया है। इसका उद्देश्य वास्तविक यात्रियों को अनावश्यक परेशानी से और जुर्माने से बचाना है। इस व्यवस्था के पहले यदि कोई यात्री अपना काउंटर टिकट साथ नहीं रखता था तो TTE उसे बिना टिकट मानते हुए रेलवे अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करता था। कई मामलों में यात्रियों के साथ यात्रा के नियमों के अनुसार जुर्माना भी वसूला जाता था। अब निर्धारित सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने से ऐसे यात्रियों को राहत मिल सकती है।

इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में इन दिनों ऑनलाइन प्रवेश का सिलसिला चल रहा है। स्नातक और स्नातकोत्तर विषयों के विद्यार्थी 15 जुलाई तक प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए इग्नू की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रवेश शुल्क भी जमा कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर उपाधि यानी MRD और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा MBA के साथ BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSW, BCA, MCA, MA, भागवत गीता, MA ज्योतिष और विभिन्न पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। MA अर्थशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, संस्कृत, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, MSc जियो इन्फॉर्मेटिक्स और PG CGI और PG DGI की कक्षाओं में प्रवेश ले सकते हैं। इस तरह जो बच्चे नियमित कक्षाओं में प्रवेश नहीं ले सकते या किसी कारणवश उनमें कुछ परेशानी है तो वे इसमें जाकर अपना पढ़ाई पूरी कर सकते हैं।

इंजीनियरिंग में प्रवेश के दौरान जल्दबाजी में चुनी गई ब्रांच अगर अब पसंद नहीं आ रही है तो ऐसे छात्रों के पास इसे बदलने का मौका है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने बीटेक के छात्रों को बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय ने बीटेक के में तीसरे सेमेस्टर के विद्यार्थियों को अपनी पसंद का और करियर प्लान के हिसाब से ब्रांच बदलने की अनुमति दी है। इस फैसले से उन छात्रों को फायदा होगा जिन्हें पढ़ाई शुरू करने के बाद लगता है कि वो किसी दूसरे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके लिए सभी कॉलेजों को अपने स्तर पर इंटरनल यानी आंतरिक काउंसलिंग करनी होगी। ब्रांच बदलने के इच्छुक छात्रों की अंतिम सूची कॉलेज को तैयार करके 31 जुलाई तक विश्वविद्यालय को भेजनी होगी। तय तारीख के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन या सूची स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे में छात्रों को समय रहते अपने कॉलेज में संपर्क करना होगा। ब्रांच बदलने वाले हर छात्र को कॉलेज में लिखित में अंडरटेकिंग जमा करनी होगी। इसमें छात्र को स्वीकार करना होगा कि नई ब्रांच के अतिरिक्त ब्रांच स्पेसिफिक विषयों को पास करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी होगी। ब्रांच परिवर्तन के लिए प्रति छात्र 1,000 रुपये उन्हें शुल्क जमा करना होगा।

वायुसेना ने अग्निवीर वायु और ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट के लिए भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 22 और 23 सितंबर को होगी। आवेदन के लिए ₹550 परीक्षा शुल्क देना होगा। आवेदन में हाल ही की रंगीन फोटो अपलोड करनी होगी। फोटो में उम्मीदवार के सीने के सामने काली स्लेट होनी चाहिए। उस पर सफ़ेद चौक से कैपिटल लेटर में उनका नाम और फोटो की तारीख लिखी हो। फोटो एक महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। केंद्र पर पहचान के लिए आधार कार्ड भी लेकर जाना अनिवार्य होगा। इस तरह वायुसेना में अग्निवीर की सेवाएं दे सकेंगे। कभी

0: जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र और हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 10 जुलाई को जिला स्तरीय रोजगार मेला लगाया जा रहा है। ये मेला विश्वविद्यालय के नए परिसर पोटिया कला में लगेगा। मेले के लिए 15 नियोजकों से 1342 तकनीकी और गैर तकनीकी रिक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। इसकी जानकारी रोजगार विभाग की वेबसाइट www.erozgar.cg.gov.in या छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप पर उपलब्ध है। विभिन्न पदों के लिए 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर आईटीआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग MBBS, BAMS, नर्सिंग और पैरामेडिकल सहित अन्य योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए रोजगार पंजीयन आवश्यक बताया गया है। रिक्तियों का विवरण रोजगार विभाग की वेबसाइट और छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग से संपर्क कर सकते हैं। शिविर में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों को सभी दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ फोटोकॉपी लेकर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
1: हंसो मत, बोलो

सुबेदार उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर की प्रारंभिक परीक्षा 12 जुलाई को होगी यानी रविवार को। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदेश के सभी जिलों में तय परीक्षा केंद्रों में होगी। इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 26 जून को जारी किए जा चुके हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग किसी भी अभ्यर्थी को अलग से प्रवेश पत्र, सूचना या फिर SMS नहीं भेजेगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC ने सुबेदार उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लेकर अधिसूचना जारी कर दी है और इसकी परीक्षा राज्य के सभी जिलों में होगी। तो इसलिए निश्चित समय पर उपस्थित होकर आप जो परीक्षा उम्मीदवार हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं।

0: कराओ आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
1: 47 बच्चन ले सौलग सेवा माँ।
0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
2: नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है। कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। छात्र 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर को होगी। परिणाम मार्च 2027 के अंत तक जारी होने की संभावना है। आवेदन के लिए छात्र का वर्ष 2026-27 सत्र में कक्षा पांचवी में पढ़ना जरूरी है। उसका जन्म 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होना चाहिए। छात्र केवल अपने गृह जिले के नवोदय के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा OMR आधारित होगी और इसमें 80 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 100 अंकों के होंगे।

अभी आपने नौकर फिल्म का एक गीत सुना। ये फिल्म आया गया था अभिनेता संजीव कुमार पर। श्रोताओं आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, इसकी एक वजह है तो ये है कि समय की अपनी गति है, उसकी अपनी चाल है। इसकी गति किसी भी परिस्थिति में कम या ज़्यादा नहीं होती। समय की इसी गति में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने अलग और अनोखे काम से अपना नाम कर जाते हैं। आज 9 जुलाई है। आज के दिन वर्ष 1925 में अभिनेता, निर्देशक और निर्माता गुरुदत्त का जन्म हुआ था। उन्होंने CID, प्यासा, आर पार, कागज़ के फूल, 14वीं का चांद, शर्त, साही बीवी और गुलाम जैसी कई कालजयी फिल्में बनाई और इससे वे अमर हो गए। इसी तरह वर्ष 1930 में आज के दिन यानी 9 जुलाई को भारतीय अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक श्री बीके बालचंद्र का जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी फिल्मों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। और इसी तरह आज के दिन यानी जैसे हम इस बात के पहले चर्चा

कर रहे थे अभिनेता हरिभाई जरीवाला यानी संजीव कुमार का जन्म वर्ष 1938 में हुआ था। उन्होंने शोले, सीता और गीता, राजा और रंक, संघर्ष समेत कई फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इन अभिनेताओं ने अपनी फिल्मों से हमारे बीच ये हमेशा बने रहेंगे। और अब आइए आपको सुनाते हैं अभिनेता, निर्माता, निर्देशक गुरुदत्त और फिल्माई गई ये गीत का।

तो श्रोताओं, आज की मुलाकात बस इतनी। दीजिए कार्यक्रम से अपने रेडियो दोस्त संजय पाठक को अनुमति, स्वीकारें हमारा नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक प्रसारण नमस्कार रायपुर, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को हैं समाचार प्रभात, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल

0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1000 करोड़ रुपए से अधिक है।

0: इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
2: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान,

0: अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोकसत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओज फोरम इन मेलबर्न, सेज इट इज नेचुरल एंड एसेंशियल फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू मूव फॉरवर्ड एज ट्रस्टेड पार्टनर्स इन अ वर्ल्ड मार्क्ड बाय अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड एनर्जी क्राइसिस। Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सी का समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस

0: बच्चों जय हिंद।
1: बालवाटिका सुनैया जम्मो नान्हे संगवारी मल्ला चंचल दीदी के जय जोहार। संगी हो, जब हमन नान्हे नान्हे रहें ना, तब हमर दाई दादा मन कहे, पढ़ू लिखू बनहू नवाब, खेलहू कूदहू तब बनहू बनिहार। फिर संगवारी हो, ये कहावत तब बदल गए। अब जेन खेलते कूदते ओहू है नवाब बन जाते। फिर एक ठन बात 16 आना सही आए, जेन व्यक्ति हा पढ़ाई और खेल कूद में संतुलन रखते ना, ओकर जीवन ज्यादा खुशहाल रहते। काबर जिहा पढ़ाई लिखाई ले हमार बौद्धिक विकास होते, वहां खेल कूद तको हमार शारीरिक और मानसिक विकास बड़ जरूरी है। फिर भाई, जैसे खाना बनावत समय सब्जी में नमक मिर्ची हल्दी के संतुलित मात्रा डाले मा स्वादिष्ट सब्जी बनते, उसने पढ़ाई और खेल कूद में संतुलन रखे ले हमार शारीरिक और मानसिक दोनों विकास बराबर होते। जेकर ले शिक्षा तको हमार मजबूत होते और हमार शरीर तको हष्ट पुष्ट होते और मन तको प्रसन्न रहते। संगवारी हो, कहे जाते स्वस्थ तन स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर अगर होगे तब ज्ञान मान धन सबो मिल जाते। तेकरे सेती कोनो चीज ला कम या कोनो चीज ला अति नहीं करना चाहिए। संतुलित जीवन शैली रहन सहन हम लोग विकास के दद्दा मा ले जाते। तब भाई आप मन खेल कूद और पढ़ाई में संतुलन बना हो। हाँ, एक बात ध्यान रखो, अकेला मोबाइल में गेम खेले ले हमार विकास रुक जाते, मन चिड़चिड़ा हो जाते, पढ़ाई में मन नहीं लगे। तेकरे सेती अपन नान्हे संगवारी मन संग हम पुराना खेल जैसे गिल्ली डंडा बाटी बिल्लस भावरा

0: हल्ली जैसन सामूहिक खेल खेलना चाहिए, जेकर से हमन ला एक दूसरा ला जाने समझे के मौका मिले और दोस्ती तको मजबूत होए। तो समझ गयो ना, अब पढ़े लिखे ले तो दुनिया जाने के अवसर मिलते। तो संगवारी हो, ये गोड बात तो होते रही, आवो सुनन एक ठन सुंदर गीत जिला स्वर दे नवलदास मानिकपुरी और अनसुईया मानिकपुरी है।
1: सुना ध्यान ला।

संगवारी हो, अभी हमन सुनत रहिन सुघ्घर अकन ले गीत। तो अब हमन नान्हे संगवारी मन अपन बारी के इंतजार करत होही हमर क्रम फुलवारी मा। आवाज के फुलवारी ला सजा के लाहे शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मंदलोर विकास खंड अभनपुर जिला रायपुर के नान्हे संगी मन। और वे कार्यक्रम ला निर्देशित करे शिक्षिका सुश्री सीमा भाटशंकर और शिक्षक श्री केशव राम साहू। प्रस्तुत करता है बीरभान साहू जी।

0: बाल वाटिका सुनैया जम्मो नान्हे संगवारी मन ला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मंदलोर विकास खंड अभनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के जम्मो संगवारी मन के
1: जय जोहार।
0: संगवारी हो, हमर आसपास के पेड़ पौधा नदी नरवा और हवा हा हमर जिंदगी के आधार आए जिला हमन पर्यावरण कैथन। यला साफ नहीं रखबो तो हमर जीवन मुश्किल में पड़ जाही। संगवारी हो, यही पर्यावरण संरक्षण विषय ला लेके नाना कार्यक्रम के साथ उपस्थित हन शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मंदलोर के लइका मन। तो चलो आप मन सुनो ये कविता ला जेला प्रस्तुत करत है हमर साथी झरना यादव हा।

0: करके बनाबो। जय जोहार।
1: तो अभी हमन सुनत रहे झरना यादव के कविता, बहुत सुंदर कविता। आओ संगी मिलके गाबो, हमर गांव ला स्वर्ग बनाबो। अब हमन सुनबो एक लघु वार्ता, जैनला प्रस्तुत करत हवे कक्षा 8वीं के साथी भाई डेमन देवंगन और प्राची साहू।
2: राम राम देवन भाई, कहाँ जावत हस और चिप्सा ला खा के झिल्ली ला रद्दा में फेंकत हस, ये बात ठीक नो हरे।
3: राम राम प्राची बहनी, एक थक नानुक झिल्ली ला फेंके ले का हो जाही। पूरा गांव में तो जगह जगह कचरा झिल्ली और कूड़ा करकट बगरे है।
2: यही तो हमार सबले बड़े गलती यार डेमन भाई, ते ऐसा सोचबे ता तोर असन सोचैया हमार गाँव में और मनखे हावे, तब तो हमार गाँव में कचरा के ढेर बन जाही। जगह जगह प्लास्टिक झिल्ली फेंकत रहो तो ये सबसे पर्यावरण नुकसान है, काबर की ए झिल्ली और प्लास्टिक कभी नहीं सड़े।
3: माटी में नहीं सड़ी तो का होइस, हमला का करना है और हमला का फर्क पड़ी।
2: कतनो फर्क पड़ी भाई, ए प्लास्टिक के मारे खेत के माटी बंजर हुआ थे, पानी में बोहा के दरिया में जाते तो पानी ला गंदा करते, और कोनो गाय गरु बछरु एला खा डरिस तो ओकर प्राण घलो चल देते।
3: तोर गोड़ तो सही लागत है प्राची बहनी, फिर हमन रुख राई ला घलो कतना काटत हन और एको ठक पेड़ पौधा लगावत घलो नहीं हन।
2: यहू चिंता के गोठ हरे डेमन भाई, रुख कटत है तो गर्मी बाढ़त है, समय में पानी तक नहीं गिरत है, जौन साफ और शुद्ध हवा हमन ला रुख राई ले फोकट में मिलत है वहू है एक दिन अस्पताल में पैसा दे के लेबर लागी।
3: सिरतोन के है प्राची बहनी की ये सब बोलला तो मैं कभू सोचे तक नहीं रहे हूँ, मोला क्षमा कर दे प्राची बहनी, मैं अभी वो झिल्ली ला उठा के कचरा डब्बा में डाल हूँ।
2: वाह डेमन भाई, एला कही थे समझदारी, यदि आज हमन पर्यावरण ला बचाबो तभी हमार काली भविष्य बाँची।
3: हाँ प्राची बहनी, अब ले मैं घलो प्लास्टिक के उपयोग ला बंद करूँ, पानी अकारत नहीं बोहा और अपन जन्मदिन में एक ठक रुख जरूर लगाबो,
1: रुख लगाबो भूइया बचाबो।
3: अभी हमन सुनत रहें कक्षा 8वीं के संगी डेमन देवंगन प्राची साहू के एक लघु वार्ता। ये वार्ता ले सीख मिलते कि हमार छोटे छोटे आदत हा पर्यावरण ला कतना नुकसान पहुँचाते और छोटकुन सुधार तको हा कतना बदलाव ला सकते। त संगी हो, यही कड़ी में हमन सुनथन एक प्रयक प्रसंग जिला प्रस्तुत करत हवे कक्षा 8वीं के साथी छाया पटेल।
4: संगवारी हो, मैं आप मन ला एक प्रेरक प्रसंग सुनावत हाँ, जे हर गेटा थन वर्ग के आए। उमर छोटे है त का होइस, हौसला बड़े है। साल 2018 मा स्वीडन के एक स्कूली लड़का ग्रेटा थनबर्ग ह देखिस कि दुनिया के बड़े बड़े नेता मन पर्यावरण और गर्मी बाढ़े के ऊपर सिर्फ बड़े बड़े गोड़ बात करते, फिर कोनो ठोस कदम नहीं उठावे। ओ ह सोचिस कि अगर हमर आगू के दिन ह सुरक्षित नहीं है तो हमर स्कूल जाके पढ़े के का फायदा। ओ ह अकेला अपन स्कूल के पढ़ाई ला छोड़िस और अपन देश के संसद के बाहर मा एक ठन तख्ती धर के बैठ गए, जेमा लिखे रहीस पर्यावरण बर स्कूल के हड़ताल। शुरू मा मनखे मन ओला एक लड़का समझ के ध्यान नहीं दीन, फिर ओकर कड़ा निर्णय ला देख के धीरे धीरे दुनिया भर के लाखों लड़का मन ओकर संग जुड़ गीन। नतीजा ग्रेटा के छोटकुन कदम हा फ्राइटेज फॉर फ्यूचर नाम के बड़े आंदोलन के रूप ले

0: देश जेमा दुनिया भर के लाखों लइका मन सड़क मा उतर के सरकार मन ले पर्यावरण बचाए के मांग करीन। संगवारी हो, एकर ले सीख मिलथे कि अपन आवाज उठाए बर अउ पर्यावरण के हल में ठाढ़े होय बर हमर उमर कभू छोटा नहीं होवय।
1: सुघर प्रयाग प्रसंग सुनावत रहीस बहनी छाया पटेल ह, जेकर ले हमन ला सीख मिलथे अपन आवाज उठाए बर अउ पर्यावरण के हक मा खड़े होय बर उम्र कभू छोटे नहीं होय। संगी हो, आओ अब एक कविता सुनथन जेला रखत हवय कक्षा 8वीं के भाई ऋतुराज वर्मा ह।
2: संगवारी हो, आओ हम सब मिल के हमर धरती मैया बर एक कसम खाबो। पेड़ लगाबो, पानी बचाबो, करबो धरती के मान, तबे सुरक्षित रही जाही हमर अउ सब जीव के प्राण। चारों कोती हरियर जंगल, हरियर हरियर डारा हो, चिड़िया मन के सुघर बोली गुंजे संगी सारा हो, नदिया नरवा तरिया मन मा साफ साफ जल बहे दो, प्रकृति के ये सुंदर रूप ला सब को आप सहे दो। पानी बिन ये दुनिया सूना, सूखा जाते खेत खार, अन्न कहाँ ले पाबो संगी, रोवत है ये संसार। पुरखा मन के रद्दा धर के रूख राई ला अब बचाबो, अपन घर के अंगना बारी सुंदर सफा बनाबो। मत काटो अब रूख राई ला, विपदा भारी आ जाही, जोन पेड़ ला आज काटू ओकर छाँव का पहू। घर घर में तय एक पेड़ लगा के धरती के ये मान बढ़ावा, आने वाला पीढ़ी भर सुघर सुंदर कल बनाओ। पर्यावरण बचाना हम सबके जिम्मेदारी है संगवारी, प्रकृति ले ही हमार जिंदगी की उजियारी है संगवारी। संगी हो, मैं हाँ खुद अपन जन्मदिन में एक पेड़ लगाथों और ओकर सुरक्षा तको करथों, और आपो मन से निवेदन है कि आपो मन अपन जन्मदिन में एक पेड़ लगाओ और ओकर सुरक्षा तको करो और धरती मैया ला सुघर बनाओ। धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर कविता सुने हैं भाई ऋतुराज वर्मा के, और ओकर संदेश पर्यावरण बचाना हमार जिम्मेदारी है। ता आओ आप मन ले विनती है, आपो मन अपन जन्मदिन में एक ठक पेड़ जरूर लगाओ और ओकर सुरक्षा तको करो। आओ अब हमन एक कहानी सुनथन जिला सुनावत हवय कक्षा 7वीं ले साथी भाग्यश्री साहू ह।
3: धारणी 14 साल के एक जन समझदार लइका रहीस, ओहा रायपुर में पढ़ाय। ए दारी गर्मी के छुट्टी मा ओहा अपन दादा अउ दादी के गांव मंदलोर गे रहीस। धानी अपन बचपना मा सुने रहीस कि मंदलोर गांव ह चारों मुड़ा ले हरियर हरियर साफ सुथरा अउ सुघ्घर नदी नरवा वाला गांव हरे। फिर जब ओहा गांव पहुँचिस त गांव ला देख के बड़ा धक्का लागिस। बदलत गांव अउ पनपत संकट, नदी के पानी अब साफ नहीं रहीस, ओमा प्लास्टिक के झिल्ली, चिप्स अउ कुरकुरे के पाउच तौरत रहीस। तरिया के तीर मा अउ खेत खार मा माटी के जगह प्लास्टिक के ढेर जमे रहीस। गर्मी अउ प्रदूषण के मारे सांस ले मा घुटन महसूस होवत रहीस। एक दिन धानी हा देखिस कि एक ठन गाय हा खेत के तीर मा पड़े प्लास्टिक के झिल्ली ला चाबत रहीस। ओहा तुरंते दौड़ीस अउ गाय के मुंह ले प्लास्टिक ला निकालीस। ओहा समझ गे कि यदि ए प्लास्टिक के राक्षस ला समय रहते नहीं रोकबो ता हमर पुरखा मन के सुघर गांव बर्बाद हो जाही। ओहा खुद कुछ करे के सोचीस। ओहा अपन गांव के संगी अउ संगवारी क्षमा प्राची अउ छाया मन ला सकेलीस अउ ओ मन ला समझाइस। संगी हो, हमन अब 14 बरस के हो गए हन, हमन सिर्फ लइकन ओहन जेमन कुछ नहीं कर सकन। ये हमर पर्यावरण हा हमर भविष्य आय। यदि हमन आज चुप रहबो त काली साफ हवा अउ पिए बर साफ पानी नहीं बाछी। सबो लइका मन मिल के अपन टोली के नाम मंदलोर के इको वारियर्स राखीन। इको वारियर्स के काम काज धानी अउ ओकर संगी मन मिल के 3 बड़े काम करीन। पहला इतवार सफाई अभियान, हर इतवार के दिन लइका मन हाथ में दस्ताना अउ

0: जूट के बोरा धर के निकले ओमन नदी तरिया के तीर मन ले जम्मो प्लास्टिक कचरा मन ला सकेले। दूसरा प्लास्टिक के बदला कपड़ा के झिल्ली लइका मन घर के पुराना फटे साड़ी और कपड़ा मन ले सुग्घर सुग्घर थैला बनाइन। ओमन ए थैला मन ला गांव के साग भाजी और किराना दुकान मा मुफ्त में बाटिन। तीसरा कचरा के कंचन माने सोना प्लास्टिक के बोतल मन मा माटी भर के लइका मन ओमे छोटे छोटे पौधा ला लगाइन और स्कूल के दीवार मा टांग के एक ठन सुग्घर गार्डन बना दिन। बड़े मनखे मन के आँखी खुल गए ओ मन देखिन कि लइका मन के मेहनत ले नदी ह कांच कस साफ दिखत थे और दुकान मन में झिल्ली के कचरा नहीं निकलत हे। तब बड़े मनखे मन ला अपन लापरवाही के शरम आगे। गांव के सरपंच ह लइका मन ला सम्मान करिस और पूरा मंदलोर गांव मा सिंगल यूज प्लास्टिक मा कड़ा प्रतिबंध लगा दिस। ए कहानी के सीख बदलाव लाए बर उम्र छोटे बड़े नहीं होवे बल्कि हमर सोच और सही कदम मायने रखते।
1: संगी हो अब हमन सुनथन एक लघु नाटिका धरती मैया के दुख जिला रखत हावय लिकेश देवांगन ऋषभ देवांगन डेमन देवांगन ओम प्रकाश ध्रुव और हमर बहने आरती यादव।
2: सुनो कोनो है जो मोर विनती ला सुनही मैं ह धरती मैया हरव। ए मनखे मन अपन लालच म मोर जम्मो हरियर हरियर रुख राई ल काट डरिन मोर नस म बहैया सफा पानी ल जहरीला कर दिन सांस ले बर हवा नहीं बाचिस मोर दम घुटत हे मोला ऐसे लागत हे ए मनखे मन मोला मार डरही।
1: संगवारी हो संतु हाथ में कुल्हाड़ी धर के पेल ला काटे बर गे हे प्लास्टिक के बाटल में पानी पीते और बाटल ला उही कर फेंक देते।
3: मैं संतु हरव आज ये जुन्ना रुख ला काट के फेंक दूँ यहाँ शहर के व्यापारी मन दुकान ला खोली मोला बढ़िया बड़ा कम पैसा मिली।
1: मैं बरगद हरव अरे रुक जा संतु भाई मोला झन काट मैं तोला मीट मीट फर देता गर्मी मा ठंडा छाँव देता और सबले बड़े गोट तोला जिए बर मुक्त मा साफ ऑक्सीजन घलो देतो मोला झन काट भाई मोला झन काट।
3: चल चल ते मोला झन सीखा हवा तो कतको जगह मिल जाही त मोला आज मोर अपन फायदा देखना है।
1: अतका कही के संतु पेल ला काटे बर कुल्हाड़ी उठाते वत के बेरा 14 साल के मुके दौड़त आते और रुख ला अपन बाह म पोटार लेते। रुक जा संतु काका रुक जा तोर कुल्हाड़ी ला नीचे मढ़ा त ये रुख ला झन काट काका अगर त ये रुख ला काटबे त हमर गांव म शुद्ध हवा औ ऑक्सीजन के कमी हो जाही।
3: भगरे टुरा ते अभी नान कुन टुरा ते मोला बतावे मोला का करना है।
2: ए ठीक कहत है संतु जब तुमन अपन स्वार्थ बर रुख ल काट दू तरिया नदिया म कचरा फेंक दू त आघु चल के तुअर लइका मन काय पैसा ल खा के जीही हवा पानी बिना सब बर्बाद हो जाही बेटा।
1: अतका सुन के संतु ल अपन गलती के एहसास होते ओ ह कुल्हाड़ी ल भुइया म मढ़ा देते और हाथ जोड़ते।
3: मोला क्षमा कर दे धरती मैया मैं पैसा के लालच में अंधरा हो गए रहे हूँ दू पैसा के लालच में अपने लइका मन के जिंदगी ला संकट में डालत रहे हूँ अब मैं कभू रुख लैला नहीं काटा।
1: औ काका अब ले हमन पानी घलो अकारत नहीं बुहान धरती मैया ला साफ सुथरा रखबो पेड़ पौधा लगाबो और हमर धरती ला हरियर बनाबो
4: रुख राई ला बचाबो भुइया ला सरक बनाबो।
1: संगी हो अभी हमन सुनत रहन शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बंदलोर के पढ़ैया लइका मन के पर्यावरण संरक्षण पर कार्यक्रम। अब हमन ला विदा दो जय जोहार जय छत्तीसगढ़।

0: संगवारी हो, अभी हमन सुनत रहें फुलवारी कार्यक्रम। तो अपन मन ला कविता कहानी प्रेरक प्रसंग सुनाए के मन करत हुई, तो अपन माता पिता या कोई बड़े संग मंगलवार शाम 4 बजे आकाशवाणी रायपुर आ जाओ और अपन गीत कविता कहानी के रिकॉर्डिंग करो। तो संगी हो, अब बारी है वार्ता के, जिला सुनावत हावे श्री कामता प्रसाद साहू जी हा।
1: संगवारी हो, हमर छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते। हमर छत्तीसगढ़ में सबले ज्यादा धान के फसल होते। फिर संगवारी हो, फसल ला बो देन औ समय में पानी नहीं मिलही तब का होही? कहे गे ना, बिना पानी सब सुन। तेकर सेती संगवारी हो, हमर सरकार हा यहाँ जगह जगह बांध बनाए हैं। संगवारी हो, बहुत नदिया और नरवा ला बांध देथन, तब कर पानी है उही करा ठेला जाते और छोटकुन बांध बन जाते। ऐसने संगवारी हो, हमर फसल के सिंचाई बर और कई प्रकार के उपयोग बर हमर सरकार हा छत्तीसगढ़ में जगह जगह लगभग 51 ठन छोटे बड़े बांध बनाए हैं। आओ संगवारी हो, जानथन ये बांध के बारे में। पहली बांध है गंगरेल बांध। संगवारी हो, हमर छत्तीसगढ़ के गंगरेल बांध सबसे बड़े और सबसे लंबा बांध आवे। ये बांध है धमतरी जिला में महानदी ला बांध के बनाए गए है। एकर निर्माण 1965 ले 1978 के बीच में करे गए है। ये बांध ला रविशंकर सागर जलाशय परियोजना के नाम से घलो जाने जाते। एमा 14 गेट है और एमे 15,000 क्यूसेक जल भराव की क्षमता है। ये बांध है बहुत देसी बांध आए। ये बांध के पानी ले हमर दुर्ग, धमतरी, रायपुर और महासमुंद के किसान मल्ला सिंचाई बर पानी दे जाते। एकर संगे संग औद्योगिक क्षेत्र भिलाई इस्पात संयंत्र ला घलो पेयजल बर और औद्योगिक विकास बर पानी दिए जाते। ये बांध से रोज निस दिन 10 मेगावाट के बिजली बनाए जाते। संगवारी हो, हमर राज्य के दूसर सबसे बड़े बांध आए हसदेव बांगो बांध, जिला मिनी माता बांध के नाम से घलो जाने जाते। ये बांध है कोरबा जिला में स्थित हवा। ये बांधला हसदेव नदी में 1992 में NTPC बर बिजली बनाए बर बनाए गए है। ये बांध 6,730 वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण फैलाव में फैले है। ये बांध छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा बांध होए के गौरव प्राप्त है। ये बांध की ऊंचाई है 86 मीटर है और एक लंबाई 555 मीटर है। ये बांध में 11 गेट बने हैं। एकर पानी ले आसपास की किसान मल्ला सिंचाई बर पानी दिए जाते। एकर अलावा बालको, NTPC, SECL, BPCL बर पेयजल के व्यवस्था घलो करे जाते। अब जानथन तांदुला बांध के बारे में। तांदुला जलाशय है छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में स्थित हवा। ये बांधला तांदुला नदी और सूखा नाला बांध के बनाए गए है। ये बांध के निर्माण 1905 से 1912 के बीच में करे गए है। एकर लंबाई 2,906 मीटर, ऊंचाई 24.5 मीटर है और एमा 302 मिलियन क्यूबिक मीटर जल भराव की क्षमता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे तीसरा बड़ा बांध आवे। ये बांध ले दुर्ग जिला के, बालोद जिला के, बेमेतरा जिला के लगभग 23,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई पर पानी दिए जाते। एकर संगे संग भिलाई इस्पात संयंत्र ला घलो पेयजल और उकर औद्योगिक कामकाज पर पानी दिए जाते। संगवारी हो, अब जानथन माडम सिल्ली बांध के बारे में। माडम सिल्ली बांध है धमतरी जिला में स्थित हावे। ये बांध ला महानदी के सहायक नदी सिलियारी नदी ला बांध के बनाए गए है। एकर निर्माण 1914 से 1923 के बीच हुई। ये बांध ला मुरुम सिल्ली बांध के नाम से घलो जाने जाते। ये बांध है एशिया महाद्वीप के पहला बांध आए जिहां साइफन स्पिल वेल की सुविधा है, अर्थात गर्मी के दिन में जब निचले बांध में पानी कम हो जाते तब वहां यहां के पानी ला पहुंचाए जाते। एकर लंबाई 8,501 फीट, ऊंचाई 112 फीट और एकर क्षेत्रफल लगभग 25 वर्ग किलोमीटर है। ये बांध ला बनाए पर सीमेंट के बिल्कुल उपयोग भी नहीं किए गए है। ये बांध रविशंकर सागर जलाशय परियोजना के अहम हिस्सा है। ये बांध में 34 गेट है। पानी जब एक खास लेवल में पहुंचते तब एकर 4 ठन गेट है साइफन गेट अपने अपन खुल जाते और यह पानी है नहर

0: के माध्यम से गंगरेल बांध में चले जाते। संगवारी हो, अब जानथन खूंटा घाट जलाशय के बारे में। खूंटा घाट जलाशय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला में स्थित हवे। ये बांध रतनपुर के पास खारून नदी में 1961 में बनाए गए है। ये बांधला पानी के प्रबंधन और सिंचाई के बेहतर उद्देश्य से बनाए गए है। ये आसपास के गांव में खेती के सिंचाई के अलावा पेयजल के समस्या ला घलो निजात दिला थे। ये बांधले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर अर्थात बिजली घलो बनाए जाते। ये बांध के नाव पढ़े में बड़ा दिलचस्प जानकारी है। एकर जब निर्माण होत रही से तब एकर आसपास के पेड़ पौधा मल्ला नहीं काटे जाए, बल्कि काटे के बजाय पानी में डुबा जाए। जब ये डूबे तब कड़ा हो जाए और कड़ा होने के बाद ठूंठ बन जाए, जिला स्थानीय भाषा में खूंटा कही थे। ते कारण से एकर नाम जो है खूंटा घाट जलाशय पड़िस, लेकिन शासन है एकर नाम संजय गांधी नाम से नामांकित करे है। संगवारी हो, अगला जलाशय के बारे में जानबो जेकर नाम है दुधावा बांध। दुधावा बांध छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में स्थित है। एकर निर्माण 1953 से 1964 के बीच में करे गए है। दुधावा बांध है दुधावा गांव के पास महानदी में बनाए गए है, जेकर लंबाई 2906 मीटर, ऊंचाई 24.5 मीटर और जल ग्रहण क्षेत्र 625 वर्ग किलोमीटर है। ये बांधले आसपास सिंचाई और पेयजल की सुविधा के उद्देश्य से इला बनाए गए है। संगवारी हो, अब जानथन सोंढूर बांध के बारे में। सोंढूर बांध धमतरी जिला के नगरी गांव के पास बनाए गए है। एकर निर्माण सोंढूर नदी में करे गए है। ये बांध के जल ग्रहण क्षमता 518 वर्ग किलोमीटर है। ये बांध है महानदी जलाशय परियोजना परिसर के हिस्सा आवे। ये बांध के पानी ले आसपास के करीब 12,500 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई पर दे जाते, साथ ही पेयजल और निस्तारी जल के रूप में भी देकर व्यवस्था करे जाते। संगवारी हो, अब चलथन खरखरा जलाशय के बारे में। खरखरा जलाशय बालोद जिला के डोंडी लोहारा के पास स्थित है। ये बांध है खरखरा नदी ला बांध के 1964 में बनाए गए है। एकर लंबाई 1128 मीटर है। ये बांधले आसपास के कृषि भूमि पर सिंचाई की सुविधा प्राप्त होते। यहाँ मछली पालन के अलावा दुरोग राजनांदगांव बर पेयजल उपलब्ध कराए जाते और एकरे साथ साथ हमार औद्योगिक क्षेत्र भिलाई इस्पात संयंत्र लगलो पेयजल और उकर उपयोग पर पानी दिए जाते। ये बांध है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, काबर यदि बांध नहीं रहतीस तो हमन पेयजल पर समस्या हो जातीस। तेकर कारण सरकार है ये बांध बना करके हमारे गर्मी में पानी की समस्या दूर करते। संगवारी हो, ये पानी ला बचाना हमारे कर्तव्य है। हमन ला संकल्प लेना है, पर्यावरण और जल के संरक्षण हमेशा करत रहना है। आओ संगवारी हो, संकल्प लेथन नदिया नरवा ला साफ रखो, जिंदगी भर पानी ला बचा के रखो। संगवारी हो, जब तक पानी है तब तक जिंदगानी है, एका सुरक्षा हम सबके निगरानी है। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।
1: संगे हो, अभी आप मन सुनत रहे हो वार्ता। तो आज के आप मन ला जम्मो कार्यक्रम कैसे लगी तेला अपन चिट्ठी में लिख के हमार तक जरूर पठो हूँ। आप मन के चिट्ठी की हमला अगोरा रही तो अब देव अपन चंचल दीदी लबिदा। जय हिंद
2: बच्चों। जय हिंद।

बच्चों का कार्यक्रम बाल वाटिका अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है प्रगति के सोपान में पीएम स्वनिधि योजना पर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पीएम स्वनिधि के स्टेट नोडल अधिकारी श्री सुनील अग्रहरी से रमाशंकर की बातचीत।

श्रोताओ नमस्कार, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओ, सरकार की योजनाएं काफी महत्वपूर्ण होती हैं और इन योजनाओं का लाभ सरकार चाहती है कि उन लोगों तक पहुंचे

0: योजना के लिए कहाँ आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या शर्तें हो सकती हैं, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुनील अग्रहरी जी को, जो डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और नोडल ऑफिसर हैं पीएम स्वनिधि के। तो सुनील जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सुनील जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये पीएम स्वनिधि योजना क्या है और इस योजना का क्या उद्देश्य है।
1: देखिए, पीएम स्वनिधि मतलब प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि
0: जी,
1: यह एक केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसका शुभारंभ भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 1 जून 2020 को किया गया था
0: जी।
1: और यह योजना पूरे भारत में 2030 तक लागू है। अब मैं अगर छत्तीसगढ़ की बात बोलूं तो छत्तीसगढ़ के हमारे जो 33 जिले में जो 194 नगर निकाय हैं, जिसमें 14 नगर निगम, 58 नगर पालिका परिषद और 122 नगर पंचायत है
0: जी।
1: तो इन नगरीय निकायों के शहरी जो पथ विक्रेता है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। 100% पथ विक्रेताओं को इस योजना के दायरे में लाने के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार इस वर्ष हम लोक कल्याण मेला सह स्वनिधि महोत्सव भी शिविर आयोजित किए थे, जैसा कि अभी आपने बताया था
0: जी।
1: इसमें हमने पथ विक्रेताओं से संवाद, ऑन स्पॉट बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण सुनिश्चित कराने का प्रयास, हमारी जो नोडल विभाग है राज्य शहरी विकास अभिकरण और नगर प्रशासन विकास विभाग द्वारा नगरीय निकायों को सहयोग से किया गया था
0: जी।
1: और इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले जो हमारे बैंकर्स हैं, समय पर ऋण अदायी करने वाले हमारे जो पथ विक्रेता है को माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमने सम्मानित कराया है, जिससे कि अन्य बैंक और वेंडर्स भी योजना से जुड़े और हम योजना के लक्ष्यों को पूरा कर सके
0: जी। तो सुनील जी, इस योजना के लाभ लेने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए?
1: देखिए, इस योजना का जो लाभ है वो हमारे शहर की जो सड़कों पर, फुटपाथ पे, अच्छा अथवा अन्य जो सार्वजनिक स्थानों पर व्यवसाय करने वाले जो शहरी पथ विक्रेता हैं, सभी शहरी पथ विक्रेता इसके लिए पात्र हैं, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स बोले जाते हैं
0: जी।
1: आपके पास यदि नगरी निकाय द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाण पत्र अथवा पहचान पत्र है तो आप सीधे पात्र हैं। जिनका नाम यूएलबी की सर्वे सूची में है किंतु उनको सीयूवी जारी नहीं हुआ है, उसके लिए पोर्टल से प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी करने की भी हमारे यहाँ व्यवस्था है। जो सर्वे से वंचित रह गए हैं वे नगरीय निकाय से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्राप्त कर आवेदन इसमें कर सकते हैं
0: जी। सुनील जी, इसमें जब हम बात करते हैं पीएम स्वनिधि योजना के बारे में, तो इस योजना में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं तो उनमें किन किन व्यवसायों को इसमें शामिल किया गया है?
1: देखिए, इसमें सभी व्यवसाय इसमें शामिल होते हैं। इसमें ऐसे कोई बाध्यता नहीं है कि इसमें, योजना का मुख्य उद्देश्य है कि उसका स्ट्रीट वेंडर होना आवश्यक है और उसके पास जो जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी वो उसकी प्रक्रिया अत्यंत सरल है। केवल सिर्फ 3 दस्तावेज हमको चाहिए, एक वेंडिंग प्रमाण पत्र जिसको या LOR जिसको हम बोलते हैं, मोबाइल से लिंक आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जमानतदार या गारंटर की हमको कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सरकार का यह पूरा प्रयास है कि सरलीकृत रूप से जरूरतमंद पात्र पथ विक्रेताओं को इस योजना का लाभ मिल सके
0: जी। जी जी। और सुनील जी, जब हम बात करते हैं इसमें सब्सिडी और लोन की, तो इसके क्या नियम होते हैं?
1: देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। मैं इसमें आपको बता दूं कि जो सब्सिडी और जो लोन की आप बात पूछ रहे हैं मुझसे, तो यह जो लोन होता है 3 चरणों में उपलब्ध होता है। प्रथम चरण 15,000 रूपये का होता है
0: जी,
1: जिसकी अवधि 12 महीने की होती है। इसमें यदि स्ट्रीट वेंडर समय पर अपने स्कीम जो लोन का पुनर्भुगतान कर देता है तो वो तत्काल सेकेंड लोन यानी कि 25,000 रूपये का पात्र हो जाता है, और यही चीज अगर फिर से पुनर्भुगतान करता है तो तृतीय स्तर पर वो 50,000 रूपये तक का लोन प्राप्त कर सकता है
0: जी।
1: इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी की है। यदि बैंक 10% ब्याज लेता है तो 7% की राशि सरकार सीधे लाभार्थी के खाते में अंतरित कर देती है
0: जी।
1: इसके अलावा डिजिटल लेन देन करने पर प्रतिवर्ष 1600 रूपये तक का कैशबैक भी सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को देती है
0: जी। जी।
1: हम छत्तीसगढ़ में इस योजना को मिशन मोड में चला रहे हैं
0: जी।
1: और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि प्रदेश में 1,13,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 2,61,00,000 से ज्यादा का ऋण वितरित हम कर चुके हैं, और हमारा लक्ष्य है कि कोई भी पात्र स्ट्रीट वेंडर इस लाभ से वंचित न रहे
0: जी। जी।
1: भारत सरकार ने प्रदेश में 4 करोड़ से ज्यादा की राशि कैश बैक के रूप में जारी की है, और छत्तीसगढ़ में योजना से जुड़े 76,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेन देन कर रहे हैं और कैश बैक का लाभ ले रहे हैं। मतलब प्रदेश के 76,000 स्ट्रीट वेंडर्स
0: जी जी
1: डिजिटल लेन देन में कर रहे हैं काम
0: जी। तो सुनील जी, आपने बताया कैश बैक, इनके खाते में कैसे प्राप्त किया जाता है?

0: देखिए, ये जो कैशबैक है, जो टोटल ट्रांजेक्शन हमारे होते हैं महीने में, अगर मान लीजिए 100 ट्रांजेक्शन किए, उसके लिए प्रति ट्रांजेक्शन के मान से अलग अलग स्लैब रेट निर्धारित किया गया है, और जिसकी जो लिमिटेशन रहती है वो एक साल के लिए 1600 रूपये अधिकतम कैशबैक की उनके खाते में अंतरित किया जाता है।
1: जी जी जी। और इसमें जो एक वेंडर आईडी कार्ड जो दिया जाता है, सर्वे रेफरेंस नंबर SRN कहते हैं जिसको,
0: LOR,
1: जी जी, तो इसका क्या महत्व होता है और ये कार्ड का क्या महत्व है?
0: ये जो LOR या वेंडिंग प्रमाण पत्र है, ये किसी भी स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए पात्र बनाता है।
1: अच्छा।
0: और इसके अलावा वो इस स्ट्रीट वेंडर्स जो है इस LOR के आधार पे भारत सरकार की और भी जो अन्य योजनाएं हैं उसका लाभ इसमें वो ले सकता है। उनको अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए नगरीय निकाय की जो हमारी टीम होती है वो इस पे काम करती है।
1: जी जी। और इसमें जो आवेदन यदि कोई व्यक्ति करना चाहे तो कहां संपर्क कर सकता है, इसकी जानकारी कहां मिल सकती है?
0: जी जी, बहुत अच्छी चीज आपने पूछी, लोगों के लिए जानकारी के लिए चीज है कि देखिए क्या है, किसी भी व्यक्ति को कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध करा करके पुनः आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगर अपना वो लोन लेना चाहता है तो जैसा कि हमारे प्रदेश में 194 नगरीय निकाय हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि 14 नगर निगम है, 58 नगर पालिका परिषद है, 122 नगर पंचायत है, इन सभी 194 नगरीय निकायों में के कार्यालय में जाकर के वो संपर्क स्थापित कर सकता है। वहां पर विशेष रूप से नोडल अधिकारी इस योजना के लिए नियुक्त किए गए हैं, उनसे संपर्क करके वो अपने ऋण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है।
1: जी जी जी। इस वजह से आपने बताया कि 3 बार किस्त चुकानी होती है।
0: हाँ जी। हाँ
1: जी। तो इसमें पहली किस्त चुकाने के बाद दूसरी और तीसरी किस्त कैसे मिलती है?
0: जैसे कि 15,000 का लोन उसको प्राप्त हुआ
1: जी,
0: उसकी जो लोन अवधि 12 महीना है, 12 महीने में वो अपने फर्स्ट लोन का भुगतान करेगा
1: जी,
0: उसके बाद रीपेमेंट अपने समय पे कर दिया, मतलब बैंक में उसकी गुडविल है उस आधार पे वो सेकंड लोन है 25,000 उसके लिए पात्र हो जाता है, और इसी प्रकार तीसरे लोन के लिए 50,000 के लिए पात्रता के दायरे में आ जाता है।
1: जी, जी।
0: 3 लोन उसको प्राप्त हो जाते हैं, 15, 25 और 50, इस प्रकार कुल 90,000 रूपये की सहायता उसको 7% सब्सिडी पर मिलती है।
1: जी जी। और सुनील जी, सबसे जो महत्वपूर्ण जो है कि कोई स्ट्रीट वेंडर है जिसने इस योजना का लाभ लिया हुआ है और वो उसका परिवार उसी व्यवसाय पर आश्रित है, और जिसने लोन लिया है उसकी असमय यदि मृत्यु हो जाती है तो फिर उस लोन के लिए अगर उनके पास कोई विकल्प नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं?
0: देखिए, इसमें बैंक के अलग अलग बैंकों के अलग अलग नियम शर्त होते हैं
1: जी।
0: तो जो बैंक लोन उपलब्ध करा रही है उनके जो RBI के जो गाइडलाइन के हिसाब से उन मापदंडों का पालन बैंक अपने ऋण की वसूली के लिए करती है।
1: जी जी जी। तो ये बहुत एक अच्छी योजना है जिससे हमारे जो रेहड़ी पट्टी जिन्हें स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं उन्हें एक आर्थिक संबल प्राप्त होता है। तो सुनील जी, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने लोग इसमें भी देखे जाए तो लगभग लाभान्वित हो रहे हैं, और इससे जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आपस में मिलकर कैसे इसे लोगों के लिए सुविधाजनक बना रहे हैं?
0: देखिए, हम अगर बाजार जाते हैं
1: जी
0: तो हम देखते हैं कि चाहे फल सब्जी वाला हो, चाहे नाश्ते का ठेला लगाने वाला हो, मतलब सिर्फ शर्त ये कि सार्वजनिक स्थल पर जो व्यवसाय कर रहा है, तो ऐसे अगर मैं व्यापारियों की बात करूं, ऐसे शहरी पथ विक्रेताओं की बात करूं, तो छत्तीसगढ़ में अभी तक 1,13,00,000 अधिक जो से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का हमारे लाभ ले रहे हैं
1: जी।
0: और इन 1,13,00,000 स्ट्रीट वेंडर्स में से 76,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स डिजिटल लेन देन बराबर कर रहे हैं
1: जी।
0: मतलब जो भारत सरकार की एक योजना है, एक महत्वाकांक्षी योजना है कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा हो, तो ये शहरी पथ विक्रेता जिनकी संख्या 76,000 छत्तीसगढ़ में है वो इसका लेन देन का लाभ ले रहे हैं, और 1,13,00,000 स्ट्रीट वेंडर्स को अब तक 2,61,00,000 रूपये का लोन भी भारत सरकार ने उपलब्ध कराया है। अब 15,000 से अगर मैं इस लोन की शुरुआत करूं और बात करूं 50,000 तक के सफर की, तो बैंक, CSC केंद्र और नगर पालिका इसमें वे संपर्क करें और इस योजना का लाभ लें।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो सुनील जी, जब हम देखते हैं कि ये योजना हमारे जो ऐसे तबके के लिए है जिनके पास कोई आधार नहीं होता, आर्थिक दृष्टि से वो एक कमजोर होते हैं, तो वहां ये जो पीएम स्वनिधि योजना एक उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे कि इस योजना का लाभ वो लेकर किस तरह स्वयं और अपने स्वयं के परिवार का पालन कर सकते हैं, और जिन लोगों को इस योजना की आवश्यकता है वो इसे क्यों

0: ले और इससे कैसे आर्थिक मजबूत हो सकते हैं?
1: मैं आपके इस आकाशवाणी के माध्यम से सिर्फ एक बात बोलूंगा कि पीएम स्वनिधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि
0: जी,
1: तो ये आत्मनिर्भर निधि केवल ऋण नहीं है बल्कि एक शहरी पत्रकारिता उसके लिए ये आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का माध्यम है
0: जी।
1: 15,000 रूपये से शुरुआत होकर 50,000 तक का यह जो सफर है, यह किसी भी स्ट्रीट वेंडर्स को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में काम करता है
0: जी।
1: इस पर 7% का ब्याज सरकार वहन कर रही है, डिजिटल पेमेंट पर कैशबैक मिल रहा है, तो आप केवल निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य करें
0: जी।
1: हर स्ट्रीट वेंडर्स को मैं यही बोलूंगा कि आप केवल निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य करें
0: जी।
1: छत्तीसगढ़ सरकार और राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर प्रशासन विकास विभाग इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है
0: जी।
1: और इस सुनहरे अवसर को जो भारत सरकार ने दिया है उसको बिल्कुल भी हाथ से न जाने दें
0: जी।
1: और मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि जो भी हमारे श्रोता हैं वो अपने परिवार में, मोहल्ले में, आसपास में कोई रेहड़ी पटरी व्यवसायी है तो उनको यह जानकारी अवश्य पहुंचाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें
0: जी। जी जी, बहुत अच्छी बात है ये। प्रगति के सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे सुनील अग्रहरी जी से, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और स्टेट नोडल ऑफिसर हैं पीएम स्वनिधि योजना भी। तो सुनील जी, कार्यक्रम में आप आए और हमारे श्रोताओं को पीएम स्वनिधि योजना के बारे में जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

प्रगति की सोपान अभी आप सुन रहे थे। इसमें आपने सुना पीएम स्वनिधि योजना पर उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पीएम स्वनिधि के स्टेट नोडल अधिकारी श्री सुनील अग्रहरी से रमाशंकर की बातचीत। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ में बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, संगीत चित्रगुप्त का है और फिल्म है काली टोपी लाल रुमाल।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए अब सुनते हैं इस्माइल आजाद कव्वाल एंड पार्टी की आवाज में सिविन की रचना, संगीत बुलो सिरानी का है और फिल्म है अल हिलाल।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी

0: मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मंदिर मस्जिद, आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं जानू बाबू और छोटू यूसुफ के स्वर में। अख्तर वारसी लखनवी का ये बोल हैं, इसे संगीत से संवारा है शारदा ने।

आइए अब सुनते हैं खयाम के संगीत से सजी फिल्म रज़िया सुल्तान का एक गीत। बोल जानिसार अख्तर के हैं और आवाज़ कब्बन मिर्ज़ा की।

0: रज़िया सुल्तान के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी आंचलिक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत में बांस गीत। किस्सा हरिश्चंद्र तारामती का है। कलाकार हैं गुलाल राम निषाद और साथी। लेकिन इससे पहले सुनिए ये संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बांस गीत। कलाकार हैं हरिश्चंद्र माफ कीजिएगा कलाकार हैं गुलाल राम निषाद और साथी किस्सा हरिश्चंद्र और तारामती का है।

ओ माता ना माँ दिए माँगी माँ सुंदरी जो बालक लाना ओ जाना ना जाए माँ दमो सुंदरा बोला ये ना

0: है भैया
1: वाजी वाह
0: माता तारा मती है तो
1: तौन
0: सुंदर बेटा रोहित कुमार ला भोजन खिला कर की
1: हाँ
0: पलंग बिछौना में पौधा
1: पौधा दे मोर भैया
0: रात्रि के समय
1: तब
0: रात प्रात काल हो गए भैया
1: हाँ वाजी वाह
0: बड़े सवेरे के समय
1: हाँ
0: बेटा रोहित कुमार का कर रहे भैया
1: का कर रहे मोर भैया
2: हरे हरे सही बात है मोर भैया।

0: अरे सत युग में राजा हरिचंद सत्यम सत बखानी
1: हाँ।
0: साठ बार सोना के खाती मरघट के रखवानी।
1: वाह मोर भैया।

0: बेटा रोहित कुमार।
1: हाँ।
0: बड़े सवेरे के समय स्नान ध्यान बना लिस भैया।
1: वाह जी वाह।
0: सुंदर खाकी के झोरा खान में रख ली।
1: रखे मोर भैया।
0: लग के माता तारा मती लग गए माँ।
1: हाँ।
0: मैं मालिक के फुलवारी जात
1: हूँ। जात हूँ कहा थे।
0: कई बार मालिक के पूजा करे के समय हो गए।
1: समय हो गए मोर भैया।
0: वो हर हाथ में ताजा फूल तोड़ के मांगा है।
1: वाह जी वाह।
0: जल्दी से जल्दी लेके आ जाता हूँ।
1: हाँ।
0: माता ला बोले और बेटा रोहित कुमार तुम चले लगी।
1: चले लगी मोर भैया।
0: क्या होते
1: का होते मुरली।
2: जय भैया जय हो।

0: फुलवारी।
1: मारा बेटा सवेरे के समय
0: हाँ
1: महाराज फुलवारी में चले लगे।
0: चले लगी मोर भैया।
1: एले भैया लगिया बगिया लगे रहे
0: वारी वा।
1: रंग बिरंगे फल और फूल वहाँ
0: हाँ
1: महार महार तो करत रहे।
0: वाह मोर भैया।
1: जा करके बेटा रोहित कुमार
0: हाँ
1: 7 बरस के उम्र दूध के दांत टूटे नहीं
0: वारी वा।
1: मैं मेछा के रे फूटे
0: फूटे मोर भैया।
1: फुलवारी ला देख करके
0: हाँ
1: रोहित कुमार मनमोहित हो गए।
0: वारी वाह।
1: भैया जेकर परीक्षा लेखा थी
0: हाँ
1: गुरु विश्वामित्र है तौन
0: तौन
1: उसी फुलवारी में पहुँचे रहे
0: पहुँचे।
1: क्या करे थे भैया?
0: क्या करे थे जी?

0: भैया
1: वाणी
0: गुरु विश्वामित्र रहे तुम
1: हाँ।
0: कितना सतबाजी हस राजा हरिचंद और सतला मोला डिगाना
1: वाणी वाह
0: ऐसे सोच कर की
1: हाँ।
0: मैंने जोनी अपन रूपला छोड़ दी
1: छोड़ दे मोर भैया
0: और सुंदर ये सर्प के रूप बना करके
1: वाह
0: वही बावन के फुलवारी में घूमे लगे
1: है मोर भैया
0: ए डहर ले बेटा रोहित कुमार चले जाते डहर ले सर्प बन के गुरु विश्वामित्र जाते
1: जाते गुरु जी
0: होते भैया
1: क्या हुआ थे मोर भैया
2: जय जय।

0: ऐने घूमते फुलवारी में पहुंच गए भैया।
1: हाँ
0: वाह फुलवारी के ओर ताजा ताजा फूल ला बेटा रोहित कुमार हाथ में तोड़ तोड़ करके
1: वारी वाह
0: अपन खाकी के झोरा में धरते
1: वाह मोर भैया
0: सारी फूल तोड़ करके पूरा झोरा ला भर ली
1: भर ले मोर भैया
0: भर के रोहित कुमार वापस लौटा थे।
1: तेढ़ार
0: गुरु विश्वामित्र हर का करे थे भैया
1: का करे थे
2: जय हो भैया जय हो।

Elena. मोहन जगह भूले भाई हो जड़ हाँ लगाए ना।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बांस गीत। किस्सा हरिश्चंद्र और तारामती का था। कलाकार थे गुलाल राम निषाद और साथी। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप को दी मंजूरी। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा और महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अब समाचार विस्तार से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल तथा समयबद्ध बनाना है। वहीं बस्तर फाइटर्स में फाइटर आरक्षक भर्ती और सेवा नियम में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक के प्रारूप का भी अनुमोदन किया है। इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया है। सभी जिलों के आरटीओ तथा डीटीओ को अपने क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह चिन्हित करने और एनओसी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ऐप हैं, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। सरकार अब राज्य स्तर पर एकीकृत प्लेटफॉर्म ऐप बनाएगी। वहीं भारत सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग ऐप ला रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राज्य के शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य शासकीय सेवकों को आकस्मिक परिस्थितियों में सम्मानजनक, त्वरित और सहज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कर्मचारियों को आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए निजी साहूकारों अथवा ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेने की व्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने ऐसी व्यवस्था विकसित की है जिसके माध्यम से वे बिना अनावश्यक कागजी प्रक्रिया के अपनी पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। महिला और बाल विकास विभाग ने छूटी हुई हितग्राही महिलाओं से निर्धारित समय में ई केवाईसी कराने की अपील की है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक पुलिस थाना रैंकिंग में बस्तर स्थित बोधघाट थाना को राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष देशभर के पुलिस थानों का मूल्यांकन विभिन्न मानकों पर किया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर के डूमरतराई में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधिसंखना विकास मंडल द्वारा विकसित नवीन थोक बाजार फेज 2 का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि परिसर का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया

0: जाएगा तथा उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ लिविंग को भी समान महत्व दे रही है। राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र व्यास का कल 8 जुलाई को निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। श्री व्यास प्रेस क्लब राजनांदगांव के संरक्षक थे। इसके अलावा श्री व्यास ने लंबे समय तक राजनांदगांव जिले के आकाशवाणी संवाददाता के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। यह परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.nic.in से अपनी पर्ची डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप को दी मंजूरी। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा और महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: मीडियम और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम स्वरधारा। कलाकार हैं रूप कुमार राठौर।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों, गजलों और कव्वाली का कार्यक्रम स्वरधारा। आइए अब पिनाज मसानी की आवाज में सुनते हैं इब्राहिम अश्क की लिखी गजल।

गैर फिल्म गीतों, गज़लों और कव्वाली के कार्यक्रम स्वरधारा में अभी आप सुन रहे हैं पिनाज मसानी के गई गज़लें। आइए अब इनकी आवाज़ में सुनते हैं सईद राही की ये गज़ल।

आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों, गजलों और कव्वाली का कार्यक्रम स्वरधारा। इसमें आप सुन रहे हैं पिनाज मसानी की गाई गजलें। आइए अब इनकी आवाज़ में सुनते हैं मिर्ज़ा गालिब की लिखी ये गज़ल।

गैर फिल्मी गीतों, गजलों और कव्वाली का कार्यक्रम स्वरधारा अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे रूप कुमार राठौर और पिनास मसानी। मीडियम और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में ये सबसे पहले सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में समीर की रचना। संगीत नदीम श्रवण का है। फिल्म है अग्नि साक्षी।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यारे का तोहफा लाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।

अभी आपने सुना फिल्म 100 डेज का गीत। बोल दिलीप ताहिर के थे, इसे संगीत से संवारा था राम लक्ष्मण ने। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और SP बालसुब्रमण्यम की। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की युगल स्वर में आनंद बख्शी की रचना। संगीत उत्तम सिंह का है और फिल्म है दुश्मन।

धुन बनाई हैं शिव हरि ने, बोल आनंद बख्शी के, आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी की। फिल्म है साहिबान।

ली जिफनी आनंद मिलन के संगीत से सजी फिल्म सनम का ये गीत, आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, बोल समीर के हैं।

0: अभी आपने सुना फिल्म सनम का ये गीत। आवाज़ें थीं अलका याग्निक और कुमार सानू की, बोल समीर की और संगीत आनंद मिलिंद का। इसी के साथ चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। मीडियम और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को है अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज आज तीसरे वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। विक्टोरिया स्थित गवर्नमेंट हाउस में आयोजित इस सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नए बाजार का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की समानताएं निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं।
2: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टीकल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने आज मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्ययोजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्ययोजना प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया स्थिरता के स्वाभाविक और विश्वसनीय स्तंभों के रूप में एक साथ हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच संपन्न हुए व्यापार समझौते से आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी के ऐतिहासिक परिवर्तन का उल्लेख किया। श्री अल्बनीज ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर मजबूती से अग्रसर है। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल शोडर ने इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निवेश भारत के विकास पथ पर दुनिया भर के विश्वास को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बुधवार को कठुआ जिले में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया और वहां से दो हथगोले बरामद किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के बिलावर क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में स्थित इस ठिकाने का पता ओवरग्राउंड वर्कर हाजी लतीफ के से चला। रामागढ़ निवासी लतीफ को 2 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उस पर पिछले कई वर्षों से सीमा पार से एक दर्जन से अधिक आतंकवादियों की घुसपैठ में मदद करने का आरोप है। भारत

दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसके 7% के वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर

0: मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 10 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम। ईमेल भेजें, फिल्म संगीत सुनें।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय पाठक का नमस्कार। आइए देखते हैं ईमेल। सबसे पहले हमारे किस श्रोता साथी का आया है, तो आवरा डबरी से श्याम लाल साहू, मोगरा संगीता, केसरी साहू और भैया लाल हिडाओ, ग्राम तिलकपुर से चंद्र कुमार मरावी, चंद्रेश कुमार मरावी, मालती मरावी, मयंक मरावी और तारणी मरावी, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे और विनय शंकर पांडे, चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहोदर सिंह, धमनी किरवई से हैं समेलाल धीवर, गोविंद धीवर, युवांश धीवर, कुणाल धीवर, मुन्नी धीवर और समता धीवर, लच्छनपुर से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू, महामाया चौक मेघापारा चिल्फी से हैं रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल, हटौत बाजार लाहौद से हैं कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल, ग्राम पिपरलोड सरगांव जिला मुंगेली से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म खामोशी का एक गीत। इसे लिखा है गुलजार ने, संगीत से संवारा है हेमंत कुमार ने और आवाज़ भी हेमंत कुमार की है।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: मेला फिल्म के इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजा है ग्राम चरोदा बारनवापारा अभ्यारण जिला बलौदाबाजार से नंद कुमार ठाकुर, प्रमीला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। लाखाटोला बिडोरा से हैं पंचू यादव, भूखीन पिया सेवक और रितु यादव। धरसिंह बस स्टैंड से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, रेशमा थापा और फातिमा थापा। जूट मिल रायगढ़ से वली बेलदार, उल्लाह बेलदार और डब्ल्यू बेलदार। इंदिरा विहार महासमुंद से याकूब आसमा फकीर और यूसुफ आसमा फकीर। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये। लोधीपारा राजनांदगांव से सरफुद्दीन आसमा डोम और फातिमा आसमा डोम। ग्राम भंगीटोला से ननकाराम ध्रुवे, जामुनबाई ध्रुवे और फिरतराम ध्रुवे और मालती ध्रुवे। ग्राम भड़गा कोदवा गुडान से हैं श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी मरावी, रजनी मरावी और राहुल मरावी। आप सबकी पसंद पर आइए आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए मजरूह सुल्तानपुरी की इस रचना को। संगीत से समारा राहुल देव बर्वन ने और फिल्म का नाम है मेला।

अगले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है। इसमें मंगशुआ जिला बालोद से कपूर राम, तेंदुभाटा मगरलोड जिला धमतरी से उमेंद्र कुमार निषाद, महेश्वरी देविका, पोषण नूतन निषाद, सुरेंद्र कुमार निषाद, यशस्वी भास्कर और किशन निषाद। कुरासी से हैं पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता साहू और दीपिका साहू। हजदा नंबर 2 से पार्वती साहू, टिकेश्वरी साहू और नागेश्वरी साहू।

लोरमीग्राम चचेड़ी से मोहन सिंह मरावी, सविता मरावी, रिंझा मरावी, तनुराही मरावी, कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी और ऋषभ मरावी। पलारी से पराग टेलर, दिनेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, लखनलाल, पूनाराम, ईशांत देवांगन, नीतीश कुमार देवांगन, तनुजा देवांगन, ओम देवांगन और श्वेता देवांगन। आर्यनगर कोहका से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। ग्राम गेंदाटोला बाजार चौक से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, गजेंद्र गुप्ता, अंजलि गुप्ता और योगिता गुप्ता। आप सबने फरमाइश की है फिल्म नागिन के इस गीत के लिए। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की। बोल वर्मा मलिक के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: गोली किसे चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूं, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती।
3: बिलेगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और

0: सिंपल देवांगन। ग्राम पंचायत बिलेगढ़ से राजेश देवांगन, उत्तरा देवांगन, परी, चीकू और लूशी देवांगन। राजापुर जिला सूरजपुर से मानिकराम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम प्रजापति, हरिशंकर, रत्नेश और प्रशांत प्रजापति। कालापारा सरगुजा से राजचंद्र गुप्ता और पांडेराम राजवाड़े। बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा छुटकी और शरद कुमार डोडवानी। ग्राम ढोढरी घोटिया जिला मोहल्ला मानपुर से महेश कुमार निषाद, रंभारानी निषाद, निखिल कुमार निषाद, नैतिक कुमार निषाद, पुष्पांजलि और स्वप्निल कुमार। सोमवारी बाजार नवापारा से राजू साहू, हर्षा साहू, दिव्य साहू और सुशांत साहू। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक और उमेश रजक। सिनेमा लाइन भाटापारा से रामकुमार सेन और विक्की सेन। आप सब ने की पसंद पर आइए सुनते हैं शत्रुघ्न सिन्हा और आशा भोसले का गाया गीत, बोल वर्मा मलिक की, संगीत लक्ष्मीकांत पेरीलाल का और फिल्म का नाम है जानी दुश्मन।
1: जानी दुश्मन समझ लूं ऐसी नहीं है तू, मगर जो मैंने समझा था वैसी भी नहीं है तू।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर एक

सेन और निर्मला सेन, डोंडी लोहरा बालो से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और तुषार देव तामुरिया, रिंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा, बाघामुड़ा कोमाखान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन, गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन, परसाटोला मगड़चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया और खुमेंद्र मसिया, गंडई पंडरिया से कन्हैया यादव, निर्मला यादव, शोवाराम यादव और आशीष यादव, वार्ड नंबर 2 गंडई पंडरिया से शिवा यादव, राज यादव, चिंटू यादव और तरुण यादव, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा सेन और कौशल सेन। तो आइए आप सबके पसंद पर सुनते हैं फिल्म सुनैना का ये गीत। यशोदास की आवाज़ है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

अगले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है भानबेड़ा मुंगवाल से, भारत राम पडोटी, जयंती पडोटी, हेमंत पडोटी, उमंग पडोटी और मोक्ष पडोटी। ग्राम सीतकसा उमरवाही से कुबेर सिंह साहू, सरस्वती साहू, शेर सिंह साहू, उर्मिला साहू। चांदो डोंगरगांव से छन्नूलाल साहू और मधु साहू। धमधा ग्राम सुखरी कला से मोरस जंगेल। भूतकछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम और धनराज मरकाम। मंगशुआ जिला बालोद से भगवानी राम कार्टे, गोपिका, भावेश और माधुरी देवी कार्टे। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा और विपुल कामड़े। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता। पद्मा टाकिज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र शाह। मेचका सोंढूर नगरी से भूपेंद्र नाग, पूर्णिमा नाग, लिखित नाग और तरुणदीप नाग। आप सबकी पसंद पर आपको सुनवाते हैं फिल्म लोफर का गीत। आशा भोसले की आवाज़ है, बोल आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अगले गीत के लिए हमें मेल मिला है रोहांसी पलारी से श्यामलाल साहू, युवराज साहू, खमरिया बिलासपुर से साबित खान और धर्मेंद्र प्रजापति, सालेभाटा महासमुंद से जीतू ध्रुव, केवल ध्रुव, किरण ध्रुव, दिव्यांशी ध्रुव और खेमू ध्रुव, नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, अंकु राघव गुप्ता, सहिया मालगी से सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवरानी चंद्रवंशी, आकाश चंद्रवंशी, प्रतिभा पूर्वी और पूनम चंद्रवंशी, भीमखोज तरपोंगी से संतोष गुप्ता, हितेश, सोमेश, लक्ष्मी और प्रतिभा गुप्ता, अनिल ताम्रकार, मुकेश साहू, नंदिनी साहू, मनीष साहू और प्रेमलाल साहू, हमारे इन साथियों ने अपने स्थान का नाम नहीं लिखा है। आप सबकी पसंद पर आपको सुनवाते हैं फिल्म लव इन टोक्यो का गीत। हसरत जयपुरी की रचना है, संगीत शंकर जयकिशन का, आवाज लता मंगेशकर की है।

0: इसी के साथ दीजिए अपने रेडियो दोस्त संजय पाठक को ईमेल भेजें फिल्म गीत सुने के कार्यक्रम से अनुमति। अभी आप सुन रहे थे ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुने कार्यक्रम मीडियम और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। 11:55 हुए हैं, आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप को दी मंजूरी। कोल लेवी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को हिरासत में लिया। और महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अब समाचार विस्तार से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाना है। इस वर्ष दिसंबर में प्रस्तावित नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बैठक बुलाई गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सचिव स्तरीय इस बैठक में अधिकारियों को समय सीमा में सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रदेश के 15 नगरीय निकायों, जिनमें 4 नगर पालिक निगम, 5 नगर पालिका परिषद तथा 6 नगर पंचायत शामिल है, इनका कार्यकाल इस वर्ष दिसंबर में समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही 2 नवगठित नगर पंचायतों में भी आम निर्वाचन की तैयारियां की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया है। सभी जिलों के आरटीओ तथा डीटीओ को अपने क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह चिन्हित करने और एनओसी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ऐप हैं, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। सरकार अब राज्य स्तर पर एकीकृत प्लेटफॉर्म ऐप बनाएगी। वहीं भारत सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग ऐप ला रही है। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने करीब 500 करोड़ रुपए के कोल लेवी घोटाला मामले में हिरासत में लिया है। राम गोपाल अग्रवाल के खिलाफ इस मामले में विशेष अदालत ने स्थायी वारंट जारी किया था। उनकी तलाश में कई जगह छापे भी मारे गए थे। कल दोपहर राम गोपाल अग्रवाल स्वयं ईओडब्ल्यू मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी के पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। महिला और बाल विकास विभाग ने छूटी हुई हितग्राही महिलाओं से निर्धारित समय में ई केवाईसी कराने की अपील की है। राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र व्यास का कल निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। श्री व्यास प्रेस क्लब राजनांदगांव के संरक्षक थे। इसके अलावा श्री व्यास ने लंबे समय तक राजनांदगांव जिले के आकाशवाणी संवाददाता के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं। प्रदेश में अब तक सामान्य से 17% कम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक पुलिस थाना रैंकिंग में बस्तर स्थित बोधघाट थाना को राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष देशभर के पुलिस थानों का मूल्यांकन विभिन्न मानकों पर किया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप को दी मंजूरी। कोल लेवी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को हिरासत में लिया। और महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र हितग्राही महिलाओं के ई केवाईसी पंजीयन की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी जोहार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
3: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं, ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
3: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
2: बिल्कुल।
3: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
2: जी।
3: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
2: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
3: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण

0: होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
1: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
0: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
1: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
0: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वलय सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए।

0: आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे,

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियां तोड़ दी है। हाँ
2: अरे धृता जी।
3: हाँ भैया।

0: खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दे।
1: अच्छा।
2: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो, अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
0: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
3: अरे मगर... भाई ये क्या हो रहा है आज, अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
0: जी,
3: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
0: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है, वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़ईयों और लोहारों के घर गया है, उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
3: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
0: जी पिताजी।
3: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
0: ठीक है।
3: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है, कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
0: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
3: अरे प्रवाहन।
4: जी पिताजी।
3: तुम मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
4: वो पिताजी,
3: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है, कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
4: जी वो
3: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जो बो भी दिए।
4: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
5: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
0: हाँ हाँ पिताजी।
4: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
5: हाँ।
4: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
3: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
4: जी
3: उन्हें कल हस्तिनापुर जाना है।
5: पर क्यों पिताजी?
3: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहाँ रथों की दौड़ भी होगी।
5: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
0: जी पिताजी।
5: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार है।
3: बहुत अच्छा।
5: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
4: पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
5: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
3: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं जौ और चावल ले जाना।
5: जी पिताजी।
3: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
5: अच्छा पिताजी।
3: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं, यही नहीं गुरुकुलों के ब्रह्मचारी गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
4: अच्छा पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
1: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
3: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
1: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना, सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
4: चल चल बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने,
0: और क्या
4: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
1: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
4: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
3: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
0: जी पिताजी।
3: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गाँव पहुँच जाना।
4: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पहने तीर भी रख लिए हैं, भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
5: और पिताजी एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
4: भैया सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल काशी और विदेश से भी रथ आ रहे हैं।
5: हाँ।
4: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
3: हाँ ये तो है।
6: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
7: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: वो कुछ कह रहे हैं।
1: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
2: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है।
1: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
2: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
1: चलो देखते क्या होता है।
3: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
4: अरे वो देखो वो देखो,
1: क्या
4: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो, ये शुरू हो गई।
1: अरे क्या बांके और सजीले सवार है।
4: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
3: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद।
1: मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
3: अरे वो देखो, कितना सुंदर घोड़ा है।

0: चलो पास से देखते हैं।
1: चलो चलो।
2: अरे ये देखो कितना अच्छा बना है।
3: वाह, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
2: इसे पकड़ लेते हैं।
0: हाँ इसे पकड़ लेते हैं,
3: चलो चलो।
0: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
1: ये अरे पकड़ा।
3: अरे ये कोलाहल कैसा है?
4: छोड़ दो छोड़ दो, ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
3: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे, इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
1: अरे चलो चलो भाग चले, आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
3: अरे रुको तो सही। अरे देखो देखो,
1: क्या
3: आचार्य तो वहीं पहुंच गए हैं। और हाँ, वो देखो, आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
1: हाँ, अच्छा हुआ, संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
3: हाँ।
1: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
3: हाँ।
1: उनका प्रभाव, कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
5: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। जनजातीय संगीत के कार्यक्रम लोकसुधा में लीजिए सुनिए।

0: कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखी गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण की रचना, संगीत रवि का था और फिल्म का नाम था खानदान। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को फिल्म प्यार का मौसम के लिए। धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने और गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने।

पेइंग गेस्ट, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था सचिन देव बर्मन ने। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले को आनंद बख्शी के लिखे हुए गीत में। संगीत राहुल देव बर्मन का है और फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आइए आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज शाम 4 बजे सुनिएगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, स्पोर्ट्स स्कैन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:30 पर, और ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर में यानी 1:30 पर शहरी महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में आज की बात का विषय होगा, जरूरी है कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान। सुनेगा फोन इन कार्यक्रम हेलो बिंदिया और दीदी की सलाह। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ, और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी अमर गोठ सुनिएगा शाम 5 बजे।

युवा श्रोताओं की कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण समय होगा शाम 5:10 पर। इसमें अपन गोठ में सुनिएगा गांव के मेधावी मन ले सीख लेना चाहिए। चित्रकला से जुड़े कलाकार शिवा साहू से भेंट वार्ता सुनिएगा। क्रम पहुना जोहार में भेंट करता होंगे दीपक तिवारी और होगा क्रम हमर गांव।

लोक संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे मंतराम पटपरिहा और साथी। इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर सुनिएगा बांस गीत, कलाकार होंगे गुलाल राम निषाद और उनके साथी। शाम 7:21 पर किसान साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल, इसमें आज की बात का विषय होगा परंपरा के संग नवाचार ले आर्थिक लाभ कमावो। 7:30 पर किसान वाणी में सुनेगा आज की सलाह, लाख की खेती अपनावो आर्थिक लाभ कमावो। इस विषय पर

जानकारी देंगे डॉक्टर योगेश मिश्राम, साथ ही होगा आज का प्रश्न और बाजार भाव। गांठ, श्री डी एस भटनागर का लिखा ये नाटक सुनिएगा रात 9:30 पर। निर्देशक होंगे सत्येंद्र शरत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित कुमार गंधर्व का काया राग पूरिया धनाश्री में ख्याल सुनिएगा रात 10:00 और फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत सुनिएगा रात 10:30 पर। चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा दोपहर 2:30, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर।

श्रोताओं आपको एक बार फिर बता दें, आज शाम 4 बजे सुनिएगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स और स्पोर्ट्स स्कैन। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:30 पर। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शहरी महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया।

0: भीगे भीगे मौसम में बिंदिया कार्यक्रम सुन रही हमारी सभी श्रोता सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आपकी अपनी रेडियो सखी नेहा त्रिवेदी का प्यारा सा नमस्कार। जी हाँ सखियों, वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है और तकनीकी विकास से हम उसके ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं। ऐसे में कंप्यूटर की बहुत अहम भूमिका है और इसका कार्यसाधक ज्ञान भी जरूरी है। सखियों, कार्यसाधक ज्ञान का मतलब है कि हम कंप्यूटर का दैनिक कार्यों में सही और प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें, जैसे कि दस्तावेज बनाना, ईमेल भेजना, इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करना, ऑनलाइन आवेदन भरना और डिजिटल भुगतान करना और आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। कंप्यूटर का ज्ञान हमारे समय की बचत तो करता ही है, साथ ही हमारे कार्य को उत्कृष्ट भी बनाता है। लेकिन केवल कंप्यूटर चलाना ही पर्याप्त नहीं है सखियों, हमें साइबर सुरक्षा, मजबूत पासवर्ड का उपयोग और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने की जानकारी भी होनी जरूरी है। इतनी महत्वपूर्ण बात के बाद हम आते हैं आपके मन के पास। हाँ जी सखियों, अब हम बगैर आपको इंतजार करवाए ले चलते हैं आपके मनपसंद क्रम, हमारे श्रोता सखियों का बिंदिया सखी से मन भावन संवाद। हेलो बिंदिया। मुझे आपका सुनना पसंद है और आपको कुछ कहती हुई मैं, मुझे आपका खुश रहना पसंद है और आपको खुशियों के रंग बिखराती हुई मैं, मुझे आपका साथ पसंद है और आपको गीतों के साथ बतियाती हुई मैं। सखियों, मुस्कान की रिमझिम फुहार के साथ स्वागत है आपका हेलो बिंदिया में। और अब लेते हैं अपनी सखी का ये पहला कॉल। हेलो बिंदिया।
1: हेलो बिंदिया सर,
0: आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका शुभ नाम।
1: धन्यवाद। नमस्कार, मैं उषा वर्मा बोल रही हूँ। मैं
0: उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो बिंदिया में। और आप क्या करती हैं उषा जी?
1: मैं होम मेकर हूँ और समाज से जुड़ी हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। आप हमारा बिंदिया कार्यक्रम सुनती हैं?
1: जी, रेगुलर सुनती हूँ।
0: आप नियमित श्रोता हैं हमारे कार्यक्रम की, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है?
1: बहुत अच्छा लगता है मैम, जैसे कि पढ़ी लिखी महिलाएं जो घर पे रहती है,
0: जी हाँ,
1: उसके लिए बहुत सशक्त माध्यम है आकाशवाणी।
0: जी जी,
1: अन्य किसी माध्यम से अपने जीवन को ऊपर उठाने में बहुत सहायक रहता है।
0: बहुत अच्छी बात है। और आप हमारे कार्यक्रम के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगी?
1: सुझाव तो यही देना चाहूंगी, गृहिणियों को जब आगे बढ़ाएंगे तो देश के बच्चों का भविष्य बहुत उन्नति करेगा, इसलिए इसके प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता है।
0: जी हाँ, बहुत अच्छा आपका सुझाव है, हम इस और प्रयास भी कर रहे हैं। उषा जी, आपने हमसे बात की इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मुझे एक गाना बहुत पसंद है, तेरे मेरे होठो पे गीत मितवा वाला।
0: जी हाँ उषा जी, आपकी पसंद का ये गीत अब हम सुनते हैं।

0: ज्योत्सना है।
1: कहाँ से बोल रही हैं आप?
0: मैं आगरा से बोल रही हूँ।
1: लगातार बरसात हो रही है और हमने लंबे समय तक बहुत ज़्यादा गर्मी को महसूस किया है और सहन किया है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वृक्षारोपण। तो एक वृक्ष लगाने के लिए आप लोगों को कैसे प्रेरित करेंगी, और कोई वृक्ष अगर आप लगाती हैं तो उसकी देखभाल कैसे करेंगी?
0: वृक्ष लगाने के लिए तो ये है कि जैसे कि हम लोग मैंगो वगैरह खाते हैं तो उनकी गुठलियों को सावधानी से रखें।
1: जी हाँ जी।
0: तो कभी कहीं बाहर जाए तो कहीं सड़क के किनारे उनको डालते जाए, वो बड़ा हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आएगा, आने वाली पीढ़ी भी खाएगी आम।
1: बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छे सुझाव दिए, आप हमसे जुड़ी इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं बताइएगा हमें।
0: जिंदगी प्यारी साजिश है, इसे हर दिल को गाना पड़े।
1: वाह, बहुत अच्छा गाया आपने ज्योत्सना जी, आप हमसे जुड़ी, हमसे बातें की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो बिंदिया।
1: हेलो बिंदिया से बात हो रही है। मैं सीमा बात कर रही हूँ।
0: हाँ सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या करती हैं सीमा जी आप?
1: मैं एक लेखिका हूँ नेहा जी।
0: जी जी, महिलाएं एक कहने होम मेकर हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि वो पूरे घर का ख्याल रखती हैं, सबकी फिक्र करती हैं, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती हैं। तो आप बताइएगा कि एक महिला अपना ख्याल कैसे रखे?
1: बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियों से बहुत कभी कभी हल्के में ले लिया जाता है
0: जी हाँ।
1: महिलाओं को कि अरे घर में है तो इनको तो बहुत आराम है, पर मुझे लगता है कि 24/7 डेज वो लगातार काम करती है ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको अपने घर की चिंता रहती है, अपने परिवार की चिंता रहती है, अपने बच्चों की चिंता रहती है। इन सब सारी चिंताओं में कई बार वो अपने को खुद को इग्नोर कर जाती हैं। उनको लगता है कि ठीक है, अब इतनी देर काम किया, कुछ कम है मेरे लिए तो चलो इतने में ही काम चला लेते। ये खान पान की बात हो या आराम करने की बात हो या अपनी सुविधाओं की बात हो, कई जगह कटौतियां करती हैं। और कई ऐसी भी जनरेशन है जो सिर्फ अपने आप को ही ध्यान रखती है। मैं बहुत महिलाओं को महिमा मंडित नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आज का समय जो है, जो हमारी खान पान है और जो हमारा जीवन शैली है, उसके बीच में आप अपने शारीरिक मानसिक पूरा पूरा ध्यान रखें। जैसे आप अपने परिवार को समय देती है, वैसे आप अपने आप को भी समय दीजिए। आप अपने खाने में एक संतुलित मात्रा में आहार को जानकारी करिए, अगर आपको नहीं पता है तो, क्योंकि एक उम्र के बाद 40 जैसे ही पार होता है,
0: घुटनों
1: में दर्द, सर में दर्द, बालों का झड़ना, ये सब आपकी खान पान की लापरवाही से होता है कि हमने रोटी सब्जी खा ली, हो गया, पेट भर गया। नहीं, आपको फल भी लेना है, आपको प्रोटीन भी लेना है, आपको दूध भी लेना है, जैसे आप अपने बच्चों के, अपने पति के लिए करती। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आप स्वयं सुखी है, आप स्वयं स्वस्थ है, तभी आप एक अपने परिवार को स्वस्थ आधार दे सकती हैं। अगर आप एक समय के बाद एक मशीन भी चलते चलते रिपेयर मांगते हैं ना,
0: जी हाँ, जी,
1: तो
0: जी,
1: स्वयं के लिए आप ऐसा ही करिए। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप अपने लिए कुछ वक्त निकालिए, जिसको दुनिया में मी टाइम भी कहते हैं।
0: कभी
1: कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छी म्यूजिक सुनिए, कहीं अच्छी परिवार के साथ संवाद
0: करिए। बहुत अच्छी बात कही है सीमा जी आपने, और आपकी बातें हमारी सहेलियां जरूर मानेंगी और उस पर अमल भी करेंगी। आप हमसे जुड़ी, बहुत खुशी हुई। आप अपनी पसंद का कोई गीत बताइएगा।
1: सावन की घटाए इस तरह पे कस के बरस
0: जी हाँ,
1: इसको सुनते हैं, रिमझिम गिरे सावन।
0: रिमझिम गिरे सावन। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आप हमसे जुड़ी, हमसे बात की, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो हेलो बिंदिया, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम?
0: अनुपमा वाजपेयी।
1: अनुपमा जी, कैसी हैं आप?
0: बिल्कुल बढ़िया।
1: आप क्या करती हैं अनुपमा जी? आप
0: जी हाउसवाइफ
1: हैं आप, और जी? बच्चे हैं आपके? हाँ, क्या करते हैं वो?
0: हाँ, दो बच्चे हैं। जी हाँ, बेटा एक बेटी 10th में है और बेटी 9th में।
1: जी हाँ, आज हम महिलाओं की सबसे बड़ी चुनौती हो गई है बच्चों की परवरिश करना, क्योंकि आज शिक्षा से भी मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है उनका सही लालन पालन संस्कार देना और एक अच्छे नागरिक बनाना। उनकी परवरिश कैसे करती हैं आप?
0: हाँ देखिए, जहाँ हमको लगता है कि यहाँ इनको डांटना जरूरी है वहाँ थोड़ा सा परवरिश कर देते, थोड़ा सा
1: जी।
0: बाकी प्यार से ही समझाते हैं बच्चों को, जो गलत है उस चीज के लिए अच्छे से समझाते हैं, अपना एग्जांपल देते हैं कि भाई देखिए ऐसा होता है या ये कुछ भी इस टाइप का
1: जी जी,
0: उनको और अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं।
1: जी हाँ, और हम ये कोशिश करते हैं अनुपमा जी की हम जो बच्चे हैं उनको अगर अपना एक दोस्त बना लें तो बच्चे अपने दिल की हर बात हमसे कहें, सारी बातें साझा करें।
0: हमेशा बच्चे को मतलब उसकी सीक्रेट भी जानना चाहते हैं कि वो बता दे तो ज्यादा अच्छा है, छुपाए नहीं कुछ भी, ये सब हम भी सोचते हैं।
1: तो आपने बहुत अच्छी बात कही है हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। आप अपनी पसंद का गीत बताइएगा अनुपमा जी।
0: जी, वो एक है चुरा लिया है तुमने जो दिल को,
1: बहुत प्यारा गाना है, बहुत प्यारी पसंद है आपकी। तो अनुपमा जी सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो,
1: मैं विजय ठाकुर बोल रही हूँ रायपुर
0: हाँ
1: से।
0: विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप क्या करती हैं विजय जी?
1: मैं एक साहित्यकार हूँ।
0: साहित्यकार हैं आप। जैसे कि बरसात शुरू हुई है और लंबे समय तक हमने गर्मी सहन करी है और पानी का संकट भी रहा है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आप कुछ उपाय बताइएगा।
1: पानी, एक तो जो हम आरओ लगाते हैं घर में,
0: जी
1: उसका जो वेस्टेज पानी रहता है उसको स्टोर करना चाहिए,
0: जी हाँ
1: और बारिश के पानी को भी संग्रहण करने के लिए आजकल जो सरकार ने बनाई हुई योजनाएं
0: जी जी
1: उसका भी हमें पालन करना चाहिए घरों में।
0: जी हाँ जी जी और आप साहित्यकार हैं विजय जी, तो आपसे बात किया तो लगता है कि आपसे कुछ सुन लें।
1: बिल्कुल। दी का साड़ियाँ नदियाँ करती शोभा, दी का साड़ियाँ नदिया करती शोर।
0: बहुत अच्छा। और विजय जी, आप अपनी पसंद का कोई गीत बताइएगा जो हमने कार्यक्रम के माध्यम से।
1: चलो सजना जहां तक घटा चले।

मीठी मीठी बातों की, मधुर गीतों की होती लगातार बरसात को अब हम विराम देते हैं। सखियों, आप भी हमें फ़ोन करके अपनी बात कह सकती हैं, अपनी पसंद के गीत भी सुन सकती हैं हमारे क्रम हेलो बिंदिया में, जिसकी रिकॉर्डिंग हर महीने के दूसरे मंगलवार को सुबह 11:00 से 11:30 तक की जाती है और इसका प्रसारण हर महीने के दूसरे गुरुवार को दोपहर 1:30 पर बिंदिया कार्यक्रम में किया जाता है। हमें कॉल करने के लिए हेलो बिंदिया के नंबर्स हैं 0771400-3482, 0771400-3483, 0771400-3484। सखियों, आज आपके लिए हेलो बिंदिया सजा कर लाई थी मैं।

नेहा त्रिवेदी, संपादन और प्रस्तुतकर्ता थे प्रकाश उदय। सखियों, अभी आप सुन रही थी क्रम हेलो विंध्या। सखियों, सफाई एक ऐसी आदत है जो सब में होनी चाहिए। जब हम इसे बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाएंगे तो सारी उम्र उनमें यह बनी रहेगी। इसके लिए सबसे सरल रास्ता है कि हमेशा सफाई से रहें, उन्हें भी सिखाएं कि शाला प्रांगण और खेल के मैदान, घर के आसपास वॉशरूम का उपयोग के बाद कैसे साफ करें, क्योंकि आपकी सिखाई ये आदत उनका जीवन सुगम बनाएगी और उन्हें तमाम बीमारियों से भी बचाएगी। बताइएगा कि मन के साथ तन भी स्वस्थ रखें और अच्छी बातें सीखें, अच्छी बातें लोगों को बताएं। और इसके साथ ही मैं विदा लेना चाहूँगी, लेकिन कहना चाहूँगी कि एहसासों में वो जादू होता है जो बेजुबान कभी मौन पढ़ ले। इसी नेक विचार के साथ दीजिएगा अनुमति अपनी रेडियो सखी नेहा त्रिवेदी को। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम बिंदिया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोठ।

0: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की प्रस्तुति दीदी के गुट सुनने वाले सभी महतारी दीदी भैया और श्रोता संगवारियों को चंदा
1: और सूरज की तरफ ले जय बिहान।
2: चंदा।
0: हाँ दीदी।
2: एक जनौला पूछो।
0: हाँ हाँ पूछो।
2: एक पेड़ के 12 नाव 30-30 के झोथा तेखर भिन्ने भिन्ने पाँव बता का है।
0: लो कर लो बात दीदी।
2: का हो गया
0: दीदी? ये जनौला हम दीदी के गोट के छठवें कार्यक्रम में पूछ चुके हैं और इसका उत्तर भी ना सभी श्रोताओं को पता भी होगा।
2: हाँ।
0: चलो फिर भी आपने पूछा तो बता देती हूँ। एक पेड़ माने एक साल, 12 नाव यानी 12 महीना, 30-30 के झोथा यानी महीने के दिन, और भिन्ने भिन्ने पाँव यानी अलग अलग दिन। मतलब सुरुज दीदी, ये जनौला ना पूरे एक वर्ष को दर्शाता है।
2: दीदी के गोट के 12वां कड़ी में संघर के
0: हाँ हाँ
2: दीदी मन संग और श्रोता संगवारी मन संग जुड़े माया के गांठ के भी एक साल पूरा हो गए चंदा।
0: तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट के एक वर्ष की यात्रा पूर्ण होने की बहुत बहुत बधाई।
2: दीदी हो, आज सुरता के एक बछर के चंदन घोरबो आप मन संग पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट के विशेष प्रसारण में।
0: एक वर्ष पूर्व इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी और माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा जी की शुभकामनाओं और प्रेरणा से हुआ।
2: और एक बछर के ये प्रेरणादायक यात्रा में दीदी मन के आत्मनिर्भरता के कहानी सुने।
0: हाँ, आरंभ से अब तक दीदी के गोट की ये यात्रा नारायणपुर जिले की इरक भट्टी से लेकर जशपुर के गांव तक, मैदानी क्षेत्र से सुदूर वनांचल तक पहुंची है।
2: पीएम आवास योजना में महिला मन के सहभागिता, नई चेतना जेंडर अभियान 4.0, लखपति दीदी ले लेके बैंक सखी के गोट, और बायर सेलर मीट ले लेके नमो ड्रोन दीदी, कृषि सखी और पशु सखी दीदी मन के गोट, ये सब ला सुनेन गोई।
0: समूह से पंचायत प्रतिनिधि तक का सफर, वित्तीय धोखाधड़ी जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर फ्रॉड व वित्तीय साक्षरता, छत्तीस कला ब्रांड विषयों पर भी जानकारी मिली है।
2: और सुरता के चंदन घोरथन तक गर्भ के सुगंध ले महमावत महिला सशक्तिकरण के अनगिनती कहानी और अनगिनती बदलाव के अनगिनती मोती में से चमकत मोती मन ले बने माला एक साल पाथन चंदा।
0: हाँ, और इस माला की मोतियों को फेरते हैं तो पाते हैं कि दीदी के गोट कार्यक्रम ने इस एक साल में दीदियों की आवाज को एक मंच दिया है। हाँ, दीदियों की हर एक कहानी में ध्वनित होता है बिहान से जुड़कर बढ़ें, चलें और नई राह गढ़ें। बिहान हर कदम आपके साथ है।
2: और दीदी मनला एक नवा पहचान मिलीस, सुनैया मन के आसला विश्वास के नवा उड़ान मिलीस। और आज पूरा एक बछर के यात्रा में दीदी के गोट कार्यक्रम सुन के सार सार निमारे दीदी मंजूरियाँ हैं हमें।
0: सुरुज दीदी, आज इतनी सारी दीदियाँ एक साथ, आपकी सफलता की कहानी हम सुनने वाले हैं।
2: तो आओ इखर मन ले मिलथन।
3: जय बिहान दीदी हो। जय बिहान दीदी।
4: मोर नाम गीता वैष्णव, जिला बेमेतरा।
5: मोर नाम शीला मानेपुरी, जिला बेमेतरा।
6: मोर नाम श्रीमती रुक्मणी साहू, जिला राजनांदगांव।
7: मोर नाम ज्ञानेश्वरी निषाद, जिला राजनांदगांव।
8: मेरा नाम कविता अंगनपल्ली, जिला बीजापुर।
9: मेरा नाम सुनीता पुजारी, जिला बीजापुर।
2: चंदा।
0: हाँ सर।
2: अब ये दीदी बीजापुर ले सुनीता दीदी और कविता दीदी घला आए हैं। दीदी आप अपन बारे में बताते हैं।
10: मेरा नाम है श्रीमती सुनीता पुजारी, मैं ग्राम पंचायत चेरपाल नियत नेलेनार से हूँ, जिला बीजापुर। मेरा समूह का नाम है सरस्वती स्व सहायता समूह, उसमें मैं सचिव हूँ। मेरा ग्राम संगठन का नाम है श्री कृष्ण ग्राम संगठन, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। समूह में जुड़ने से पहले मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब था, फिर मैं समूह में जुड़ी। जुड़ने के बाद फिर मुझे पता चला कि समूह से ऋण मिलता है। मैं समूह से फिर बैंक लिंक के राशि निकाली और मेरा पहले से छोटा सा दुकान था, तो फिर मैं बैंक से ऋण ली और मेरा दुकान को और बढ़ाई। जब दुकान बड़ा की तो उससे जो राशि मिलता था, मेरे बच्चे को पढ़ाई लिखवाई करती हूँ और मेरा घर चलाती हूँ और मेरा अच्छा से चल रहा मेरा जीवन। एक एपिसोड सुने हैं दीदी के गोट में एपीओ के बारे में, तो प्रेरणा मिली। एपीओ का गठन हुआ है 2025 में, तो उसमें 600 दीदी लोग जुड़े हैं। उसमें मुझे बेचने में दिक्कत होता था, अच्छे दाम आने से बेचूंगी बोल के रखती तो खराब भी होता था।
2: अच्छा।
10: जब एपीओ आया तो मैं अभी अच्छे दाम में बेच सकती हूँ। बिहान से जुड़ के मेरा जीवन में बहुत बदलाव आया। मैं अभी लखपति दीदी के श्रेणी में हूँ। मैं इतने लोगों के सामने मैं अपनी सफलता कहानी को रख रही हूँ।
0: दीदी के गोट की ऐसी कौन सी विशेष अनुभव है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया?
10: चंदा दीदी हाँ। जो गाना गाते ना हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे कौन लिखते हैं?
0: अच्छा, दीदी के गोट पे आप जो गाना सुनती हैं उसकी बात कर रही हैं। वैसे तो कई बार जो दीदियां होती हैं वो खुद ही गाती हैं, लेकिन हमारे पतंजलि में

0: सुने चंदा?
1: हाँ, बहुत अच्छा लगा दीदी।
2: हम वाला अच्छा लगी से दीदी।
1: रुक्मिणी दीदी, आप दीदी के गोट की एक वर्ष की सशक्त और सफल यात्रा की साक्षी हैं, है ना? आप लगातार सुन रही हैं, तो इस कार्यक्रम से आपका क्या अनुभव रहा? आप मन अपन बारे में बताते हैं।
3: मोर गाँव के नाम सुकुल देहान, मोर समूह के नाम है माँ बम्बलेश्वरी, ओमे मैं अध्यक्ष हूँ। CSC सेंटर चलाती हूँ दीदी, उसमें आधार से पैसा वगैरह निकालती हूँ, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरती हूँ, फिर उसी में फैंसी डाली हूँ। ग्रामीण वितरक गैस का बीमा सखी का भी काम करती हूँ, 4-5 आजीव का कर लेती हूँ मैं। दीदी के गोट में 10वां एपिसोड सुनने के बाद हमें साइबर फ्रॉड के बारे में जानकारी मिला, संगठन में ग्राम संगठन में अनुभव साझा कर पाए। OTP वगैरह आते हैं तो OTP नहीं बताना है। दीदी के गोट हम ग्राम संगठन में सुने तो हमला बहुत अच्छा लगी से, प्रेरणा मिली से,
2: हमला एक मंच मिली से जहाँ से हम अपन कहानी ला साझा कर सकथन। तो एक लिए
3: माननीय मुख्यमंत्री जी, पंचायत मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चंदा?
1: हाँ दीदी।
0: अभी ये दीदी मन के सब अनुभव सुने हैं,
1: ऐसा लगता है सुरुज दीदी कि इनकी कहानी सुन के भी हमारी जो दूसरी दीदियाँ हैं
0: वो मन प्रेरणा
1: लेंगी।
0: हाँ, कविता दीदी, आप ये कार्यक्रम ना जब सुने हो तो ये कार्यक्रम के बारे में आप मन के पहली विचार का बनी?
4: मेरा गांव का नाम बोरजे है, मेरा समूह का नाम है चंद्रका स्व सहायता समूह, मेरा ग्राम संगठन का नाम है नारी शक्ति। मैं समूह में जुड़ के बैंक लिंकेज राशि से बकरी पालन कर रही हूँ। मेरे पास 30-40 बकरियाँ हैं जिससे मैं सालाना इनकम 1,30,000 तक कमाती हूँ।
1: यानी आप तो लखपति दीदी भी हो,
4: लखपति
1: है ना?
4: दीदी में दीदी के गोट कार्यक्रम में पशु सखी कृषि सखी के बारे में भी सुनी हूँ, जिससे अनुभव यही मिला है कि और बेहतरीन बन सके हम लोग, बिहान से जुड़ के आजीविका को बढ़ाए, अच्छे से पशुपालन करने की प्रेरणा मिली हमें। जब से बिहान आया है हम नियत नल्लानार से जीवन ही बदल गया है।
1: क्या बात,
4: हमारे गांव परिवार की भी सब में सुधार आया है।
0: सुने चंदा दीदी?
1: हाँ।
0: मन के कहानी।
1: हाँ।
0: हाँ। अब यदि गीता दीदी के पारी है। दीदी, आप जैसे दीदी के गोट सुने हो, आपके विचार कोनो बदलाव आए बताते हो?
5: मोर गांव है ग्राम पंचायत झालम, मोर समूह नाम है नर्मदा माता, जिला बेमेतरा है। दीदी के गोट ला सरगुजा जिला से सुने रहे पहले।
1: अच्छा, हाँ।
5: तो वहाँ से मोर मन में ना विचार भी जब अच्छा लगी से, मैं सोचे कम खर्चा से पापड़ बना लेता हूँ और बड़ी बिजौरी बना लेता हूँ, तो मैं वो चालू करे। मार्च में कवर्धा में 20,000 के बेचे हूँ, और रायगढ़ में 40-45,000 के बेचे हूँ, रायपुर भी आ रहे हैं बेचे भर पापड़।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
5: तो अच्छा बिकी से यहाँ तो मोर लड़कल के, तो वही पैसा के मैं फीस पटाए स्कूल की, और कुछ पैसा मैं घर बनाए हूँ, टाइल्स लगाए ओमा लगाए हूँ। दीदी के गोट कार्यक्रम जेंडर वाले माँ हम सुने हैं तो ओमा हमार मन के जानकारी बढ़ी से।
1: हाँ, हाँ,
5: नया चेतना में तो पति दुख देते, सास दुख देते, जहाँ हमारे GRC सेंटर है वहाँ पूछे पर आते सुन के बोले हमारा गाँव में जैसे बेटी बेटा में भेदभाव रही थे, गाँव में अगर बात विवाद है, एक पति पत्नी में है, सास बहू में झगड़ा है कि मारपीट करते, वो दोनों ला समझाता ना, नहीं समझे तो फिर सक्सी सेंटर में भेजता ना। एक काम ला करे हैं, समूह में जुड़े हैं, तभी तो आज रेडियो में बोले के मौका भी मिली से, महू ला अपन कहानी रखे के मौका मिली से। एक मुख्यमंत्री जिला और पंचायत मंत्री जिला धन्यवाद कहा थी।
1: ज्ञानेश्वरी दीदी, दीदी के गोट की ऐसी कौन सी विशेष कहानी है या ऐसा कौन सा अनुभव है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया?
6: मैं ग्राम मोखला के रवैया हरू, मोर समूह के नाम है प्रतिज्ञा स्वयं सहायता समूह, जेमे दीदी मैं बुक पर के काम करती हूँ। दीदी के गोट में मैं यहाँ 3रा एपिसोड सुने, जेमे अनिता कश्यप दीदी है।
1: हाँ, हाँ,
6: है ना?
1: हाँ,
6: ओहा जो है कोसा के साड़ी बनाते, ओहा हर सरस मेला में ले जाते और अपन कोसा के साड़ी ला बेचते, वही सरस मेला में मैं भी अपन गढ़कलेवा के जो है स्टॉल लगा थू। दीदी सन में मुलाकात बहुत हो रही से।

0: दीदी के गोठ में सुने
1: हाँ।
0: तो वहाँ से प्रेरणा लेके ग्राम संगठन से मैं 3 लाख के लोन ले
1: हाँ।
0: और वहाँ के साथ सजावट करूँ। दीदी मैं यहाँ राजनांदगांव में गढ़ कलेवा के नाम से कैंटिंग चलाता हूँ, ठेठी खुरमी अरसा ये सब चीज बनाता हूँ। और अभी वहाँ पे मोर पर डे 10 से 15 हजार की डेली के कमाई हुआ थी। मोर साथ में 10 से 15 महिला और जुड़े है जेकर यहाँ से वो अच्छा से आजीविका चला थे। दीदी के गोट के हर एपिसोड में दीदी मन पूछे रहे थे सवाल
1: हाँ,
0: है ना
1: हाँ।
0: तो वो हुए में मोर एक सवाल रही से वे
1: हाँ।
0: जो जवाब देव ना वही में मोला जवाब मिल गए। ये बात मोला बहुत अच्छा लगी से दीदी के गोट
1: अच्छा मतलब आप मतलब ये अच्छा लगी कि आप मन के एक सवाल के जवाब मिल गए
0: हाँ।
1: रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट हर एक महीने के दूसरे गुरुवार को दोपहर 2 बजे से और बस्तरिया और सरगुजिया कार्यक्रम का प्रसारण दोपहर 2:30 पर सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम में योजना से संबंधित जिज्ञासा या प्रश्न टोल फ्री नंबर 1800-233-2398 में दोपहर 12 से 3 बजे फोन करके पूछे जा सकते हैं।
2: असीला दीदी अब आप अपन कहानी ला बताते हो।
3: मैं बाबा घटोली से आया हूँ जिला बेमेतरा से। समूह के नाम है माँ महामाया। मैं बीओ की भी काम करता हूँ जो मैं सची हूँ।
1: दीदी के गोट सुनती हैं तो आपके मन में पहला विचार क्या आया?
3: पहला विचार आया इसकी मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। अचार पापड़ तो मैं बेचत रहे हैं
1: हाँ,
3: लेकिन मोला वहाँ तक कैसे जाना है ऐसे ही कि मैं दीदी के गोठ में सुन के मोला प्रेरित हुई से। तो संकुल में मैं मैडम माला बोले मैडम मोला कोई आजीविका काम से मोला पैसा चाहिए ऐसे ही कि बोले हूँ। तो मैडम हम दिलाई से तो फिर मैं अचार पापड़ ला बनाया हूँ। तो गांव गांव में बेचा हूँ स्कूल में भी दे देता हूँ लेकिन मोला आगे और बढ़ना है और अच्छा क्वालिटी से बेचा हुआ ऐसे ही कि मोर विचार है।
1: क्या बात है आपके आचार और विचार बहुत अच्छा है।
3: मैं दीदी के गोठ में सुने रहे हैं
1: हाँ।
3: जो 36 कला जो ब्रांड है ओमा कैसे जाऊं मैं हाँ। मोरो जो आचार है क्वालिटी अच्छा से बेचा हुआ है अच्छा से पैसा आवा है मोरो पास जो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ ऐसे ही की मोरो विचार है। इसे जो बाहर में बेचता वो कम दाम से मिलते अगर हमारे जो 36 कला जो ब्रांड है वहाँ बेचबो तो हमारा कुछ ज्यादा फायदा मिली ओकर से हमारा आर्थिक स्थिति है और अच्छा से सुधर जाएगी।
1: बहुत अच्छा लगा दीदी वास्तव में हमारी कोशिश जो है वो सार्थक हो रही है सफल हो रही है।
4: हम वाला अच्छा लगी से दीदी आप मन से मिल के बहुत अच्छा लगी।
1: आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरुचि दी इस प्रेरक यात्रा की शुरुआत हुई थी छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर नारायणपुर जिले के माड़ के एक गाँव इरक भट्टी से। वो पहली कहानी सिर्फ एक शुरुआत नहीं थी बल्कि एक बदलाव की नींव थी।
2: हो
1: बिहान के अंतर्गत बहुत काम हो रहा है
2: हाँ।
1: और जब दीदी के गोट कार्यक्रम शुरू हुआ
2: हाँ।
1: तो आजीविका से सशक्तिकरण की अपनी अपनी कहानी लिखती दीदियों को अपनी कहानी अपनी जुबानी बताने का मौका मिला।
2: 1 साल बाद ये मंच बन गया हवा संघर्ष ले सफलता के। जी हाँ हर एक आवाज प्रेरणा हवा और हर कहानी एक नवा दिशा।
1: सही कहे
2: पारस पखरा कस बिहान ले जुड़ के अबला ले सबला बने दीदी मन के सफलता के गोठ लेके ये दिशा में बढ़त फिर मिलबो। तब तक बर देवो विदा। जय जोहार जय बिहान।
5: दीदी के गोठ
6: दीदी के गोठ अभी आप ये प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी रायपुर है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
7: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानिस विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बानिस ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
2: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
3: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
4: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री

0: मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
2: May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
1: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EAIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
3: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो एनसीआर दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
4: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: बाजार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे जगजीत कौर और पामेला चोपड़ा के स्वर में। पारंपरिक रचना के लिए संगीत खयाम का था।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

नया दौर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे शमशाद बेगम और आशा भोसले की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल थे, संगीत ओपी नैयर का था। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना सुनिए श्रोताओ, आगामी शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा उद्यानिकी फसलों में नर्सरी प्रबंधन। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉ. बलदेव अग्रवाल, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी, कृषि विज्ञान केंद्र बालोद। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

किस्मत फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ों में। एसएच बिहारी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था ओपी नैयर ने। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में शैलेंद्र की रचना। धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है तीसरी कसम।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो, फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे त सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: त काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एकर असन कई ठन कार्यक्रम हवे जिला सुने बर तै बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले, और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवे संझा कुन 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 बजे तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आशा भोसले की आवाज में अब आपको सुनवा रहे हैं शकील बदायूनी की रचना, संगीत नौशाद का है और फिल्म का नाम है लीडर।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के गाए फिल्म लीडर के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर शाम 4 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
1: शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए और व्यापक युग में प्रवेश कर चुके हैं। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए

0: हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया तथा महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
0: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
5: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
4: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णता साक्षर राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये सरकार के निरंतर प्रयासों और जनता की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मॉनसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। दिल्ली में बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne today, during which they held delegation-level talks aimed at strengthening bilateral ties. Both Prime Ministers delivered joint press statements at Government House, Victoria, following the conclusion of the summit. They hailed a transformative step change in the bilateral relationship, locking in comprehensive frameworks for regional stability, energy security and technological innovation. To secure peace and stability across the Indo-Pacific, the leaders signed a landmark joint declaration on defence and security cooperation, institutionalised an annual defence ministers' dialogue and launched a unified maritime security collaboration roadmap. Describing India and Australia as vibrant democracies and important ocean powers, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans,

नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर शुरू हो चुका है आपके आपके आपके वर्मांशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। हां जी, क्या हाल है आपके? आपके साथ हैं हम, रूमी मलिक। और जब गर्मी बहुत होती है तो हम कैसे कहते हैं ना, मानसून कमसून कमसून। और जब मानसून आ जाता है, जैसे कि आज आया है, तो मेरा तो दिल गाजन गाजन हो रहा है। लेकिन मानसून के आने से ना पता लग जाता है कि मानसून आ गया। पूछो कैसे, इस स्टूडियो का एसी बंद है यार, क्या करें, एसी की तेजी काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपको ये भी बता दें कि मानसून में कुछ लोगों को सूना सूना भी लगता है। हाँ जी, विरह रस। कालिदास ने जितने भी काव्य लिखे उसमें उसने बहुत ज़्यादा ये लिखा कि जो हीरोइन, जो नायिका होती है, वो मिस करती है हीरो को। जैसे देखो, मैं मिस कर रही हूँ आपको। और इसी बात पे शुरू करते हैं ये गीत। आपके बड़े सारे संदेश आ गए हैं। एक गीत आज के खूबसूरत मौसम के नाम, हैं जी।

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं मन भावन और अटेंडेंस लगाने का टाइम आ गया। ओहो, अटेंडेंस से पहले मुझे कहा गया है कि खत एक पैगाम मैं पढ़ दूं। धर्मेंद्र जी लिखते हैं। कौन धर्मेंद्र जी? धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा, इन सब ने हमें लिखा है भोपालगढ़ राजस्थान से। ये लिखते हैं, आदरणीय मैडम रूमी मल्लिका जी नमस्कार। मल्लिका आलिया हूँ मैं क्या? आपने तो मुझे बहुत ही अच्छा फील करवाया। मेरा नाम रूमी मलिक है। आप आ गए, हमें बहुत आनंद आया। बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोग्राम आप पेश करते हैं और बेहतरीन नगमे आप सुनवाते हैं। हम भी आपको मिस कर रहे हैं। मैसेज मेहरबानी करके पूरा पढ़िएगा। धर्मेंद्र जी देख लो, मैंने पूरा संदेश आपका पढ़ डाला है ना। और जो अच्छे गानों की बात कर रहे हैं वो तो आपकी और आपके श्रोताओं की बदौलत है ना। श्रोता हमारे आपके दोस्त। आओ जी अटेंडेंस लगाते हैं। तुलसी मस्किन जी ने कंप्लेंट करी, हमारी शिकायत है, हमारी पिछली बार अटेंडेंस नहीं लगी थी, सॉरी छूट गया होगा। अहमद फूल वाली दिग्दर्शक अहमद फूल वाले दिग्दर्शन कौर, मोहम्मद कमर, सीताराम कागरा, आफ्ताब अंसारी, गुरमीत सिंह, जाकिर लबना लुबना मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नाम, लुबना अंसारी, सीताराम कागरा जी, मोहम्मद सईद अब्बासी साहब, अल्तमाश खत्री आ गए, अल्तमाश खत्री आज, संजय ढींगिया, पुंजा जी नवकर, अजित भावसार जी, हाँ, ताज मोहम्मद, उषा चंदन, असलम मंसूरी, दिग्दर्शन कौर जी कविता जी के साथ में है, भाई मूसा शेख ठीक है, गिरीश बाम, मसरूर हासन, रुको, बोधराज खोरवाल जी, भाई मूसा शेख, मुकेश बाटा, अगले पेज पे चलो, ओके, मेरे ख्याल से सारे नाम हो गए ना, क्योंकि रिपीट है मेरे ख्याल से ये सारे के। संजय डिंगिया जी, संजय जी आपका नाम लिया था, नहीं लिया ना शायद, राजकुमार रूडी जी, अजीत कुमार नभांकर, मोहम्मद यूनुस खत्री, हरजिंदर सिंह भाटिया जी ठीक है, अस्मा खातून, सतीश अनेजा जी, अस्मा क्या लिख रही हैं, सलाम जी। दिल साफ रखना अच्छा है, बस हर किसी के लिए नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, दिल के एक कोने में कबाड़ रखेंगे क्या? अरे नहीं, दिल साफ रखो ठीक है, और क्या, आएगा तो वेलकम, जाएगा तो भीड़ कम, अपने को मतलब नहीं, खुश रहने का। फैज़ अहमद खत्री, याकूब कुरैशी हो गए सारे नाम, गव्या मल्होत्रा, देखो मैंने कितने सारे नाम ले लिए हैं। अब अजीत भावसा जी कह रहे हैं कि सत्ते पे सत्ता फिल्म का गीत सुनेंगे, कौन सा सुनेंगे, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना, इसका ये नहीं मतलब कि सिर्फ बजेगा बारिश का गाना, डोंट वरी आपके जितने भी गाने हैं सब बजेंगे ठीक है। अभी सुनते हैं अजीत जी, खुश हो।

FM Gold. मेरा तो फेवरेट गीत जिंगल स्निपेट जो भी कहो यही FM Gold. ओके अगर हाँ भाई जॉन डिकास्ट्रो साहब, जॉन डिकास्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर में भी एक जनकपुरी है, वहाँ से मुझे एक मैसेज भेजा, मेल भेजा, आपका भी अटेंडेंस लग चुका है. और ये रोहित बेलदार अब हमारे साथ में है. रोहित जी आप कहाँ से लिख रहे हैं? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से. फातिमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार, अस्मा वली बेलदार, डब्लू वली बेलदार. और ये लिख रहे हैं नमस्कार, ब्रैकेट में लिख रहे हैं मन भावन. मैं अपने नाम को समझ लूं मन भावन. पानी आप बचाओ, पानी आपको बचाएगा. बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात लिखी. अरे बहुत पते की बात है, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है ये, ठीक है ना. वेद में भी लिखा हुआ है जो लोग इस जन्म में पानी बर्बाद करते हैं ना, उनका अगला जन्म मरुस्थल में होता है. समझ गए हैं? समझे कि नहीं समझे? डेजर्ट में, रेगिस्तान में, मरुस्थल में जगह. तो ये पानी बचाना बहुत अच्छा संदेश दिया. कृपया हमारे पसंद के फिल्म तीसरी कसम का गीत में शामिल करें, धन्यवाद. देखो जी फिल्म तो लिख दी तीसरी कसम और उसके बाद गाना नहीं लिखा है. ओके कोई बात नहीं, हम बजा देंगे. आपको पता है हम बात करते हैं हमेशा ऋतुचर्या की आयुर्वेद में कि क्या क्या खाना है बारिश में, लेकिन पान खाना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है खाने के बाद. और पान में जितनी भी चीज़ें डलती हैं आयुर्वेद कहता है, जिसमें चूना है, कत्था है, ये सारी के सारी चीज़ें श्वास रोगों के लिए बहुत अच्छी होती है. यानी कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए, किसी को ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, तो ये पूरा का पूरा श्वास की नली आपकी जो है साफ करती है. और वो पत्ता भी अपने आप में जो है बहुत पौष्टिक होता है. ये बात मैंने क्यों बताई? क्योंकि तीसरी कसम का ये गीत है जिसमें ये कह रही हैं पान खाने को.

गाना सुने लिसनर हमारो भारत भूषण जी लिख रहे हैं, रूबी मलिक जी गुड आफ्टरनून, आई एम लिसनिंग टू यू सो प्लीज मार्क मी प्रेजेंट आई हैव, और इन्होंने मुझे ये वाइट फील बेंगलोर से, बेंगलुरु से हमको लिख रहे हैं। भारत भूषण जी के साथ अंजू दिव्येंदु संस्कृति और पौरुष भी हैं। देखो जी पिछली बार बड़े नाराज हो गए थे, अरे गलती से छूट जाता है मेरी मजाल है आपके मैसेजेस आपके पैगाम मिस करूं, बताओ आज तो मैं आपके लिए गीत भी बजा रही हूँ, क्या याद रखोगे, रखना ना याद लेकिन प्लीज, है ना, 100 साल पहले, ये बड़ा अच्छा गीत है ना, आइए सुनते हैं 100 साल बाद तक भी गीत, क्या गीत बनाया है, देखो कमाल की बात है ना, है ना, तो देखने के लिए कौन आ रहा है अगले 100 साल तक, लेकिन देखो गीत कमाल का है।

एफएम गोल्ड पर जो साथी अभी अभी जुड़े हैं, बता दें कि मन भावन कार्यक्रम चल रहा है, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है ये। और स्वरूप आनंद सरजल, इन्होंने लिखा है, मेरा नाम स्वरूप आनंद सरजाल है, जोड़ा पीपल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, और मेरे फैमिलीज के लोग सभी और मेरे दोस्त लोग सभी हैं। तो स्वरूप आनंद सरजल जी के फैमिलीज के लोग सभी और दोस्त लोग सभी को भी रूमी मलिक का प्यार भरा हेलो सलाम नमस्कार। धरती कहे पुकार के फिल्म का गीत है। हाँ जी, कौन सा भरा जी? हम तुम चोरी से, हाँ हाँ है मेरे पास, सुना दूं? ये लो।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। बात हो रही है मन भावन में आपके मैसेजेस की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोग बड़े जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, है ना। मुझे सब याद रहता है, बहुत ज़्यादा मेल नहीं पड़े, ये नहीं हो रही है ना। जब आपके संदेश आते हैं, मैं कितनी बार मैं नाम नहीं लूँगी, मैं कह चुकी हूँ कि जब आपका मैं मेल खोलती हूँ तो उसमें कम से कम 15 बार आपका ईमेल आईडी लिखा होता है, उसके बाद मेल के नीचे लिखते हैं। फिर जब आपको लगता है कि आपका एक गीत जो है बज चुका है, किसी और लिस्टर ने, श्रोता ने वो उसकी फरमाइश कर दी है, फिर एक दूसरा मेल, मैं ईमानदारी से वो दूसरा मेल भी खोलती हूँ, है ना। उसमें फिर से आप क्या डिलीट नहीं कर सकते वो जो आपके सिर्फ ईमेल आईडीज लिखे हुए हैं? क्या मेरे पास एज एन आरजे इतना टाइम रहेगा कि मैं पहले वो नीचे पूरा स्क्रोल करूं, फिर देखूं आपकी क्या फरमाइश है? दोस्तों, ऐसा है, जब हम अपने कर्मों के तो वकील बन जाते हैं, है ना, आर्ग्यू करते हो ना, जस्टिफाई करते हो अपने आप को। जब हम अपने कर्मों के वकील बन जाते हैं और दूसरों के कर्मों के जज बन जाते हैं, तो फिर फैसले नहीं फासले होते हैं। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल, आप सुन रहे हैं मन भावन, आपके साथ हैं हम रूमी मलिक। बिहारी कॉलोनी से तुलसी मस्किन, चैतन्य, रचिता और आशीष कह रहे हैं कि लोफर फिल्म का गीत सुनना है, आज मौसम बड़ा बेईमान है। बस मौसम को बेईमान रहने दीजिए, है ना, हम लोग ईमानदारी बरते रिश्तों में तो बहुत बेहतर है।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप। प्यारी प्यारी बुआ जी को हम बच्चों का आदाब नमस्कार। अल्तमाश खत्री लिख रहे हैं हमारे को, अल्तमाश समीना मुदस्सिर फिरदौस जुम्मा नगर खंडवा से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बुआ जी भी आपको सलाम वापस भेजती हैं। और आप ना थोड़े से और गाने भेजा करो, है ना। कई बार ऐसा होता है आप एक गीत बोलते हो, मुझे बहुत, मैं शर्मसार होती हूँ जब मुझे वो गीत नहीं मिलता। ओहो चॉइस दिया करो। रिजवान रेहान हमारे साथ में हैं, कहाँ से लिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से, जिला है अंबागढ़ चौकी। रिजवान के साथ आयशा, सबीहा, अनस और रेहान भी हैं। बोलिए रिजवान क्या खातिर की जाए, ये सुनना चाहते हैं तेरी कसम फिल का गीत, बहुत अच्छा गीत है। हम जिस रस्ते पे चले उस रस्ते पे थी प्रीत खड़ी, फिर क्या था, प्रीत ने हमको क्या था लगवा दी अरमानों की हथकड़ी। आओ ना गाना सुनते हैं।

आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं मन भावन। और जैसे मेरी आवाज़ के साथ टिक टिक भी आपको सुनाई देती होगी, देखो लगातार ये हाथ जो हैं चलते हैं कि आपके पसंद का गाना हमको मिल जाए। और नहीं तो क्या, और आप में से कुछ लोग तो मुझे शोध का कार्यक्रम देते हो भाई, बिल्कुल शोध समझते हो, रिसर्च, कौन सी फिल्म कौन सा गाना, इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है मैं आपको बता ही नहीं सकती ढूंढने के लिए। थोड़ा सा आप भी रिसर्च करके दिया करो ना, सारे शिकवे गिले हाय हाय बोल मेरी ढफली बोल बोल, आज़ाद देश के गुलाम, मैंने तो इस कभी इस फिल्म का नाम ही नहीं सुना। चलो आप कहते हो तो ठीक है सुन लेते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों ने इसकी फरमाइश की है और हम सुनते। असलम मंसूरी जी आप क्या कह रहे हैं, देख लें आपका भी संदेश। हाँ, ये कह रहे हैं कि मैं भी सुन रहा हूँ कार्यक्रम फरुखाबाद से और मेरे साथ वही मंसूरी भी हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अब रहना यहीं पर 6 बजे तक, ठीक है ना, गाते गुनगुनाते भी सुन के जाना, 5-10 पे आता है। मुकेश भट्टा जी बड़ी लेट आए हो आप, हैं नीलम और निहारिका भी साथ में हैं, देखो सारी अटेंडेंस आपकी आज पूरी हो रही है। आफ्ताब अंसारी हो गए जी, और आई वुड सजेस्ट कि बहुत ज़्यादा ना आप ऐसे मेल्स ना भेजें जिनमें बहुत फोटोग्राफ्स वगैरह हो, तो कई बार ना मेल खुलता नहीं है, है ना। और एक मेल तो बिल्कुल आईडी ही नहीं लिखा हुआ, वो जी मेल लिखा हुआ है सिर्फ, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं कह रही थी कि सीताराम कागरा जी आपका गीत, आपकी पसंद का गीत ढूंढूं मैं, एक सेकंड देते हो मेरे को आप, हैं कहाँ पे था, हाँ एक मिनट रुको, देख लो आपके साथ। डम डम टिका टिका मौसम भीगा भीगा अभी तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सतीश अनेजा जी सुन रहे हो ना आप, एंड तक सुना करो मेरे को। देखो रिमझिम गिरे सावन आपने फरमाइश की थी, बहुत लोगों ने की थी पिछली बार भी, मैं थक गई हूँ वो गीत बजा बजा के, सावन तो गिर ही रहा है। तो आओ सीताराम कागरा जी आपके साथ कौन कौन है, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, ठीक है जी। शुक्रिया जी, इन्होंने पहले ही कह दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छा गीत हमको दे दिया। आओ जी, सो दिस इज ये इस कार्यक्रम का मन भावन का आखिरी गीत रहेगा, मन भावन संपन्न होगा और फिर चलता रहेगा आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, 5-10 पे गाते गुनगुनाते भी आता है, जरूर सुनिएगा।

0: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर लेकर हाजिर है शाहिद। और यहां पर संदेश टू सोल्जर में हमेशा हम बात करते हैं अपने वीर साहसी सैनिकों के बारे में और उनकी गाथाएं हम सुनते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं और हम उनकी जीवनी उनके करियर के बारे में भी जानते हैं और अपने प्रोग्राम में हम उनकी लाइफ में झांक करके उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं और उनके स्ट्रगल को उनके करियर को उनके जोश और जज्बे को भी हम जानने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज संदेश टू सोल्जर्स के खास प्रोग्राम में शाहिद है आपके साथ। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल SSB, जो राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित हैं और इसके अलावा कई सारे कमेंडेशंस एप्रिसिएशंस से भी नवाजे जा चुके हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट SSB। तो बहुत जल्द इस गाने के बाद हाजिर होते हैं और मिलाते हैं आपको आपके आज के हमारे खास मेहमान संदेश टू सोल्जर्स के।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स शाहिद आपके साथ और आज के हमारे खास मेहमान हैं संदेश टू सोल्जर्स में श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स के हमारे प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो पर।
1: धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट सेल और FM रेडियो रेनबो का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमें मौका दिया गया है कि मैं अपने संदेश को पूरे देश और विदेश के सभी लोगों के साथ साझा कर सकूं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे पास आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आने का।
1: सर धन्यवाद।
0: आपको बता दें कि श्री शिवम कुमार असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता अदम्य साहस सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स मेडल्स कमेंडेशंस और एप्रिसिएशंस सर्टिफिकेट्स तो उनको मिले ही हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो सर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में और आपसे जानना चाहते हैं कि सर आपके बारे में हमने जब जाना तो आपने फैशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल की विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो SSB और NIFT तो काफ़ी मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, तो कुछ बताइए इसके बारे में।
1: सर इसके बारे में मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि अंग्रेजी के एक पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय।
0: ओके,
1: मेरी कहानी है कुछ ऐसी ही रही है
0: जी।
1: जब शुरुआत से बचपन से तो यूं मैं नहीं कहूंगा कि मुझे फौज में आने का शौक था
0: जी,
1: लेकिन जब मैं नौकरी कर रहा था NIFT के उपरांत तो हमारे सोसाइटी में एक शहीद मेजर नितेश राय थे जो शहीद हुए थे अफगानिस्तान के इंडियन आर्मी के एक मिशन में और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था हमारे सोसाइटी में जिसमें मुझे होस्ट करने का मौका मिला।
0: अच्छा, तो आप उस जमाने में पढ़ रहे थे?
1: नहीं, मैं कॉलेज के बाद में नौकरी कर रहा था।
0: अच्छा,
1: तो उसके जब उस होस्टिंग के दौरान मुझे उनकी पूरी जीवनी जानने का मौका मिला, उन्होंने क्या क्या त्याग किए हैं देश के लिए इसको जानने का मौका मिला, उनके साहस और शौर्य से वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय के किसी कोने में जाके बैठ गई
0: जी।
1: उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे भी यही करना है, वर्दी तो धारण करनी है देश के लिए और राष्ट्र सेवा में ही
0: जी। तो जो शहीद मेजर थे वो आपके प्रेरणा स्रोत बने और आप फैशन टेक्नोलॉजी से सीधा सशस्त्र सीमा बल।
1: जी बिल्कुल, फैशन से ये सशस्त्र सीमा बल का जो सफर है
0: जी,
1: उसको
0: जी।
1: उनको मैं शहीद मेजर नितेश राय को डेडिकेट करता हूँ।
0: क्या बात है सर। सर यहाँ ये भी बताइए हमें शिवम कुमार जी के ये जो सफर आपका रहा, मतलब आपने जैसे कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, आपने क्या महसूस किया उस वक्त, जो जज्बा आपका रहा होगा वो प्लीज बताइए।
1: उस वक्त जब मैंने ये जाना, उनके जीवन के बारे में जाना, उनके महज 25 साल की उम्र में वो शहीद हो गए और उन्होंने देश के जो के लिए जो किया है, तो ये वाकई में एक प्रेरणा स्रोत था मेरे लिए। मैंने देखा कि आपके व्यक्तित्व के कई ऐसे आयाम हैं जिससे कि आप अपरिचित होते हैं, लेकिन जब आप फौज की नौकरी में आते हैं तो ये विभिन्न आयाम से आप परिचित होते हैं, तो आपको लगता है कि व्यक्ति से बड़ा समाज है, समाज से बड़ा राष्ट्र है। इस जज्बे को मैंने पहचाना जब मैं फौज की ट्रेनिंग में आया, जब मैं फौज में आया।
0: क्या बात है सर, देशभक्ति से बढ़कर मोहब्बत कोई नहीं हो सकती।
1: जी बिल्कुल।
0: तो फिर आपका ये सफर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन हासिल करने के बाद एक फैशन ग्रेजुएट बंदा फिर सशस्त्र सीमा बल का एक सिपाही बन जाता है, तो वो सफर अब आगे जब शुरू होता है उसके बारे में बताइए।
1: जी 2018 UPSC में मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ 2020 के जनवरी माह में सशस्त्र सीमा बल एकेडमी में। मैं बतौर डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट वहां पे अपनी बेसिक ट्रेनिंग की शुरुआत हुई
0: जी।
1: और एक साल के कठिन परिश्रम के उपरांत, एक साल की कठिन ट्रेनिंग के उपरांत जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग थी मेरे लिए क्योंकि मैं फिजिकली उस टाइम पर बहुत ज़्यादा साउंड नहीं था, उस ट्रेनिंग के उपरांत मैंने जाकर के फिर वो तमगा हासिल किया, मैं असिस्टेंट कमांडेंट बतौर फील्ड में उसके बाद मेरी नियुक्ति हुई।
0: जी जी, तो वो सफ़र जिस तरीके से रहा आपको फैशन एक बिल्कुल ही अलग एक फील्ड हो गई और उसके बाद आप फौज का एक हिस्सा बनते हैं, आप एक फौजी बन गए, एक सोल्जर बन गए, तो वो जो हथियारों के साथ जब आपका एक रिश्ता बना तो वो कैसा महसूस आपने किया? एक आम जनमानस जो है, एक आम इंसान जो है, वो इस चीज़ को शायद आपकी बातों से कुछ महसूस कर पाए, उस जज्बे को।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी
0: जी,
1: जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी
0: जी,
1: माता

0: और मदरलैंड इससे ये स्वर्ग से भी ऊपर है, और इस चीज को आपके हृदय में, आपके खून में, आपके अंतर मन में अंतर्निहित कर दिया जाता है ट्रेनिंग के अंदर। और यही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने ठान लिया कि आज से मेरी दो माएं हैं, एक मेरी माँ अपनी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, और एक मेरा
1: मातृभूमि।
0: मातृभूमि,
1: क्या बात है सर। यही जो आपके जोशीले और जज्बात से भरे हुए जो जज्बा है आपका, जो शब्द हैं आपके, आप इस मौके पर, अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपके करियर को जानेंगे, आपके अचीवमेंट्स को जानेंगे, आप हमारे जो देश का युवा है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे इसी जज्बे के साथ?
0: जी, मैं देश के युवाओं के लिए एक पंक्ति है जो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा।
1: जी,
0: कि देश के युवाओं में अपने आप के अंदर, उसके अंदर पौरुष होना चाहिए। पौरुष सबसे पहले युवाओं में जरूरी है, क्योंकि जिसके अंदर पौरुष है, जिसके अंदर पुरुषार्थ है, आप उसी से, आप उसी के प्रति आप अपनी इज्जत रखते हैं, आप उसी के प्रति अपनी सांत्वना रखते हैं। अगर आपके अंदर पौरुष नहीं होगा तो आप समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सब सर्वोपरि है। आप अपने अंदर पुरुषार्थ को धारण करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो फौज की सेवा में आके हो, या आप वो टीचर बन के हो, या आकाशवाणी की सेवा में जैसा आप कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ होना सबसे आवश्यक है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। और हम समझते हैं कि जो आपने बात की बहुत ही सच्ची और बहुत ही दिल से आपकी जो बात निकली है वो दिल तक पहुंचेगी, हमारे माध्यम से भी और आपके जरिए भी, दिल से दिल तक, आकाशवाणी के माध्यम से। आपने जो SSB जब ज्वाइन किया तो आपने बताया कि किस तरीके से आपकी ये शुरुआत हुई, लेकिन आपने इसके अलावा ज्वाइन करने के बाद भी कई प्रोफेशनल कोर्सेज किए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव और सिक्योरिंग, आपने पहली पोजिशन भी हासिल करी थी। उसके अलावा आपने GIS कोर्स किया SSB की अकेडमी भोपाल से। तो वो जो एक कोर्स आपने किया आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, वो कितना, मतलब क्या बहुत खतरनाक, बहुत आसान था? क्योंकि देखने में, पढ़ने में नहीं लग रहा कि बहुत आसान रहा होगा।
0: जी बिल्कुल, ये भारत के बदलते सुरक्षा परिदृश्य में
1: जी
0: एक्सप्लोजिव IED जैसी घटनाएं आमतौर पर कई ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो बतौर अ सोल्जर ये एक व्यक्ति को ट्रेन होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से एरिया में कहाँ एक्सप्लोजिव लगाया जा सकता है, कैसे एक्सप्लोजिव को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन चीज़ों के विषय में इस कोर्स में बताया गया, ताकि उस क्षेत्र की जो जनता है उस क्षेत्र में फोर्स ऑपरेट कर सके और उस क्षेत्र की जनता को सुरक्षित कर सके।
1: जी, तो शिवम कुमार जी, हमें ये भी बताइए कि आपने GIS कोर्स, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कोर्स आपने किया, उससे आपकी ट्रेनिंग के लिए और आपकी जो सेवाएं हैं उसमें किस तरीके से आप उसको और बढ़ा सके, सेवाएं अपनी और बढ़ा सके आप?
0: जी बिल्कुल, ये हमारे जनरली जो हमारा इलाका होता है जहाँ पे कि हम अपनी सेवाएं देते हैं, वो बहुत सुदूर और रिमोट एरियाज में रहता है। तो वहाँ पे हमको एक रेडी टू अवेलेबल एक मैप चाहिए होता है, जिसको कि हम डिजिटली देख सकें और देख सकें कि कहाँ कहाँ हमारी तैनाती हुई है। तो इसके लिए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम अपने ट्रूप्स के मूवमेंट पे नज़र रख सकते हैं, वो कहाँ कहाँ हमारी तैनाती है इस पर नज़र रख सकते हैं। इसके लिए GIS कोर्स महत्वपूर्ण है।
1: तो आप ऑलरेडी एक सहायक कमांडेंट थे, उसके बाद भी SSB के ही आप जरिए ये सब कोर्सेस कर पाए, इतना आगे और बढ़ पाए, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ा पाए और इम्प्रूव कर पाए, तो इसमें फिर आपको आगे भी इस तरीके के फिर मौके मिले जहाँ पर आप अपनी सेवाएं उस तरह से दें?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो हमारे एक जेंटलमैन को वो एक फौजी में तब्दील करती है, लेकिन दैट इज द बेस, वो बेस है, फाउंडेशन है। उसके ऊपर आपको लगातार कोर्सेज करने हैं ताकि आप एक हुनरमंद और एक आप एबल ऑफिसर बन सकें। तो इसके लिए सारे कोर्सेज,
1: मतलब आप अपनी निपुणता को लगातार जो है बढ़ाते रहें।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसमें एडिशन करते रहें। इसी एडिशन में आपकी एक बहुत ज़बरदस्त जो आपने ग्वालदाम उत्तराखंड में की कमांडो ट्रेनिंग भी आपने की इन सब के साथ साथ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
0: जी कमांडो, कमांडो जो है वो एक फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से आपको सशक्त बनाता है कि आप विषम परिस्थितियों में, दुर्गम पहाड़, दुर्गम वनों में आप लंबे लंबे ऑपरेशंस कर सकें, अपनी ट्रूप्स को मोराल को हाई रख सकें और ऑपरेशंस में सामरिक रणनीति के साथ ऑपरेशन में विजय हासिल कर सकें।
1: तो सर ये तो ट्रेनिंग बहुत टफ रही होगी, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस इस कमांडो ट्रेनिंग वाला?
0: जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग तो टफ होती है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ट्रेनिंग तो बहुत टफ रहती है, लेकिन आपके अंदर जो वो जज्बा होना चाहिए वो ऐसा निहित कर दिया जाता है उस्तादों के द्वारा, इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा, कि वो समय धीरे धीरे पार हो जाता है और आप जब बिगर पिक्चर की ओर देखते हैं, जब आप देखते हैं कि यहाँ से जब आप तप के जाएंगे, जब आप निखर के जाएंगे यहाँ से, तो फील्ड में इसके कई फायदे होते हैं, जो कि फायदे आज हमें महसूस कर रहा हूँ मैं।
1: सर आपने इतनी सब ट्रेनिंग हासिल करी, आपने अपनी एक बहुत ही एक अलग इमेज, एक बहुत ही बड़ी पोजीशन आपने बनाई,

0: और इसके ही एवज में आपको अपनी सेवाओं के बदले ही बहुत ज़्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया, आपको बहुत सारी कमेंडेशंस एप्रिसिएशंस भी मिले, और साथ ही साथ आपने अपनी जो लीडरशिप स्किल थी, ऑपरेशनल एक्सेलेंस थे, और ख़ास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस, उसमें भी आपने न सिर्फ उनको अच्छे से किया बल्कि उनमें निपुणता हासिल करके एक अपनी एक ऐसी पोजीशन बनाई जिसकी वजह से आपको वो रिकॉग्निशन, वो अवार्ड्स, वो मेडल्स से नवाजा गया।
1: जी बिल्कुल, मेरी ये मेरा ये सौभाग्य था कि एकेडमी से निकलते ही मुझे पहली ही पोस्टिंग एंटी नक्सल ऑपरेशंस के थिएटर में मिली
0: जी,
1: जो कि बिहार के लखीसराय ज़िले में था, और क्योंकि मैं झारखंड बिहार से मेरा ताल्लुक है
0: जी,
1: तो सन ऑफ सॉइल होने का फ़ायदा मुझे वहाँ पे मिला। मतलब वहाँ पे लोगों की क्या पीड़ाएं हैं, नक्सल का मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं विलेजर्स के साथ, कैसे उनको ब्रेन वॉश करते हैं, ये समझना मेरे लिए ज़्यादा आसान था क्योंकि लोग मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते थे बींग अ लोकल, मुझे ये फ़ायदा मिला। और फिर फाइनली जो आगे की रणनीति थी, जो सीनियर्स का सपोर्ट था, उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग हुई।
0: और आगे हम आपसे जानेंगे कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन आपने किए, एंटी माइस्ट ऑपरेशंस भी आपने किए, और बिहार का एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यादगार एक ऑपरेशन था जिसकी ही बदले में आपको उस सेवा की ही एवज में पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया, और हम उसके बारे में आपसे जानेंगे आगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे सुनने वालों के, हमारे श्रोताओं के, आपके लिए। आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल।

0: भारत तुझे सलाम। देश के नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगा एक बार फिर आपका आज के इस बहुत ही स्पेशल शो में, जिसमें जोश से भरपूर श्री शिवम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं।
1: धन्यवाद साहिद जी।
0: और मैं अपने लिसनर्स को, अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप हमें, हमारे पास लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, जिन लोगों को अभी तक मैं नंबर नहीं बता पाया था। और आप साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में हमसे हैं जुड़े हुए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से हुआ सफर शुरू बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन के साथ श्री शिवम कुमार का, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो बन गए एक जोशीले जांबाज सिपाही सशस्त्र सीमा बल के। सर आपकी पूरी सर्विस में अभी तक की, आप अभी भी सर्विस में हैं, और सर्विस के दौरान आपकी पोस्टिंग रही SSB एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश में और 32 बटालियन SSB बिहार में, और फिलहाल आप सर्व कर रहे हैं CI & JW स्कूल ग्वालदाम। तो सर ये जो आप प्रेजेंटली जो सर्विंग है आपकी, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, CI & JW स्कूल में आप क्या करते हैं और ये क्या है?
1: काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदाम में उत्तराखंड में स्थापित है। ये हमारे इन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे कि, जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसे कि सभी बलकर्मी इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक उस कोर्सेज को पूरा करते हैं ताकि वो अपनी सेवा में और दक्षता हासिल कर सकें। तो हमारे CI & JW स्कूल ग्वालदम में माउंटेनियरिंग विंग है जहाँ पे कि मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि SSB की टीम माउंट एवरेस्ट की सीमाओं पर भी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर
0: जी
1: अपना विजयी तिरंगा फहरा चुकी है।
0: बहुत खूब सर, क्या बात है।
1: इसके अतिरिक्त वहाँ पे एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग होती है, कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, बहुआयामी ट्रेनिंग सेंटर है ये।
0: तो आप इस ट्रेनिंग सेंटर में एज ए ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बतौर इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
0: जी तो सर किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप पहले सर्व कर चुके उसके बाद फिर आप अब ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो सीखना और फिर सिखाना, इन दोनों में कितना अंतर आप पाते हैं और क्या ज़्यादा कठिन आपको लगता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही का अपना अपना महत्व है।
0: जी
1: जिस व्यक्ति ने धरातल पर कार्य किया है, जिसे धरातल की जो भी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, वो पता है, वह बेहतर तरीके से उसको अपने आने वाली पीढ़ी को या जो भी ट्रेनीज रहते हैं उसको बता सकता है। और यही करने की मैं कोशिश करता हूँ, जो भी मैंने ग्राउंड में अपने अनुभव से और जो हमारा एक वहाँ पर टेन्योर रहा है उससे सीखा है उसको ट्रेनिंग्स को बताने की मेरी चेष्टा होती है ताकि वो ग्राउंड के लिए रेडी बन सके।
0: जी अच्छा शिवम कुमार जी, हम यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे कि एक जब फौजी बन रहा होता है तो उसके दिल में क्या अरमान, क्या जज्बा होता है देश सेवा को लेकर के? क्या वो सब चीज़ें चाहता है कि वो जाएगा फ्रंट पर और जैसे दुश्मनों का मुकाबला करेगा और वो बिल्कुल एकदम बेखौफ होकर के, निडर, बिल्कुल साहस के साथ उनका सामना करेगा भले ही फिर वो अपनी जान की परवाह ना करे, कुछ भी हो जाए, वो जज्बा कैसा होता है?
1: बिल्कुल शाहिद जी, इसमें ऐसा है कि जब हम बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत धीरे धीरे हमारी नौकरी आदि बढ़ती जाती है
0: जी,
1: तो हमें ये समझ में आ जाता है कि एक फौजी के जीवन का ध्येय वाक्य होता है कि लड़ाई ना तो अधूरी होती है और ना ही अधूरे मन से लड़ी जाती है।
0: क्या बात है।
1: तो एक फौजी अपने पूरा जीवन न्यौछावर करता है, इसी के लिए वो तपता है ताकि जब मौत सामने नाच रही हो
0: जी
1: तो फौजी उसका डट कर सामना करे और अपने देशवासियों का, अपने राष्ट्रवासियों का, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उसे दिया गया है
0: जी,
1: उसे बखूबी निभाए।
0: क्या बात है। ये जोशीले स्वर आ रहे हैं हमारी तरफ श्री शिवम कुमार जो हैं असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर ये जज्बा और ये जोश आप जो जिस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं आपको देख करके और आपसे सुन करके, तो इस जज्बे के साथ ही हमारा युवा अगर इसमें जाना चाहता है तो किस तरीके से आप उसको गाइड करना चाहेंगे?
1: जी युवाओं के लिए सशस्त्र सीमा बल में जाने के 3 रास्ते हैं
0: जी।
1: अगर कोई कांस्टेबल लेवल पे भर्ती होना चाहता है तो SSC द्वारा GD की परीक्षा आयोजित की जाती है जिसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी मैट्रिकुलेशन होती है।
0: ठीक है।
1: इसके उपरांत कोई अगर सबऑर्डिनेट ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर के पद पर जाना चाहे
0: जी।
1: तो SSC द्वारा CPO की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है किसी भी स्ट्रीम में, और बतौर डायरेक्ट क्लास ए ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट अगर इसमें कोई जाना चाहे
0: जी,
1: तो UPSC द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन करवाई जाती है, जिसके लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है।
0: ओके, जैसे कि आपने UPSC पास करके
1: जी बिल्कुल
0: एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आपने ज्वाइन किया
1: जी बिल्कुल।
0: लगातार हमारे पास हमारे आज के मेहमान श्री शिवम कुमार के लिए यहाँ पर मैसेजेस का सिलसिला लगातार जारी है। शिवम कुमार जी, मैं आपको वो मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे आपका जो बहुत ही ज़्यादा एक यादगार मैं कहूँ, और वो हर तरह से यादगार एंटी मास्ट ऑपरेशन आपने जो किया लखीसराय बिहार में फरवरी 2022, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कितना क्रिटिकल था, वो ऑपरेशन कितना कामयाब था और कितना खतरनाक था वो ऑपरेशन।
1: जी बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे अपनी नौकरी के पहले एक दो वर्षों में ही
0: जी
1: ऐसे नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल होने का मौका मिला, और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा श्री सोमी जोशी सर जो इंस्पेक्टर जनरल थे
0: जी,
1: श्री दीपक सिंह जो मेरे बटालियन के कमांडेंट थे 32वीं वाहिनी के, इसके अतिरिक्त मेरे जो सीनियर्स थे श्री नरपत सिंह
0: जी,
1: श्री जसवीर सिंह तोमर, श्री गुलशन झा, और जो मेरे सबॉर्डिनेट्स और कलीग थे ऋतुराज, अरविंद
0: जी,
1: राणा और प्रदीप का, जिन सब के टीम वर्क ने जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे ग्रूम किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था फौज के लिए, मुझे ग्रूम किया ताकि मैं इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकूं, लीड कर सकूं और विजय हासिल कर सकूं
0: जी। और आपको हम बताना चाहेंगे कि शिवम कुमार जी हमारे पिछले संदेश टू सोल्जर्स में कुमार ऋतुराज जी भी हमारे साथ इस शो में मौजूद थे, तो वो आपके सीनियर थे, उन्होंने भी बहुत गाइड किया आपको।
1: जी जी बिल्कुल, वो मेरे साथ काम करते थे, वो मेरे सबॉर्डिनेट थे और उनका भी सहयोग रहा है इस चीज़ में
0: जी। तो हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे ये ऑपरेशन किस तरीके से आपने कंप्लीट किया और कितना टफ था, कैसे प्लानिंग करी और कितने चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, आपका टीम वर्क कैसा था?
1: जी बिल्कुल, सर्वप्रथम यह है कि किसी भी ऑपरेशन को
0: जी
1: सिर्फ आप असले और बारूद के बल पे आप नहीं जीत सकते हैं। ऑपरेशन जीता जाता है टीम वर्क से, साथियों के सहयोग से
0: जी,
1: एक उचित मार्गदर्शन से और सामरिक रणनीति से। इस ऑपरेशन में भी हमने सबसे पहले जो किसी भी ऑपरेशन का मूल आधार होता है वो है इंटेलिजेंस इकट्ठा करना
0: जी।
1: सबसे पहले हमने इंटेलिजेंस इकट्ठा की माओवादियों के बारे में, जिस एरिया में मैं काम करता था
0: जी
1: लखीसराय बिहार में, वहाँ जितेंद्र कोड़ा, विनोद कोड़ा और अर्जुन कोड़ा, ये सब आतंक के प्रतीक थे जिनके ऊपर 50 से अधिक हत्याओं के मामले चल रहे थे। ये सभी नक्सली टीम के मेंबर्स थे और 50 से अधिक हत्याओं के इन पे मामले थे। हमने उनके बारे में आसूचना हासिल की, इंटेलिजेंस हासिल किया उनके बारे में, इसमें कि हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थे
0: जी,
1: और टेक्निकल चीज़ों का भी हमने मदद लिया, गैजेट्स का हमने मदद लिया। उसके बाद उनको हमने एक चक्रव्यूह में फंसाया, जिस चक्रव्यूह में सभी नक्सली फंसते चले गए और फाइनली ये ऑपरेशन, एक लंबी कहानी है, ये एक दिन का सफर नहीं था, 3 महीने तक इसकी तैयारी चली।
0: ओके, तो आपने ये जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे इनको न्यूट्रलाइज भी किया और इनको मतलब इनके उन जो काम थे इनके, उनके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी उनको भी आपने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया इस ऑपरेशन के माध्यम से?
1: जी बिल्कुल, उनका जो शैली था उनका, वो किडनैपिंग करते थे, एबडक्शन करते थे
0: जी,
1: लोगों में उनका आतंक था, कभी भी रात में किसी भी घर किसी के घर घुस जाना और बंदूक की नोक पे उससे ऐसे कार्य करवाना जिसको कि वो नहीं चाहता है करना, और उनके डर के कारण वहाँ की जो जनता थी कभी खुल के हमसे बात नहीं करती थी, अपनी शिकायतों को नहीं रखती थी। तो इस चीज़ पे हमने काम किया और फिर ये एक पूरी प्रक्रिया थी जिसको कि हमने किया इंटेलिजेंस जनरेशन से लेकर के और ऑपरेशन एग्जीक्यूशन तक।
0: और जाहिर है कि जब इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया तो फिर वो जो एक भरोसा जो टूट रहा था वो जनता में भी फिर दोबारा से कायम हुआ होगा।
1: जी बिल्कुल, इसमें ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के उपरांत

0: असली खुशी तो वही होती है, असली खुशी ये नहीं है कि आपने नक्सली को मार दिया या आतंकवादी को मार दिया, असली खुशी वो है कि जब आप जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल से निकलें, जब आपका कॉन्वॉय निकले
1: जी,
0: या छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा या बिहार के भीमबांध से जब आपकी गाड़ी निकले और तब कोई बच्चा हाथ में झंडा लिए जय हिंद आपको करता है,
1: क्या बात है,
0: तब जो उसके चेहरे की जो वो सुरक्षा का भाव उसके चेहरे पे रहता है, ये आपकी असली जीत है बतौर फौजी,
1: क्या बात है। तो उस झंडे के साथ और उस जय हिंद के नारे के साथ वो जो खुशी मिलती है वो खुशी सबसे बढ़कर होती है।
0: जी बिल्कुल, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही है कि जनता का विश्वास जो हमने जीता है
1: जी,
0: वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है और इस ऑपरेशन के माध्यम से हम ये करने में सक्षम हुए थे।
1: जी बिल्कुल, क्या बात है। और यही वो ऑपरेशन था जिसकी वजह से आपको प्रेस्टीजियस पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया राष्ट्रपति द्वारा 2024 में।
0: जी बिल्कुल, इस ऑपरेशन में सबका सहयोग था, सीनियर से लेकर के जूनियर सबका सहयोग था
1: जी।
0: मैं आपको छोटा सा वृतांत इस ऑपरेशन का बताना चाहता हूँ।
1: जरूर जरूर।
0: ये हमारी प्लानिंग चल रही थी, जो बिहार के लखीसराय में मैं लोकेटेड था वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी, तो हमारी प्लानिंग चल रही थी कि वहाँ का जो नक्सल ग्रुप है उसको कैसे ट्रैप किया जाए, अपने चक्रव्यूह में कैसे लाया जाए। तो जिन सीनियर्स के मैंने नाम बताया आप
1: जी,
0: उनके सानिध्य में हमारी प्लानिंग चली, फिर हमने एक गुप्तचर को प्लांट किया उनके नक्सली टीम में और फिर उसके द्वारा दी गई सटीक जानकारी के बेसिस पे हमें ये पता चला कि दिनांक 2 फरवरी 2022 जो मुठभेड़ का दिन था
1: जी,
0: उस दिन ये नक्सली जंगल में आने वाले थे, कोई एक खास जगह थी जहाँ पे वो आने वाले थे। तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे, हमने पहले से एक लंबी प्लानिंग कर रखी थी। तो हमारी टीम उसके अंदर लॉन्च हुई
1: जी,
0: हम अपने पूरे फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ लॉन्च हुए और हमारे हमारे जो कमांडेंट जो थे श्री दीपक सिंह एवं श्री सुशील कुमार जो लखीसराय बिहार के SP थे एवं श्री मनोरंजन पांडे हमारे कमांडेंट सर थे, उनके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम लॉन्च हुई जिसमें नरपत सिंह डिप्टी कमांडेंट, गुलशन झा सर, जसवीर तोमर सर और मैं, और मेरे साथ अलग अलग रैंक्स के लड़के थे, हमने दो टीमें बनाई। और जंगल की अपनी चुनौतियां हैं,
1: बिल्कुल
0: जंगल में आपको ये नहीं पता होता है कि गोली कब किधर से आएगी, क्योंकि कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। तो हमें एक जनरल इलाका पता था कि यहाँ पे नक्सली आने वाले हैं
1: जी,
0: तो हम उस इलाके की तरफ बढ़ रहे थे अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ। और 2 तारीख को लगभग 9 बजे सुबह की बात है ये
1: जी,
0: सीधे गोलियों की बौछार हम पे आई।
1: ओके, तो यानी कि आपकी जब आंख खुलती है तो सीधा गोलियों से आपका स्वागत करते हैं वो लोग।
0: जी बिल्कुल, हम जब आगे बढ़ रहे थे उस एरिया की तरफ जा रहे थे तो एकदम से हमारी गोलियों की बौछार हमारे ऊपर आई, क्यों, और जंगल में एक सिद्धांत चलता है
1: जी,
0: यू मिस एंड आई हिट। और पहली गोली जो थी नक्सलियों की वो उन्होंने मिस कर दिया था,
1: ओके,
0: हमें से किसी को भी वो उनकी पहली गोली नहीं लगी। तब हमें पता था कि अब हमें क्या करना है, उसने मिस कर दिया, वी आर गोइंग टू हिट देम।
1: एग्जैक्टली, मतलब हम नहीं मिस करेंगे किसी भी कीमत पर।
0: बिल्कुल, एक हमारी ट्रेनिंग ही इसलिए होती है कि हमको उसको हिट करना है। तो हमने वहीं पर रणनीति बनाई कि कौन किधर से कैसे अटैक करेगा, और फिर जवाबी जो हमारी कार्रवाई थी वो हमने फुल स्ट्रेंथ में जवाबी कार्रवाई की नक्सलियों के ऊपर। क्रॉस फायरिंग चली, बहुत देर तक फायरिंग चलती रही, लगभग आधे घंटे तक ये फायरिंग चली, उसके उपरांत जाकर के ये फायरिंग समाप्त हुई। तो ये जो यज्ञ, ये जो नक्सल एनकाउंटर होता है ना, ये हम फौजियों के लिए एक यज्ञ जैसा है, एक धार्मिक अनुष्ठान जैसा है, जिसमें कि हम अपना तन मन धन सब झोंक देते हैं। तो फिर जब ये फायरिंग ख़त्म हुई उसके बाद जाकर के हमने देखा तो हमने पाया कि 2 बॉडीज़ वहाँ पे हमें मिली, और संयोग से वो दोनों बॉडीज थी जितेंद्र कोड़ा और विनोद कोड़ा की,
1: मतलब जो उनके लीडर्स थे।
0: जी बिल्कुल, जो उनके लीडर्स थे जिनका आतंक जो है वो पूरे पूरे लखीसराय क्षेत्र में कहें, पूरे बिहार क्षेत्र में फैला हुआ था, और जिनके आतंक के कारण जनता हमसे कुछ बात नहीं करती थी, हमारे नज़दीक नहीं आती थी, उन दोनों की बॉडीज़ हमें वहाँ मिली। और उसके अतिरिक्त एक उनका और लीडर था अर्जुन कोड़ा
1: जी,
0: जिसको कि उसके राइट थाई में जा करके हमारी गोली फंस गई थी, और फिर आगे आने वाले 1 महीने बाद
1: जी
0: उसने सरेंडर किया एक दूसरी फोर्स के सामने, और उसने ये बताया
1: जी
0: कि उस दिन SSB के साथ हुई मुठभेड़ में वो गोली जो है मेरे थाई में आके फंस गई है, और अगर मैंने सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इलाज नहीं करवाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा।
1: तो उसके बाद इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा।
0: जी बिल्कुल, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी, मैं इसे अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम पल, अविस्मरणीय क्षण मानूंगा, जहां पे कि मुझे गर्व है कि मैं अपनी पूरे टीम के साथ ऐसे राक्षस से लड़ा
1: जी
0: और उसे पराजित किया, और उसका जो फल मिला वो सबसे सुखद फल था कि जो हमारा ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा बंधुत्व
1: जी।

0: हमने सेवाएं दी वहां की जनता को, उनके मन में नक्सलियों को मारने के उपरांत
1: जी
0: उनके मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ
1: बिल्कुल,
0: और अंततः वो बंधुत्व में तब बदला जब मैं उसी गांव वाले के साथ जो हमसे बात नहीं करता था उसी के साथ मैं बैठ करके चाय पीता था
1: और क्या बात है,
0: खाना खाता था,
1: क्या बात है
0: तो
1: सर,
0: ये सशस्त्र सीमा बल की जीत थी।
1: बेशक बेशक, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो आपका इतना डायरिंग ऑपरेशन था उसके बाद इसमें जो आपने कामयाबी हासिल करी तो यही सबसे बड़ी जीत थी कि जो विश्वास जो आपने बनाया उन लोगों में जो आपसे पहले बात करने में डरते थे। यहां जिस तरीके से शिवम कुमार आप अपनी जिस तरीके से ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे, भाई इमेजिन कर रहा था स्टूडियो में बैठ करके कि वो क्या सिचुएशन वो मंजर रहा होगा। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ, एक शायद लिसनर भी जानना चाहता है, और इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको अभी ले नहीं पा रहा, बाद में लूँगा। तो क्या ये जो हम अक्सर मैं बात करता हूँ कि हम इस तरीके की कुछ सिचुएशंस देखते हैं, आप आमने सामने से दो ग्रुप में जो फायरिंग चल रही है, बैटल चल रही है, वॉर सिचुएशन है, तो हम फिल्मों में जो देखते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट सा होता है, लेकिन आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं और आप अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी वहाँ पर लगा रहे हैं उन क्रिमिनल से, उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए। सर वो मोमेंट, वो जज्बा, वो जो एक फीलिंग होती है वो क्या होती है, वो खौफ, वो डर, वो सिचुएशन, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपके अपने शब्दों में।
0: सबसे पहले तो मैं जो सुन रहे हैं जितनी भी श्रोतागण हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये फिल्मों में जो ग्लैमराइज किया जाता है, फौज में आने के सबसे पहले दिन तो आपका ग्लैमर जाता है, वो ग्लैमर छूटता है सबसे पहले, क्योंकि आप ग्लैमर के बल पे आप ये बहुत लंबी सेवा नहीं दे सकते हैं
1: जी।
0: इसमें आपके अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना
1: जी,
0: जो राष्ट्र के प्रति जो आपकी सेवा भाव है जो अंतर्निहित किया जाता है, वही आपको लंबे समय तक बतौर फौजी आपको खींचेगा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि जब गोलियां चलती हैं
1: जी,
0: तो हमारी तैयारी इसी क्षण के लिए होती है। एक फौजी के जीवन में ये सबसे बड़ा क्षण होता है कि जब उसको सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसने समाज के में कई हत्याएं की हैं
1: जी,
0: कई बेगुनाहों की जान ली है, जब वो उसका खात्मा करता है तो हम इसे किलिंग नहीं, इसे हम वध मानते हैं, और एक राक्षस का वध करते हुए जो अनुभूति होती है, जो आनंद आता है, वो
1: उसके कहने क्या है,
0: उसको लफ्जों में बयां नहीं किया जा
1: सकता। क्या बात है, और इसीलिए देश की मिट्टी को सलाम करने को जी चाहता है उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ शिवम कुमार ने इस खतरनाक ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। सर मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता, मैं आपको एक एक करके कुछ मैसेजेस पढ़ करके सुनाऊंगा। शुरुआत जो सबसे पहले मैसेज आया हमारे पास यहां पर, बोथ आरजे एंड असिस्टेंट कमांडेंट शिवम जी एंड ऑल एआईआर न्यू दिल्ली फ्रॉम, ये मुबारकबाद दे रहे हैं, वणक्कम नमस्कारम, और ये हैं श्रीरंगम राजेश, श्रीरंगम त्रिची त्रिचुपल्ली तमिलनाडु से
0: जी। धन्यवाद और जय हिंद राजेश जी आपको।
1: और इसके बाद है एक मैसेज, जय हिंद साहब, बहुत बहुत मुबारक सर आपको, एसएसबी के जरिए पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं आप, आपके साथ
0: कजरा लिखा है,
1: हाँ कजरा में काम कर रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला साहब, जय हिंद। सर ये आपके कोई एसोसिएट, कोई आपके साथी या जूनियर लगते हैं?
0: बिल्कुल ये मेरे साथ के हैं, मेरे अच्छा। जूनियर और सीनियर तो है, ये पूरी टीम की बात है क्योंकि
1: जी बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल
0: मेरे टीम के साथी हैं,
1: साथी हैं,
0: कार्य किया है हमारे साथ।
1: और इसके बाद ये जय हिंद टू रेस्पेक्टेड गेस्ट सर एंड आरजे सर हियर, आई वुड लाइक टू पे माय ग्रेटिट्यूड टू शिवम सर एंड ऑल आवर इंडियन आर्मी फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, इट्स बिकॉज देयर सेल्फलेस सर्विस विद डेडिकेशन डिवोशन दे डिस्चार्ज देयर ड्यूटी फेयरलेसली, दे आर रियल हीरोज, I bow my hat to them, so I would say Jai Hind, Bharat Mata ki Jai, Vande Mataram. Myself, Shankar Lodh, and my wife, Anjali Lodh, offer obedience to all my, to them. My request to Arjun sir, please forward my message, Shivam sir. Thank you. Sir, aapka message humne pahuncha diya hai, Shivam sir sun rahe hain.
0: Ji, dhanyawad, Mrs. and Mr. Lodh ji. Main आशा करता हूं कि आप ये सभी संदेश जो फौजियों के द्वारा दिया जा रहा है उसको सुन रहे हैं
1: जी,
0: और इस चीज के लिए आपका धन्यवाद
1: जी। इसके अलावा मैसेज है, ये शुभ संध्या कह रहे हैं, जय हिंद, राजेश भल्ला एडवोकेट हैं कंकड़खेड़ा मेरठ से
0: जी। बिल्कुल धन्यवाद आपको राजेश जी, मुझे खुशी है कि
1: जी
0: एडवोकेट से लेकर के टीचर सभी वर्ग के लोग हमारा इस संदेश को सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल सर, अपने कर्म और मजबूत इरादों के लिए पहचाने गए नक्सल उन्मूलन हेतु कृत संकल्प राष्ट्र प्रेमी को सल्यूट है। ललन मिश्र रांची झारखंड से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको
0: जी। बिल्कुल, रांची मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि रही है, तो यहां से मैसेज आया।
1: बिल्कुल, आपके अदम्य साहस और त्याग के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद सो पाते हैं, आप हमारे असली नायक हैं, जय हिंद जय भारत, ये है नेहा मिश्रा सर।
0: मुझे खुशी है कि समाज के सभी लोग फौज के कार्यों का, फौज की जो भी ड्यूटीज होती हैं उसका इतना सम्मान कर रहे हैं।
1: और ये है सर, जय हिंद सर, प्लीज एक कविता भारत माँ के नाम कहिए। रोहित मेहर हैं ये, विजयपुर बारगढ़ उड़ीसा से।
0: जी रोहित जी धन्यवाद, मैं कविता सुनाऊंगा आपको अंत में।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर सुनना चाहेंगे सर। हम लोगों का शिवम सर के साथ काजरा बिहार में कार्य करने का अनुभव बहुत उम्दा रहा। शिवम सर का पुलिस को जनता से करीब लाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है काजरा लखीसराय बिहार में। सर ये भी आपके कोई साथी लगते हैं, सौम्य झा इनका नाम आ रहा है।
0: जी बिल्कुल, ये मेरे साथ के ही हैं और हमारा उद्देश्य यही होता था कि जनता और पुलिस के बीच, फोर्स के बीच की जो खाई है उसको, उस खाई को पाटना ही हमारा उद्देश्य था।
1: बिल्कुल, करीब लाना है। जय हिंद सर, मैं आपको सुन रही हूँ, आपकी बातें और आपकी, आपके जज्बे को सलाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ हमारे देश के नौजवान प्रभावित होकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, मैं शबनम हूँ बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से। गैलेंट्री अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई दे रही है सर ये आपको।
0: धन्यवाद शबनम जी, जय हिंद।
1: और ये हैं शिवम जी, यू आर अ पर्सन ऑफ ग्रेट विल पावर एंड करेज, एट द सेम टाइम यू आर वेरी काइंड ह्यूमन, अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर आवर यंगर जनरेशन। मैसेज आया सर ये विश्वजीत बिहार से, प्राइड ऑफ नेशन, प्राइड ऑफ बिहार, शिवम कुमार।
0: धन्यवाद विश्वजीत जी हमारे कार्यों की सराहना करने के लिए।
1: जी और ये है सर, हेलो सर, ग्वालदाम में महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे से आपने काम किया है। ये है मृदुल झा
0: जी। धन्यवाद मृदुल जी आपको, ये मुझे उम्मीद है कि ये शायद हमारे यहाँ माउंटेनियरिंग कोर्स जो महिलाओं का
1: जी जी जी उसकी, ये उसकी जरूर जरूर पार्टिसिपेंट रही होंगी। मैं नरपत सिंह, उप कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल अंतागढ़ कांकेर छत्तीसगढ़, अपने 60 जवानों के साथ आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं सर। ये FM रेनबो की पूरी टीम को हार्दिक आभार, कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायक और आनंददायक है। हमारे साथ श्री दकेश्वर प्रसाद चंद्र, सहायक कमांडेंट भी उपस्थित हैं, उनकी ओर से भी शिवम जी एवं पूरी टीम को विशेष रूप से जय हिंद।
0: नरपत सर 4 बार के गैलेंट्री विनर हैं, मैं okay. तो अपना गुरु मानता हूं और हमारे टीम के ये ग्राउंड कमांडर्स में से एक थे, तो okay. जो मैंने सीखा है इन्हीं सीनियर्स से सीखा है।
1: क्या तो, बात है सर, तो नरपत सिंह जी भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने इस शो के माध्यम से, आपने हमें मैसेज भी किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और यह है शिवम सर, एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी, फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिम, ही ट्रूली डिजर्व्स ऑल द एक्लेड्स बिकॉज ऑफ हिज टीम एंड देयर डेडिकेटेड एफर्ट्स, अ लॉट ऑफ पीपल टुडे लिव टेरर फ्री, प्राउड ऑफ हिम। आयुष दाडिच हैं ये नई दिल्ली से।
0: जी बिल्कुल, ये हमारे जूनियर हैं और मैं अच्छा। उम्मीद करता हूँ कि जिस पहल की शुरुआत हम लोगों ने की है
1: जी,
0: उस पहल को आगे आने वाले जितने भी अधिकारी हैं उसको मकाम तक ले जाएंगे अपनी टीम के साथ।
1: बिल्कुल, और आयुष भी उसका हिस्सा रहेंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: और यह है नक्सली ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई शिवम जी, प्राउड ऑफ शालिनी पाठक लिख रही है आपके लिए।
0: धन्यवाद शालिनी जी आपका।
1: और यह है मैं सोता हूँ रातों को चैन से, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे लिए कोई जाग रहा है, शिव है ये मेरठ से।
0: ये हमारा फर्ज है, हमने राष्ट्र सेवा की कसम खाई है और आप ऐसे ही आप चैन से सोएं, यही हमारी कल्पना है।
1: और यह सर शिवम सर के साथ कचरा में काम करने का अवसर मिला, कई ऑपरेशन में उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया। शिवम सर का नक्सलियों के लिए डायलॉग था कि ये कि या तो तुम अपनी हरकत छोड़कर समर्पण कर दो या ये देश, वरना अंजाम तो जानते ही हो। टीम को सदा फ्रंट से लीड किया है, ये कह रहे हैं पंकज लखीसराय से। सर आपके साथ ही हैं भी।
0: जी पंकज हमारे साथ के थे और ये सभी जाबाज ये टीम मेंबर्स हैं मेरे, जिन्होंने गोलियों के सामने जिन्होंने सभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया है।
1: जी जी जी, और आपका पूरा पूरा साथ दिया और अपने आप को बिल्कुल कदम से कदम मिला करके।
0: जी बिल्कुल, ये इनके बिना ये सारी उपलब्धि या ये सारा ऑपरेशन संभव ही नहीं था।
1: बिल्कुल। और एक और मैसेज है सर, जय हिंद सर, जब भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं संदेश टू सोल्जर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर आपको बहुत बहुत बहुत जय हिंद, हम भी सर अपने बच्चों के को आर्मी में भेजना चाहते हैं। हम संजय बोल रहे हैं उत्तम नगर से नई दिल्ली, और आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है और हमारे आर्मी के सभी जवानों को जय हिंद कह रहे हैं ये।
0: ये धन्यवाद संजय जी, और एक बार फिर से जैसा इन्होंने कहा मैं FM रेडियो को, FM रेनबो को धन्यवाद देना चाहता हूँ
1: जी,
0: कि जो देश विदेश के सभी लोगों को फौज के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उससे अवगत करा रहा है और फौज के राष्ट्रप्रेम से, राष्ट्रप्रेम की झागना को, भावना को प्रज्वलित कर रहा है लोगों के अंदर।
1: बिल्कुल सर, आकाशवाणी रेनबो का ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड शो है ये, और ये है संदेश टू सोल्जर्स। सर आपके साथ बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, जो समय हमारे पास बचा है वो बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है आपके साथ बातचीत करते हुए इस जोश और जज्बे के साथ। हमारे साथ हैं श्री शिवम कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स शाहिद के साथ।

102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शायद के साथ और हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट हैं सशस्त्र सीमा बल। सर, हम आपसे बहुत ही शानदार और जोश और जज्बे से भरी हुई बातें यहां पर कर रहे हैं और लगातार मैसेजेस का भी सिलसिला जारी है, मैं आपको जैसे अभी बता रहा था। तो हम यहां पर अब आगे बढ़ेंगे सर और जानना चाहेंगे कि आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, आपका ऑपरेशनल एक्सेलेंस है जो आपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में दिखाया, उसके अलावा आपने कई खतरनाक वांटेड एक्सट्रीमिस्ट और क्रिमिनल्स को भी ढेर करा, उनको पकड़ने में

0: बहुत बार मुझे मोटिवेट किया, और मेरे जितने भी भाई बहन हैं और जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरी दो बहनें बड़ी हैं, एक मेरे बड़े भाई साहब हैं,
1: अच्छा,
0: उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए लगातार। और अंत में जिस व्यक्ति का एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो है मेरी पत्नी। उन्होंने लगातार, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको ही इस कठिनाई को झेलना पड़ता था जब मैं बाहर रहता था, 3-4 दिनों तक मेरी बात नहीं होती थी उनसे,
1: तो ज़ाहिर ये सपोर्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट।
0: हाँ, ये ऐसा सपोर्ट था जिसकी कि मैं कल्पना नहीं की थी मैंने, तो मैं उसके लिए सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है।
1: सर बिल्कुल, समय हमारे पास ख़त्म हो चुका है और बातें बहुत सारी बची हुई हैं और मैसेजेस इतने आ चुके हैं मेरे पास कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूँ तो मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट उसी में निकल जाएंगे। लेकिन बस चलते चलते आपसे एक दो मैसेज पढ़ने के बाद चाहूँगा कि आप युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कोई बात कहना चाहें तो वो कहें, और साथ ही अपनी वो एक स्पेशल कविता की चंद पंक्तियां भी ज़रूर सुनाइएगा। और मैं आपको तब तक एक दो पैसेज बता दूं सर, ये हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू शिवम सर, रागिनी है गुवाहाटी से। इसके अलावा जय हिंद सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से। इसके अलावा ये हैं हमारे देश के फौजी भाइयों की हमारे को हमारे ओर से सल्यूट, और काफ़ी लंबा मैसेज है, ये हैं पंडित चनप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरवाद से, और आप इसी तरह सभी को प्रेरणा देते रहें, और जय हिंद कह रहे हैं, यह हैं सरिता मिश्रा जी। और इसके अलावा प्रसाद दुबासी HC आर्मर सर, यू आर लीडरशिप इज इंस्पायरिंग एंड यू आर एन एक्सेलेंट ऑफिसर, और योर वी अप्रिशिएट योर डेडिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। शायद ये आपके साथी होंगे।
0: बिल्कुल, मेरे साथी हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि इसमें से मोस्टली जितने हैं उन्होंने मेरे साथ कार्य किया है, तो ये एक अच्छी बात।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप हमारे शो में आए और अपना समय निकाला। श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल आज के संदेश सोलर के हमारे खास मेहमान। धन्यवाद बहुत बहुत सभी लिसनर्स का और हमारे आज के खास मेहमान का।
0: धन्यवाद सर।
1: जय हिंद।
0: जय हिंद, जय भारत।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
1: संदेश टू सोल्जर्स ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये मकनपुर, नवाडी, पोड़िपा, पेंडारी, सिंघरा, भरदा, गौरा, मदन नगर, गणेशपुर, चिटका, बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधवा, गोपालपुर, मुरका, अतौरी, ठरकी, चिनिया, कनकपुर, टकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मसगाड, सत्तीमुड़ा, लक्ष्मणगढ़, ससकालो, तेंदुटिकरा।

0: मानपुर बरिमा कुदारीडीह केसरा सरभंजा ललिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी पत्थलगांव कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये कुंजारा श्रीटोली मयूरचुंदी उपका पानी भड़ामाचा पीठा आमा राजा आमा महेशपुर साजा पानी तीता पाकेर सोनाजोरी खंता डांड परसा डांड पेटा बिमड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल धर्मजयगढ़ बोरो लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 105 है। ये महाराजगंज बंगरसूता कुड़ेकेला बोजिया सिंघीछा बनहर लोटान कंचीरा पोटिया आमगांव झगरपुर सागर पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा और करतला में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये कटकोना जिलगा गीतकुंवारी लबेद बोतली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के केंदई जडगा एतमानगर और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई कोदवारी भोड़ूपानी कठमोरगा बांधापारा लालडी झुनकीडी जुनवानी कुकरीकादर बनिया चोटिया लालपुर सेमरहा बोकरा मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये झिंगोल तराईमाल नागदरहा पंडरीपानी भैंसगढ़ी बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी तालदादर पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये ओड़ अमलोर ताराझर डडईपानी बुडार जिडार सिहार छिंदौला लूठापारा फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: हमर हाथी हमर गोट ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। मीडिया वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। और अब समय है कार्यक्रम विवरण का।

आइए हम आपको आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। स्पोर्ट स्कैन, ये कार्यक्रम होगा रात 8:30 पर। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। इसमें अपन गोठ में चर्चा होगी गांव के मेधावी मनला सीख लेना चाहिए। पहुना जोहार, इस क्रम में सुनेगा चित्रकला से जुड़े कलाकार शिवा साहू से दीपक तिवारी की भेंटवार्ता। साथियों का क्रम हमर गांव। लोक संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे मंतराम पटपरिया और साथी। इसे कार्यक्रम में रात 8:15 पर सुनेगा बांस गीत, कलाकार होंगे गुलाल राम निषाद और साथी। किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 7:21 पर। इसमें

राग पूरिया धनाश्री में ख्याल। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुन सकते हैं रात 10:30 पर। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। और अब कुछ कार्यक्रम कल के। स्पोर्ट स्कैन, ये कार्यक्रम होगा कल रात 8:30 पर। करंट अफेयर्स कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट आप सुनेंगे कल शाम 5:05 पर। और प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे कल शाम 6:30 पर। कल सुबह 7:05 पर होगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, प्रस्तुत करेंगी श्रेया श्रीवास्तव। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में सुनेगा पखावज और बांस वाद्य से जुड़े कलाकार श्री शुभाशीष सबसाची से दीपक हटवार की बातचीत। प्रसारण समय कल सुबह 8:30। नवा बिहान, इस कार्यक्रम में कल सुबह 9 बजे सुनेगा एक पेड़ माँ के नाम, इस विषय पर राम नारायण यादव ले बीर भान साहू के गोठ बात। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:40 पर और रात 8:15 पर कलाकार होंगे सुभाष चंद्र भट्ट। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 10 बजे सुनेगा संजय बंदोपाध्याय का सितार वादन, राग होगा नट भैरव और रात 10 बजे राग होगा चांदनी कल्याण। इसी कार्यक्रम में दिन में 1:30 पर सुनेगा सत्यरंजन गंगेले का तबला वादन। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवा

0: हालात नहीं हौसला मनखे ला मजबूत बनाथे, पहचान सुविधा नहीं संघर्ष ले बनथे।
1: जेमन कर्म ला अपन धर्म मानथे सफलता उकर द्वार आथे।
0: संझौते के बेरा मा रेडियो तीर बैठे युवानी सुनैया हमर जम्मो श्रोता संगी मल्ला थनेश्वरी बघेल
1: और ललिता साहू के मया भरे
0: राम राम जय जोहार।
1: का हाल है थनेश्वरी, सब बने बने?
0: हाँ संगवारी, सब बने बने है। बस ए दे गाँव जाए की तैयारी में लगे हाँ जी।
1: अच्छा, तो कैसे अचानक मन बना डारे भाई?
0: मन तो सबर दिन गाँव में मार गए है ललिता, शहर में तो मन मढ़ा के रहे लपरत है। सोचे थोकन गाँव डहर घलो सोर लेके आ जाता हूँ ऐसे कह के।
1: ये तो बने बात है संगवारी, और गाँव ले जुड़े रहे तो उही बहाना आए जाए ला मिल जाते, भले ते कहीं और रहे
0: कहीं चोरा। ये तो सही के, शहर में रह के घलो गाँव की सुरता हा ताजा हो जाते ललिता। तो सोचा गाँव होके आ ही जाता हूँ।
1: वो कैसे भला?
0: वो ऐसे कि आज बिहनिया ले लड़का मल्ला जावत देखे हाँ स्कूल, तो बने जूता मोजा लाल फीता में दूबेनी और बस्ता ला धरे साइकिल में जावत लड़का मन है ना, मोर ननपन की सुरता ला देवा दिन।
1: वो एक ऐसन सोना पेरा रहीस हमर पर जेन ला हमन जिए हन, और संगी हो वो सुघर बीते बेरा हा तो लहोट के नहीं आए ना।
0: नहीं आए, गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुले के अगोरा रहा है कैसे, और जब हम जब स्कूल खुला है अगला कक्षा माँ पहुँचे की खुशी ना सबो के चेहरा माँ फबत रहा है भाई।
1: सही कहा था संगवारी, और जाना था बिहनिया स्कूल पर तैयार होके एक दूसर ला अगोरत रहा।
0: बिल्कुल अगोरन,
1: जब सकला जान तो एक संग्रह जावन, और ये बरसाती दिन माँ स्कूल जाए के मजा ही अलग रहे।

0: लग रहा है। सही कहे संगी, जानथस ने हम कक्षा मा जेकर सबले ज्यादा अंक आए ओला कक्षा नायक, और साला में सबले ज्यादा अंक वाले छात्र या छात्रा ला साला नायक या नायिका बनाया जाए।
1: वो खुशी और जो अनुभव होए अलगे स्तर के रहे।
0: माने ऐसे मने मन में रहा है नहीं, मने मन में महसूस हो जानो मानो मोर ले बड़का हूँ कोने नहीं है, मी ही भर हवा के जन ऐसे लगा।
1: फिर आज उही बीच के संगी साथी मन बड़का बड़का आने आने पदमा अधिकारी बन गया है।
0: बिल्कुल,
1: वो बखत के अतलंग करैया लड़का मन बड़ होनहार निकली
0: सिरतुन में। औ हुनर सब में होते ललिता, बस ओला चीन के आगू बढ़ना हा मन खेला मजबूत और सफल बनाते।
1: सही कहत संगवारी, गांव के वो लड़का जिहा सुविधा के कमी के बावजूद अपन आत्मबल ल कभू टूटन नहीं दिन। जी हाँ, बिजली पानी जैसे प्राथमिक सुविधा घलो मुश्किल ले मिलत रहीस, उहा ले जब कोनो प्रतिभावान निकलते ना तो छाती गर्व ले फूल जाते।
0: सिरतोन, ये तो बड़ गर्व की बात है संगवारी हो, गांव के लड़का मन में कोनो गजब के प्रतिभा होते, बस जरूरत होते ता एक ठन सही मार्गदर्शन के और सहयोग के।
1: सही कहा था, गांव में अतका होशियार मनखे मन होते ना कि शहर के मनखे के बराबरी करते। कही सकथन कि आज देखा जाए ता गांव के हुनरमंद व्यक्ति मन शहर के मनखे ले घलो आगू निकलते।
0: संगी हो, आज देखथन ता हर क्षेत्र मा प्रतियोगिता के भावना हा बाढ़ गे हावे, हर कोनो मनखे एक मंजिल एक मुकाम ला पाना चाहते।
1: सही कहा
0: था, और अक्सर हर जिनिस ला जानना और सीखना चाहते।
1: बिल्कुल, ते सुने हो बेथनेश्वरी कि कुछ कमी ही मनखे ला आगू बाढ़े के बल देते।
0: बिल्कुल,
1: नहीं ते ज्यादा सुख सुविधा हा घलो कभू कभू भटका देते, मने की भूलन कांदा खुंदेसन हो जाते।
0: सोला आना पोट गुट आए संगवारी हो, जिंदगी मा हर मनखे जीव जिनीस बेरा और स्थिति बहुत कुछ सीखो देते, उही बीच के अनुभवी और हुनरमंद मनखे के प्रेरणा ना बहुत काम आते।
1: सिरतोन कहत हस, गांव में पले पढ़े मनखे करा हुनर बिकट होते, एक तो रीति रिवाज परंपरा ले जुड़े रहते, अनुभव रहते, औ ते औ यदि पढ़ाई लिखे में बने है ना तो हित के कारज ला चुनते। कोनो कला विद्या में रुचि है तो ओला पंख दे के उड़ान
0: भरते। माने कहिबो कि पाछू के जो दूसरा नीति ला हमेशा तैयार रखते, ये नहीं ता ये सही कही के।
1: सही कहा,
0: बहुत से क्षेत्र के जानकारी संग सोच अपन मजबूत रखते और धैर्य के संग आगू बढ़ते।
1: संगी हो, इकर मन ले हमन ला सीखना चाहिए, आज सही मार्गदर्शन देवैया बहुत कम मिलते,
0: बहुत कम है।
1: जरूरी नहीं है कि हर जिनिस ला बताया जाए,
0: हाँ
1: कुछ ला देख के भी सीखेला पड़ते।
0: बिल्कुल सीखेला पड़ते संगवारी। संगी हो, मेधावी मनखे मन अपन सिर्फ अपन परिवार की ही नहीं भलो गांव और समाज के गौरव आए, उकर मेहनत लगन और संघर्ष हमर बर प्रेरणा के ज्योति आए।
1: जेन गांव है ना अपन होनहार लड़का मन के सम्मान करते, वो गांव ह तरक्की के रद्दा मा आगू बढ़ते।
0: बिल्कुल आगू बढ़ते संगवारी हो, और सफलता भाग्य भले नहीं मेहनत धीरज और आत्मविश्वास ले मिलते।
1: अच्छा।
0: और गांव के मेधावी मन के ये बात के जिया जागत उदाहरण हावे, और उनकर संघर्ष हमला ये सीखो थे कि सपना देखे के संगे संग उला पूरा करे बर दिन रात के मेहनत बहुत जरूरी होते।
1: बहुत जरूरी संगवारी हो, हर मेधावी बेटा बेटी के सम्मान करो संगी हो, उकर आज के मेहनत था काली के पहचान
0: आए। यही सेती कहिबो संगी कि जेन गांव में शिक्षा संस्कार और मेहनत के कदर होते, ओ गांव के भविष्य हमेशा उज्जवल होते।

0: संगवारी हो अभी सुनत रहिन ये सुघर माटी के गीत ला जेन ला अपन सुर में सजाए रहिन है मदन मेहर और साथी मन हा
1: और इही रिकिम ले सुने पर चाहे रहिन ये संगवारी मन हा मन की लोर मिले नारायण खांडे रजनी तुसार समीर रेखा दिवाकर हा शीतला नगर दुर्गले शिव चंद्राकुर भगवान चंद्राकर हा गंडई पंडरियाले शिवा यादव राज चिंटू तरुण चोवाराम यादव कन्हैया निर्मला यादव सहा मालगी ले सुखनंदन चंद्रवंशी शिवरानी आकाश प्रतिभा पूर्वी पूनम चंद्रवंशी अंबाकड़ चौकी ले रिजवान खान आशा सबीहा अनस रेहान डोंगरगढ़ गांव ले राष्ट्रपाल गजभिये राधिका बेबी अनिष्का तन्मय गजभिये पिपरिया ले

0: कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्तल।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
2: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
1: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
2: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
1: 47 सालों से निरंतर सेवा में
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: संगी हो, घर में जब कोनो सगा थे त घर में एक अलगे उल्लास रही थे, चहकत रही थे पूरा परिवार।
4: हाओ संगी हो, एक बेरा रहीस जब सोशल मीडिया के चलन ज्यादा नहीं रहीस, तब हाल चाल ला जाने बर सगा जावत रही।
3: बिल्कुल, फिर अब तो हर नानचून जिनिस बर आज सोशल मीडिया के जरिए सेकंड में हर जानकारी पहुंच जाते। ललिता, और कोनो नेवता पठोना है तो ओखरो बर सोशल मीडिया हमेशा तैयार रही थे भाई।
4: हाँ, फिर सगा आ जाए के परंपरा ना हमार छत्तीसगढ़ में विशेष महत्व हावे।
3: बिल्कुल हावे,
4: और कहीं ना कहीं मया की दो मिठ बोली बैठ के कोठिया लेबे ना, तब उतके माँ मन मार जाते
3: जुरा जाते जीव रहा। तो चलो आज के हमार युवानी कार्यक्रम में खास क्रम सुनथन, क्रम पहुना जोहार मा सुनथन चित्रकार शिवा साहू ले दीपक तिवारी के गोट बात।

0: रंगहा जब कैनवास में उतरते तब वो सिर्फ चित्र नहीं बनावे, बल्कि मन के भाव, समाज के कहनी और संस्कृति के ममहासी ला घलो नवा और उज्जर कर देते। एक कलाकार अपन कल्पना के कुचिले दुनिया ला नवा नजरिया घलो देते। कला वो भाषा है जेन ला लोगन महसूस तो कर सकते, फिर एला शब्द मा बांध पाना बड़ कठिन बुताए। आप मन सुनत हव अपन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, झोंको अपन संगवारी दीपक तिवारी के जय जोहार और राम राम। संगी हो, आज बेरा है हमर विशेष क्रम पहुना जोहार के। आज हमर संग ऐसे एक युवा कलाकार मौजूद है जिन मन रंगला सिर्फ सजावट के साधन नहीं माने, बल्कि अभिव्यक्ति के सबले ठोस माध्यम मानते। छत्तीसगढ़ के माटी ले निकले युवा चित्रकार शिवा साहू जी हा अपन मेहनत, साधना और जिज्ञासा के बलमा राष्ट्रीय स्तर तक अपन अलग पहचान बनाए है, जिन हा आज युवाणी के क्रम पहुना जोहार मा हमर पहुना हवे। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ जेन लहमन आजकल राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय के नाव ले जानथन, उहां ले आप हा उच्च शिक्षा पाए हो चित्रकला के क्षेत्र मा और कई ठन राष्ट्रीय कला शिविर प्रदर्शनी और कलाकार मन के बीच मा अपन कला के छाप छोड़े हो। कलाकार होए के संगे संग युवा पीढ़ी ला चित्रकला के बारीकी घलो सिखोवत हो। शिवाजी, आकाशवाणी के हमर स्टूडियो में आप मन के हृदय ले स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ, मोला आप ऐसे मौका दे हो।
0: बहुत बढ़िया सर, और हमला भी बड़ा अच्छा लगा थे कि आज आप हमारे स्टूडियो में हो। बहुत नवा एक विधा के साथ आप हमारे लिए जुड़त हो। और हमन सर सबले पहली आप ले जानना चाहबो कि हर कला

0: संसार के सफर की शुरुआत कोनो न कोनो रूप में प्रेरणा के रूप में होते। आप मन की जिंदगी में चित्रकला के बीज कब और कैसे बोईस, अब बचपन के वो दिन के बारे में हमें कुछ बतावा।
1: मोर जन्म रायपुर में हो है और मोर गांव तो आरंग के पास में है जरौद। पापा हम और खाए कमाए बर यहाँ रायपुर आ रही से, तब से मतलब यहाँ रहा था। नानकुन में यहाँ जब स्कूल जात रहे हो तो उस समय मोर एक जन दोस्त रही से, मनोज नाम है ओकर, तो वह चित्र बनावे तो ओला देख के ना मोहला रुचि उठी सवे कि मोर दोस्त हवे वह बनाते तो मैं काबर नहीं बना सका। तो ऐसे थोक थोक कर करके मोर है जिज्ञासा बढ़त गिस हवे। जैसे बढ़त गिस तहन मोर जैसे मैं यहाँ 9वीं 10वीं पहुँचे हाँ, तो मोर जैन पांडे स्कूल रायपुर के वहाँ मैं जब पढ़े बढ़ गए हूँ तो वहाँ के मैडम सर मन हाँ मोर कलल देख के मोला अलग अलग क्षेत्र में भेजे के चालू करी सब। तो मोला उस समय पता नहीं रही से कि कला भी क्षेत्र में मतलब इतना भी आगे जा सकता कि के। जैसे जैसे मैं कॉम्पिटिशन मन में पार्टिसिपेट करे हाँ, भाग ले हाँ, तो ओकर बाद से मोल पता चली से कि एमा भी कुछ हवा है, एकर से भी कुछ नाम हो सकते। तो धीरे धीरे करके फिर मैं हाँ वो चीज़ ला अपन रुचि में बढ़त गई सब। तो जैसे मैं 12वीं कक्षा पहुँचे हाँ, वहाँ पास करे हाँ, तो मोर मतलब ऐसे कुछ विचार नहीं रही से कि मोला कला क्षेत्र में और आगे जाना है कि के। लेकिन मोर एक जन सीनियर हवे पंकज यादव नाम लेता हूँ मैं कर, तो वो भैया है कला के क्षेत्र में काम करत रही सब, वह इंदिरा कला से पढ़े हवे। तो ओकर से मोर बातचीत अच्छा रही से, तो भैया बताई सब है कि आप मन हाँ पेंटिंग के कोर्स करा था, तो वह की सब है कि देख ऐसे ऐसे कोर्स हवा एकरो ते काबर बीकॉम वगैरह ये सब में जाता तो काम अच्छा है, ते आगे कर सकता तुम अच्छा। तो मोर मैं बताना चाहता हूँ कि मोर छत्तीसगढ़ कॉलेज में एडमिशन वगैरह से
0: अच्छा
1: बीकॉम बर, तो वहाँ जब मैं यहाँ इंट्रेंस दे हूँ इंदिरा कला के, तो वो समय मोर फर्स्ट लिस्ट में सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आई, मोर नाम ऐसे थर्ड लिस्ट में। तब तक मोर एडमिशन हो गई, तब फिर मैं वहाँ से टीसी वगैरह सब निकाले हाँ, ओकर बाद में हाँ फिर इंदिरा कला ला ज्वाइन करे हाँ।
0: बहुत बढ़िया सर, मतलब एक नवा यात्रा में आप गए हो, है ना, नवा उद्यम करे हो सर। रंग और रेखा मन संग दोस्ती होए के बाद एला अपन जीवन के लक्ष्य बनाना है, ऐसे आप ला कैसे लगीस और परिवार के में क्या प्रतिक्रिया रहीस?
1: परिवार में प्रतिक्रिया तो माँ के तरफ से सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग रही से। माँ हाँ मतलब समझी सब है कि लड़का हाँ कहाँ चाहते ओकर मन कामा लगते
0: हाँ।
1: हर लड़का के पढ़ाई में रुचि होना ये मैं नहीं मानव कि संभव है। हर लड़का के अलग अलग एक रुचि है, कोई पढ़ाई में अच्छा होते, कोई गाना बजाना में होते, कोई पेंटिंग में होते, कोई भी रुचि हो सकते। तो वो भी एक करियर बनाए के हवा रास्ता, तो हमला उस चीज़ में थोड़ा से सोचना चाहिए कि जो लड़का जो चाह थे ओला वो चीज़ ला मिल सके, वो चीज़ ला दिवा सके। तो वहाँ से जब मैं मम्मी से बताया हूँ कि माँ मोला ऐसे ऐसे पेंटिंग वगैरह करे के मन करते, मैं वहीं में आगे बढ़ना चाहता हूँ कि, तो माँ हाँ उस समय मोला सपोर्ट करी से और वह मोला जाबर प्रेरित करी सब कि हाँ बेटा ते जा।
0: चलो बहुत बढ़िया सर, हमार जैसे आप बताओ कि माता जी के बड़ा सहयोग है, तो हमार जैसे कि जो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है ओला हमन हाँ ये मानथन कि छत्तीसगढ़ के कला के वो मंदिर है सर, और जैसे एक माँ हाँ लड़का मतलब दुलार करते वैसे खैरागढ़ विश्वविद्यालय है अपन जम्मू कलाकार मतलब दुलार करते और मतलब आगे बढ़ाए बर वहाँ तमाम कोर्स आजकल उपलब्ध है। वहाँ के पढ़ाई और गुरुजी मन के जैन सीख है वहाँ के बारे में आप थोड़ा मतलब बताओ।
1: सबसे बड़ी चीज़ तो इंदिरा कला की ये हवे कि वहाँ माहौल जे माहौल वह देते वो माहौल जो कलाकार बने वर चाहिए वो सबसे बेहतरीन जगह है। वो कलाकार माहौल में जब रही थे ना तभी वो कर अंदर के जो क्रिएटिविटी है, जो अंदर में जो भी सोच विचार है सब निकल पाते हैं।
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो वहाँ पे एक आदमी तो नहीं है कलाकार, वहाँ लाखों आदमी है कलाकार, तो वही सब देख देख के अपन कला ला विस्तृत करते

0: अउ ओमा काय अच्छा कर सकते, काय ओमा अपन नया तरीका ला सकते, ये सब चीज़ के चिंतन मनन करते। तो वही में ओमन दिन रात सब बीते रहते। तो मैं हाँ फाइन आर्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। उमा हमार के उनके BFA कोर्स होते और मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स होते MFA कोर्स। तो हमार विजुअल आर्ट में तीन तरह के कोर्स होते, पेंटिंग, मूर्तिकला और छापा कला। तो ये तीन विधा अलग अलग है। तो एमा हम अलग अलग स्पेशलाइजेशन कर सकथन और मास्टर्स में भी हम यही चीज़ ला हमन आगे बढ़ा सकथन, मास्टर्स पेंटिंग ग्राफिक्स में।
1: और कतिक कतिक साल के कोर्स है सर मन है?
0: बैचलर डिग्री है 4 साल के कोर्स है, जेमा हमन ला 1 साल जो फर्स्ट ईयर जो रहते वो फाउंडेशन रहते, जेमा तीनों कोर्स ला सीखेल पड़ते ताकि हमन मन के इंटरेस्ट समझ आए कि हमला कामा आगे जाना है, कामा हमला स्पेशलाइजेशन करना है। और वही फिर मास्टर्स हमारे 2 साल के रहते।
1: चलिए मैं बहुत बढ़िया बताया सर आप। और जिन फाइन आर्ट्स है वो तो बहुत जल्दी जल्दी आज लोगन ला अच्छा लागत है, पहुँचा जात है। और जिन मन नहीं जानत रहिस है वो मन धीरे धीरे वाला जानत है। सर मैं आप ले जानना चाहता हूँ कि आप मन के चित्र मन ला देख के ऐसे लगते कि हर चित्र अपन एक अलग कहानी कही थे। चित्र बनाए के पहली आप मन के मन में कैसे कैसे सोच विचार जन्म लेते?
0: चित्र बनाए से पहली ना बहुत अकन विचार चलते, लेकिन कलाकार है ना अपन आसपास के जो चीज़ें चलत रहते समाज से हो गए या फिर उनका पर्सनल जो भी लाइफ है या फिर प्रकृति से रिलेटेड कोई भी जो चीज़ ला वो महसूस करते अच्छा से, मतलब वो चीज़ ला गहराई से समझ पाते, वो चीज़ ला अपन चित्रकारी हो गए, म्यूजिक हो गए, जो भी चीज़ें हो गए सब में हाँ लाए की कोशिश करते।
1: हाँ
0: ताकि वो जो भावनाएँ फील करा थे, महसूस करा थे, वो चीज़ ला सामने वाला जो भी दर्शक है, जो भी देखने वाला है, सुनने वाला है, वो मन भी वो चीज़ ला फील कर सके, वो चीज़ ला महसूस कर सके और वो चीज़ के वैल्यू समझ सके कि एक काबर हवा और काय स्थिति है। और मतलब कला ऐसी चीज़ है कि वो सिर्फ देखे या सुने के नो है, वो महसूस करे के और वो चीज़ ला अपन जीवन में शांति और जितना भी तो आजकल के ज़िंदगी में जितना स्ट्रेस है सब है वो सबसे दूर जाके थोड़ा से अपन से मिले के एक साधन हो सकते।
1: बहुत बढ़िया बताया सर। कला के उद्देश्य ही हरे कि दुनिया में सुंदरता ला हम देख सकन, वाला महसूस कर सकन। और कला के बारे में बहुत सुधक सुघर आप बताओ सर। आपसे ये भी जानना चाहूँ कि आप राष्ट्रीय स्तर के कला शिविर और प्रदर्शनी में भी आप भाग ले हो और वहाँ भी आप बहुत अगन कलाकार मिली सो ही, तो वहाँ के अनुभव कैसे रही से?
0: तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, और सबसे पहली जो राष्ट्रीय स्तर के कैंप रही से वो उड़ीसा में रही से। तो वहाँ भारत के जितना भी कलाकार है,
1: हाँ
0: जे आज़ादी का अमृत महोत्सव जब चलत रही से वो समय मतलब राष्ट्रीय जो हमारे एकेडमी है ललित कला एकेडमी ओकर द्वारा हो रही सब है। तो ओमा राष्ट्र के जितना भी कला है, जितना भी कला के फॉर्म है वो चिल्ला वहाँ पे उकेरना रही से। तो वहाँ पे जाके फिर समझ ऐसे कि कला कितना बड़े जगह है जेमा मतलब हमन हा अलग अलग चीज़ें सीख सकथन। हमार छत्तीसगढ़ में हवा मतलब वो चीज़ के, लेकिन हमन जब बाहर जाथन तब समझ आते कि ये हमार छत्तीसगढ़ में हमन जो देखा थन ओकर से कई गुना आगे हवे। तो बाहर जाके बात पता चली सब है कि एमा और कितना हमन आगे एमा ग्रोथ ले सकथन और कैसे हमन एमा अपन करियर में डेवलप कर सकथन।
1: बिल्कुल सर, 2015 और 2016 में आप कला उत्सव में भी भाग ले हो और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में आप दिल्ली गए रहो, वहाँ के बारे में बताओ कि का माहौल है दिल्ली में कला ले लेके?
0: दिल्ली में और मुंबई में दो जगह ऐसे हवा है कि जो भारत में सबसे ज़्यादा कला के महत्व दे जाते हैं।
1: हाँ हाँ
0: कि क्या बार कि वहाँ अलग अलग टाइप के गैलरीज हवा है।
1: हाँ हाँ
0: प्रदर्शनी करे बर आर्टिस्ट मन के अलग अलग गैलरीज हवा है, वहाँ जाके अपन वह कला ला दिखा सकते। और वहाँ सबसे बड़े जो चीज़ है नगमा आर्ट गैलरी नेशनल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स का है और ललित कला एकेडमी के है। तो वो जब मेन सेंटर मन जो है ना वहाँ हवा, तो सबसे ज़्यादा जो कला के सागर बोल सकथन
1: हाँ
0: वो है दिल्ली हवा।
1: दिल्ली
0: हमला वहाँ से ज़्यादा चीज़ें सीखे पर मिलते और जितना भी हमारा पुराना आर्टिस्ट हवा हमार मन के वो सबके काम ला भी देखे पर वहाँ मिलते, हमला समझ मिलते कि वहाँ पे कैसे टाइप से काम हुआ थे और हमला

0: आगे समाज के लिए ओमा काय कैसे काम करना है, कैसे हमला समाज ला प्रेरित करना है कि ऐसे काम करो कि हमारे समाज में और वृद्धि हो और समझ डेवलप हो, सही चीज करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, इसे आजकल तो सरकार भी बहुत प्रयास करत है सब में, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नाम से भी एक संस्था दिल्ली में है जेमा तमाम कलाकार मंजूर आते, और बहुत अच्छा लगा था कि आप सब जगह गए हो और आपके अनुभव है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि कलाकार मतलब मंच मिले के अवसर हमारे छत्तीसगढ़ में कतका है?
0: मतलब अभी तो मैं कलाकार के रूप में काम कर रहा हूँ तो हवा अवसर, लेकिन ये अवसर पर्याप्त नहीं है। तो सरकार ला ये चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। सरकार ला जितना भी हमारे कलाकार हवन ओकर मन पर थोड़ा मंच के व्यवस्था करना चाहिए।
1: हाँ।
0: जैसे कि हमन छत्तीसगढ़ में आर्ट के वैल्यू बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन जब तक हमें सरकार के सपोर्ट नहीं मिली ही, तब तक हमन उमा सिर्फ छोटे से योगदान दे सकते हैं। जो हमन बड़े लेवल में अगर हमला कुछ करना है तो सरकार के हमला साथ चाहिए रही।
1: बिल्कुल, और आजकल सरकार भी है आकार के माध्यम से सब्स के माध्यम से प्रयास कर रहे थे, और आपके भी कहना बहुत जायज है कि एक नया प्रयास जरूर होना चाहिए। शिवा सर मैं आपले एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि आज के जो डिजिटल दौर है सर उमा सोशल मीडिया और एआई के ज़माना आगे है, ऐसे समय में चित्रकला के भविष्य ला आप किसे देखता हो?
0: चित्रकला के भविष्य में हाँ, जैसे अभी चला था वह मैं वैसे ही मानता हूँ। उमा कोई मोला अलग से ये नहीं दिखा थे कि यहाँ हमर मन के चित्रकारी के जो वैल्यू है वो कम हो गए।
1: अच्छा।
0: काबर की चित्रकार जो है कला ला सिर्फ देखे पर नहीं बनाए, महसूस करे पर बनाते, जो है ए आई है नहीं कर सके। ए आई है सिर्फ हमला आइडिया दे सकते, ओला देखे पर अपन देख सकते, लेकिन जो अनुभूति है वो चीज़ ला वह अपन जितना भी क्रिएट करा थे वो नहीं ला सके।
1: बहुत आप सही बात कहो कि ए आई वह तो मशीन है, ओमा वो चीज़ नहीं आ सके कभू। अब एक मनुष्य के अब आदमी के जिन भावना है सर अनुभव है वो हाँ एआई के अनुभव से कभी मेल नहीं खा सके, यह बात सही है आप मन बहुत बढ़िया बताया। सर आप अध्यापन घलो करत हो, लेकिन मतलब आप सिखावत हो पेंटिंग के बारे की, तो आप मन ला का लगते कि हमारे छत्तीसगढ़ में और जिन लेकिन मन सीखत है ओखर अंदर के जिज्ञासा और संभावना ला देख के आपका का लगते कि वो मन कौन ढंग लागू बढ़ सकत है?
0: ऐसे है कि हमन ला शुरू से पता नहीं रहा है कि हमन हा कला के क्षेत्र का हरा है, कैसे ओमा काम करना है। हमन अभी जितना भी हमन बचपना में लइका मन में करथन वो सिर्फ हमन हॉबी के रूप में ऐसने करथन, हाँ ठीक है करथन अच्छा लगा थे, उतने तक सीमित रहते। ऐसे हमन बारहवीं निकलथन ओकर बाद फिर सोचल धरथन कि हमन ला काय करना है, तो वो समय ना एक गाइडेंस की बहुत जरूरत रहते कि जितना भी तो अनुभव है इंटरेस्ट है वो काम है ज़्यादा, तो वो चीज़ ला समझना जरूरी है। एक करियर काउंसलिंग जो चीज़ है वो चीज़ ला अटेंड करना, वो चीज़ ला सरकार ला ध्यान देना चाहिए ये सब चीज़ों में कि जैसे स्कूलों में बारहवीं कक्षा में जो बच्चा मन है वो मतलब कला के क्षेत्र में जो चीज़ें हैं ओकर से भी अवगत कराना चाहिए ताकि वो मतलब अभी समझ आए कि ये चीज़ में भी फील्ड हवा है। हाँ, और रही बात अभी मोर साथ एक हुआ है कि एक लड़का है मैं जी हाँ अभी काम कर रहा था वहाँ मोला पेंटिंग करा देखी सब है, तो वो लड़का है अभी बारहवीं कक्षा से निकल ली सब है।
1: अच्छा।
0: तो ओकर बाद ओला अभी कुछ डिसाइड नहीं रही से मोल काय करना है, तो वो है हमर मन से बात करी सब है भैया आप मन पेंटिंग करा था ते मतलब कैसे टाइप से करता हो आप मन है मतलब सीखे हो कहीं कि हमन कैसे करे हो? हमन बता है नहीं हम भाई हमन हा पेंटिंग के कोर्स करे हैं, यह 6 साल के कोर्स होते हैं मास्टर्स करके, तो ऐसे तो वह लड़का की सब है कि भैया माहौल करना है माहौल पेंटिंग वेंटिंग बनाए मन करते, तब हमन बताए हन ऐसे ऐसे करना है अभी फॉर्म भी फिलअप हुआ थे वहाँ तो यहाँ जाके वहाँ भर सकता था
1: भर सकत है।
0: तो अभी का हुई सब है अभी इंट्रेंस एग्जाम होते वहाँ तो इंट्रेंस दी सब लड़का है और वह सिलेक्शन हो गए, तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ चाहत रही से जो चीज़ ओकर मन के अंदर रही से जिला वह दिल से करते वो चीज़ के ओर बढ़ी सब आगे, ते देख के अच्छा लगते कि
1: बहुत बढ़िया
0: हमर मन से भी देख के कोई इंस्पिरेशन लेके वो माँ आगे बढ़ा।
1: बहुत बढ़िया घटना बताया सर, और हमर जिन संगवारी मन सुना थे

0: उखर मन के भीतर अगर ऐसे कोई बात हो ही कि कला के क्षेत्र में मन जाना चाहत हो ही, तो वो मन भी नवा नवा चीज खोजत रहा है। आजकल तो वेबसाइट आ गए है सब यूनिवर्सिटी मन के, वहाँ भी वो मन दिखत रहा है। सर ही बातचीत के सिलसिला में बातचीत के हमार गोट बात चलत है, ओम मोर आपसे प्रश्न ये है कि जैन मन हाँ कोर्स कर डरे है या कोर्स करे के सोचत है, ओखर मन के भविष्य के लिए का संभावना खुलते हो कर बाद?
1: जे मन हाँ कोर्स कर रहे है, जैसे कि अगर बैचलर्स कर रहे है तो वो मन हाँ टीचिंग के फील्ड में आगे जा सकते हैं। जैसे हमार मन के सेंट्रल स्कूल हवे KV नवोदय EMRS ये सब में ना हमार मन के फाइन आर्ट्स के एक अलग से पोस्ट निकलते।
0: अच्छा,
1: तो ओमा जा सकते और अगर मास्टर्स निकल गए है और आगे यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाना है तो ओमा असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी काम कर सकते। और अगर तो शिक्षा के क्षेत्र में ही जाना है, अब फ्रीलांसिंग करना है तो आप मन हाँ अलग अलग जैसे कि फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट बन सकता हो, जेमा आप मन हाँ अपन पेंटिंग बना के वाला सेल करे के काम कर सकता हो, या फिर डिजिटल अभी मार्केटिंग के बहुत चला थे तो मैं डिजिटली काम करके आप मन हाँ डिजिटल ग्राफिक्स पेंटर बन सकता हो। और स्टेज डिजाइनिंग के भी बहुत अभी चलते, मतलब आपके मूवी वगैरह में जितना भी स्टेज डेकोरेट होते वो सब स्टेज डेकोरेट आर्टिस्ट होते ओकरो वो पूरा स्टेज ला डिज़ाइन करते, तो उस इनमें भी आगे बढ़ सकता। तो आर्ट के मतलब क्राइटेरिया बहुत बड़े है, बहुत बड़े स्कोप है, बस वही है कि मेहनत जो करी बोला वो मुकाम मिले।
0: बहुत बढ़िया बात कहो सर। अभी आप लगातार काम करत हो, लेकिन मतलब पढ़ावत भी हो, मोर मन में सवाल आते कि आपके भविष्य के का योजना है आने वाला समय में? आप छत्तीसगढ़ के लोक कला बर और जिन हमर फोक आर्ट्स है ओखर लिए आप का करना चाहत हो?
1: छत्तीसगढ़ के जो फोक कला है जैसे कि सबसे जो प्रचलित हवा जो हमारा ढोकरा आर्ट है, और हमन सिर्फ ढोकरा आर्ट ला जानते नहीं से लगते मोला, जबकि यहाँ छत्तीसगढ़ में और भी कला है जैसे मुरिया पेंटिंग है और तुम्हार सोनाबाई रजवार के रजवार भित्ती है। तो ये सब जो कला है एमन है सिर्फ कागजी हवा है कि यहाँ ऐसे ऐसे कला रही सब है, लेकिन आज के टाइम में वह विलुप्ति कगार में आ गए, वाला करने वाला आदमी कम हो गए,
0: कम हो जाते।
1: हाँ, तो ये चीज़ के ऊपर मोर प्रयास है कि आगे जाके कहीं में वाला थोड़ा से लोगों तक पहुंचा सकाऊँ और वो चीज़ ला वो मन जाने और ये कला जीवित रहे।
0: बिल्कुल सर, जिसे आप हम देख सकते हैं कि आप लिखे हो कि आप रजवार भित्ती के ऊपर आप डिसर्टेशन घलो करे हो, तो ये तो रजवार भित्ती है ऐसे कला है जिला बहुत आदमी नहीं जाना है, और सुन के आज ये कार्यक्रम ला भले उमन की जिज्ञासा बढ़ी, तो मैं जानना चाहूँ सर कि ये रजवार भित्ती का एक बारे में थोड़ा आप बताओ।
1: रजवार भित्ती सोनाबाई रजवार जो रही सब है हमारे सरगुजा संभाग के, ओकर एक मन के अभिव्यक्ति है रजवार भित्ती। मतलब रजवार भित्ती कोई पारंपरिक जो चलते आदर्श वाला कला नो है, रजवार भित्ती मतलब हमारे सोनाबाई रजवार जो आर्टिस्ट है ओकर मन के अभिव्यक्ति, वहाँ से वो रजवार जनजाति ला एक आर्ट फॉर्म के रूप में यूनिक वो दे हवे। तो ये रजवार भित्ती है अभी मतलब वो जब रही हवे तब वह विदेश तक गए हवे अपन कला के क्षेत्र में,
0: वाह,
1: तो कहीं ना कहीं हमर मन के लिए वो प्रेरणा हवे कि मतलब वो है बंधे नहीं है किसी चीज़ से, मतलब वो अपन जितना भी एकाकी जीवन रही से वो चीज़ से वह निकले बर वह कला ला अपन माध्यम बनाई से, तो वो चीज़ देखे बर मिली सुहा जब मैं ओका घर गए हाँ सोनाबाई रजवा जी से तो मिलना नहीं हो पाई से, काबे की आपको निधन हो गए, ओका बेटा दरोगा राम जी से मिलना हुई से।
0: अच्छा।
1: तो बताई सबा कि हमारे माता श्री बाहर बाहर तक गए हवा कलर लेके और हम मन करत रहन, लेकिन अभी वही है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ थे तो चीज़ें जैसे कि अब सीमेंटेड हो गए सब चीज़ है, तो जो माटी कला है वह धीरे धीरे अब खत्म हो जाते हैं। अब आदमी मन हा माटी घर बनावे ही नहीं, तो वो चीज़ अब खत्म हुआ था, मतलब ओकर घर में दिखा था भाई काबा कि वो मन चालू करे है वहाँ से उत्पत्ति होए, लेकिन अब जैसे जैसे मॉडर्नाइज हुआ थे वैसे वैसे वह विलुप्ति की तरफ जाते।
0: लेकिन सर आपके विचार रहा ये सब विलुप्ति की कगार में जिन कला मन हुए ओला नवा जीवन दे के प्रति आपके जिन इच्छा है सर वो बहुत अच्छा है, और हमार मन के शुभकामना है कि आप अपन उद्देश्य में सफल हुआ। सर आखिरी प्रश्न हमार आपसे ये है कि हमारे जिन संगवारी मन कार्यक्रम ल सुना थे ओखर मन से आप का कहना चाहो?
1: कला के क्षेत्र में बहुत बहुत बड़े क्षेत्र है कला हा।
0: हाँ हाँ
1: और ओला सिर्फ एज अ हॉबी ना देख के ओला भी एक करियर के रूप में देखा, ताकि आप मन में आगे बढ़ सको और एक मन के अभिव्यक्ति जो भी रहते हर इंसान के वो चीज़ ला आप और आदमी मल्ला दिखा सको। और एला जैसे कि डॉक्टर इंजीनियर बने के सबके सपना ही थे, तो जब तक पता नहीं रही कोनो आदमी ला कि कला के क्षेत्र में का होते, तब तक वह कैसे सोची कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ कि। तो वो चीज़ ला भी सरकार ला सोचना चाहिए कि हमला कला के क्षेत्र में भी ध्यान देना चाहिए।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छा शुभकामना संदेश समर संगवारी मन लदे हो। शिवा जी, आप मन अपन कला यात्रा अनुभव और विचार मनला बहुत सरल और सुघर ढंग ले हमार संग साझा करो। हमला भरोसा है कि आज के गोट बात ला सुन के युवा संगवारी मनला प्रेरणा मिली और कला के प्रति उखर भीतर नवा विश्वास घलो जागी। आकाशवाणी परिवार के ढर ले आप मन के उज्ज्वल भविष्य पर बहुत बहुत शुभकामना घलो पठोवत हन। आप मन समय देव एखर बर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। क्रम पहुना जोहार मा आप सबो जन संग फेर हो ही भेंट एक जन नवा पहुना के संग। झोंको अपन संगवारी दीपक तिवारी के राम राम।

0: संगवारी हो अभी सुनत रहें क्रम पहुना जोहार में चित्रकार शिवा साहू ले दीपक तिवारी के बातचीत। तो संगवारी हो हमर अगला क्रम हावे क्रम हमर गांव। तो संगवारी हो गांव के गोट बात जब करथन तो शब्द ले ही गांव के जम्मो जिनिस ह आँखी में जुले लागथे। औ ते औ कहूँ दूसर जगह ले अपन गांव जाबे त गांव के सिवार में पहुँचते ही वो सुकून मिल जाथे, माने सौहत घर पहुँच गए वैसे कस लागथे। सबला अपन अपन गांव ले लगाव होथे संगवारी हो और बहुत पसंद होथे। भले शहर म सारी सुख सुविधा मिल जाही फिर गाँव जैसन अपन अपनापन जो मिलथे मया मिलथे कहूँ नहीं मिले। तो चलो भाई यही गुड़बासन आज के क्रम हमर गाँव ला शुरू करथन। त ललिता पहलिया पाती तोर हाथ में दिखत है भाई कौन संगवारी है कालिक के पठो हावे।
1: तो संगी पहला पाती आए हावे ग्राम कोरदा ले कलीराम यादव ह कहत है बर पिपर के छाव है कोरदा हमर गाँव है। स्कूल है सात तालाव है हमर गांव मा हर साल कीर्तन होते। हर बछर तरिया के पार मा भादो महीना मा भगवान राम के भजन कीर्तन होते जेन मा कलेवा के बाजार लगते जेन ला आप मन देखे जरूर आईहा। और संगवारी हो आप मन ला मैं कहना चाहत हो आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद है जो हारे संगी हमन ला अपन गांव मा अतिक मया ले नेवता देहे पर। युवानी मा आप मन के पाती के अगोरा रही ऐसे ही पाती भेजत रहो और हमर मन ले जुड़े रहो। आभार है जो हार है आगू घलो पाती जरूर पठोहू अगोरा रही।
0: तो संगवारी हो आगू दरी हमर कर ज्यादा ले ज्यादा पाती पठो हो का बाकी ए दरी तो हमर कर पाती अतके आहे कम आहे। त ओखर बर अप हमर पता ला लिखाओ। हमर पता हावे पाती के माध्यम ले अपन गांव के बारे में सुघर ढंग ले विचार ला दू भाई। ओखर बर पता हावे क्रम हमर गांव युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड है 4920001। और ईमेल के माध्यम ले हमर तीर अपन बात गांव के बारे में भेजू तेकर पर पता हवे airyouth9@gmail.com। और सब्जेक्ट कोड हवे संगवारी हो Y11। सब्जेक्ट कोड डारे बर झनबुला हो। तो आज के क्रम हमर गांव इहें तक।

0: डाराले टुटके पाना गिरा देखाओ भुइया मजी संगवारी हो ये गीतला अपन सुरदेरी ने भगवती साहू मन हा
1: और सुने बर चाहे रेन इस संगवारी मन हा कोटना पानी डोंगरगढ़ ले खिलावन मंडावी परमेश्वर प्रणय ईशांत
0: तो संगवारी हो जाए के बेरा हो गए है जाए के पहली बता देथन काली कार्यक्रम काली के कार्यक्रम युवाणी सजी हिंदी में जेमे आप मंसूर हूँ खेल चौपाल और ज्ञान सरिता यही गुड बात संग आज की युवाणी ले अपन संगवारी थनेश्वरी बघेल
1: और मैं ललिता साहू के नमस्कार।

0: अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी मीडिया वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। हिंदी समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अधिक विकास और उपलब्धियां हासिल करने में विश्वास रखता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आज प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी वर्ष 2014 की यात्रा 28 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी।
2: मैं जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था तो 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहाँ पहुँचा था। तब मैंने कहा था कि अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से जुड़े ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि इस भविष्य उन्मुख भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का सबसे मजबूत आधार दोनों देशों के बीच सेतु का कार्य करने वाला जीवंत भारतीय प्रवासी समुदाय है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध गतिशील हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेलबर्न में श्री मिश्री ने कहा कि व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहित अनेक क्षेत्रों में दोनों देशों की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार सुदृढ़ हुई है। गुजरात सरकार ने आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विकसित भारत डेटा सेंटर नीति 2026-29 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य 8 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए गुजरात को भारत के अग्रणी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में 6,00,000 करोड़ रूपए के निवेश और अधिक रोजगार सृजित करना है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया। सेना प्रमुख ने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। पदभार ग्रहण करने के बाद सेना प्रमुख का पुंछ के अग्रिम क्षेत्रों का ये पहला दौरा है। सेना प्रमुख ने नगरोटा स्थित व्हाइट नाइट कोर मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों

से जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और सैन्य तैयारियों की जानकारी ली। सरकार ने सोशल मीडिया पर उस दावे का खंडन किया है जिसमें भारत आ रहे एक एलपीजी टैंकर पर ईरान के मिसाइल हमले की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा है कि साझा की जा रही तस्वीर पिछले साल यमन के अदन तट के पास कैमरून के झंडे वाले एलपीजी टैंकर एमवी फाल्कन में विस्फोट के बाद लगी आग से संबंधित है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमरीकी हवाई हमलों से दो दिन में 14 लोग मारे गए हैं और 78 घायल हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मानसून राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी आगे बढ़ चुका है। विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। राज्य सरकार हा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारी मन के प्रभार मा करीन फेरबदल। गौरेला पिंडा मरवाही जिला के कलेक्टर बदले गीस। प्रदेश मा अवैया बछल्ले नवा शिक्षा सत्र 1 अप्रैल ले हो ही शुरू। और कोल लेवी घोटाला मामला मा काली गिरफ्तार कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल ला 17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू के रिमांड मा भेजे गीस। अब समाचार विस्तार ले। राज्य सरकार हा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारी मन के प्रभार मा फेर बदल करे हे। सामान्य प्रशासन विभाग डहर ले जारी आदेश के अनुसार गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के कलेक्टर संतोष कुमार देवांगल ला स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव बनाए गए हे। उखड़ जगह मा तकनीकी शिक्षा विभाग के संचालक विजय दयाराम ला गौरेला पेंडा मरवाही जिला के कलेक्टर नियुक्त करे गए हे। उहे हेमंत रमेश नंदनवार ला तकनीकी शिक्षा रोजगार और प्रशिक्षण के संचालक बनाए गए हे। एकरे संग ओमल्ला छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अतिरिक्त प्रभार घलो सौंपे गए हे। एकर अलावा सुमित अग्रवाल ला छत्तीसगढ़ राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अनुपमा आनंद ला महासमुंद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के जिम्मेदारी दे गए हे। प्रदेश मा अवैया बछर ले नवा शिक्षा सत्र 1 अप्रैल ले शुरू हुए हे। इस संबंध मा स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह लोक शिक्षण संचालनालय ला पत्र भेज के दिशा निर्देश जारी करे हे। एकर तहत वर्तमान मा राज्य संचालित होवैया 16 जून ले 30 अप्रैल के शिक्षा सत्र ला अब खत्म कर दे जाही। एकर जगह मा देश के आने प्रमुख शिक्षा बोर्ड और मंडल के समान है। अब छत्तीसगढ़ मा घलो नवा सत्र 1 अप्रैल ले शुरू होके 31 मार्च तक चलही। फिर छात्र मन ला मिलैया गर्मी के छुट्टी मा कोनो कटौती नहीं करे गए। प्रदेश मा 1 मई ले 15 जून तक गर्मी के छुट्टी पहली जैसे ही रही। 1 अप्रैल के नवा शिक्षा सत्र शुरू होए के संग ही स्कूल मा साला प्रवेश उत्सव मनाए जाही। ए दौरान छात्र मन ला निशुल्क पुस्तक सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल और स्कूल ड्रेस बांटे जाही। उहे आने सबो छात्र मन के हित के योजना और गतिविधि घलो अनिवार्य रूप ले शुरू करे जाही। इही बीच राज्य सरकार हा अवैया शैक्षणिक सत्र ले प्रदेश के सबो स्कूल मा कक्षा पहली मा प्रवेश बर न्यूनतम आयु 6 बछर निर्धारित कर दे हे। ए नवा व्यवस्था सबो शासकीय अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालय पर लागू होही। संगे संग शिक्षा के अधिकारी अधिनियम के तहत निजी विद्यालय के 25% आरक्षित सीट मा होइया प्रवेश बर घलो ए नियम प्रभावी रही। ए निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के अधिकार अधिनियम और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुरूप ले गए है। स्कूल शिक्षा सचिव रहले जारी निर्देश के अनुसार अवैया शैक्षणिक सत्र के 1 अप्रैल के लयिका मन के उम्र के आधार मा प्रवेश दे जाही। अभिभावक और लयिका मन के सुविधा बर राज्य शासन हा 1 अप्रैल के निर्धारित आयु पूरा नहीं कर पाए लयिका मन बर 1 जुलाई तक उखर जरूरी आयु पूरा होए तक 3 माह के छूट दे हे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक ला लागू करैया छत्तीसगढ़ देश के पहली राज्य होही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अध्यक्षता मा काली मंत्रालय मा होए राज्य मंत्रिमंडल के बैठका मा ए विधेयक के प्रारूप के अनुमोदन करेगी। बैठका के बाद पत्रकार मन ले चर्चा करत हुए उप मुख्यमंत्री अरुण सावहा बतायन की ए विधेयक के उद्देश्य राज्य मा व्यापार और उद्योग स्थापित करे के प्रक्रिया ला ज्यादा सरल पारदर्शी डिजिटल और समयबद्ध बनाना है। मंत्री परिषद हा बस्तर फाइटर्स मा फाइटर आरक्षक भर्ती और सेवा नियम मा संशोधन ला स्वीकृति दे दे हे। उहे छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक के प्रारूप के अनुमोदन

0: एखर ले राज्य मा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान के स्थापना ला प्रोत्साहन मिलही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली राज्य के शासकीय सेवक मन बर वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना के शुभारंभ करीन। एखर उद्देश्य शासकीय सेवक मन ला आकस्मिक परिस्थिति मा सम्मानजनक तुरते और सहज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री हा कहीन कि अब कर्मचारी मन ला अचानक पड़े जरूरी बर निजी साहूकार या ऊंचा ब्याज दर मा ऋण ले बर व्यवस्था के सामना नहीं करना पड़ी। सरकार हा ऐसन व्यवस्था विकसित करे है जेखर जरिया ले ओमन बिना जरूरी कागजी प्रक्रिया के अपन पात्रता के अनुसार कम समय मा ऋण पा सकी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। छत्तीसगढ़ सरकार हा राज्य मा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ला बढ़ावा देबर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ला तेजी ले बढ़ाए के फैसला करे है। सबो जिला के RTO और DTO ला अपन क्षेत्र मा चार्जिंग स्टेशन ला जगह चिन्हित करे और NOC के प्रक्रिया तेज करे के निर्देश दे गए है। वर्तमान मा अलग अलग कंपनी के अलग अलग ऐप है जेखर ले उपभोक्ता मन ला परेशानी होते। सरकार अब राज्य स्तर मा एकीकृत प्लेटफॉर्म ऐप बनाही हुए। भारत सरकार घलो यूनिवर्सल EV चार्जिंग ऐप लावत है। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ला करीब 500 करोड़ रुपया के कोल लेवी घोटाला मामला मा काली गिरफ्तार करेगी रहीस। आज ओमल्ला रायपुर के विशेष अदालत मा पेश करेगी जिहां कोर्ट हा रामगोपाल अग्रवाल ला 17 जुलाई तक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW के रिमांड मा भेज देगे है। जानबा के मुताबिक रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ ए मामला मा विशेष अदालत हा स्थायी वारंट जारी करे रहीस। उखर तलाश मा कतकोन जगह छापा घलो मारेगे रहीस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा काली रायपुर के डूमर तलाई मा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल डहर ले विकसित नवीन थोक बाजार फेज 2 के लोकार्पण करीन। ए दौरान श्री साय हा घोषणा करीन कि परिसर के नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम मा करे जाही और यहां स्टेचू ऑफ यूनिटी के तर्ज मा उखर 15 फीट ऊंचा प्रतिमा स्थापित करे जाही। ए बेरा मा मुख्यमंत्री हा कहीन कि राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संग ईज ऑफ लिविंग ला घलो समान महत्व देवत है। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय डहले भुवनेश्वर मा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला मा छत्तीसगढ़ आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ला अच्छा प्रदर्शन बर सम्मानित करेगी। ए कार्यशाला देश के जनजाति अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण बर आयोजित करेगी रहीस। एमा 29 राज्य के जनजाति अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि मन हा हिस्सा लेन। कार्यशाला के दौरान जनजाति अनुसंधान संस्था के कार्यप्रणाली जनजाति विकास बर अनुसंधान आधुनिकीकरण GIS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार परिस्थिति तंत्र जैसन विषय में विचार विमर्श करेगी। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र में कृषि अभियांत्रिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के पहली बछर में प्रवेश बर ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रक्रिया काली 10 जुलाई ले शुरू होवत है। काउंसलिंग में भाग लेवैया इच्छुक अभ्यर्थी जरूरी दस्तावेज के संग 20 जुलाई तक पंजीयन कर सकत है। अभ्यर्थी के प्रवीण सूची 23 जुलाई के विश्वविद्यालय के वेबसाइट में प्रकाशित करे जाही। राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकार राजेन व्यास के काली 8 जुलाई के निधन होगी। श्री व्यास राजनांदगांव प्रेस क्लब के संरक्षक रहिन। उमनहा लंबा समय तक राजनांदगांव जिला के आकाशवाणी संवाददाता के रूप में घलो अपन सेवा दिन। केंद्रीय गृह मंत्रालय डहर ले जारी वार्षिक पुलिस थाना रैंकिंग में बस्तर स्थित बोधघाट थाना ला राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित करे गए है। गृह निर्माण मंत्रालय डहर ले हर बछर देश भर के पुलिस थाना के मूल्यांकन आने आने मानक में करे जाते। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA हा CSIR UGC नेट परीक्षा बर अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी कर दे है। बलौदाबाजार भाटापारा जिला में खमरिया चूना भट्टी के तीर 2 मोटरसाइकिल के टकराए ले 2 लोगन के मौत होगी। फिर 1 माई लोगिन गंभीर रूप ले घायल हो गए है। और दुर्ग जिला के मोहननगर थाना पुलिस हा रायपुर नाका क्षेत्र में जुआ खेलत 12 जिन आरोपी मन ला गिरफ्तार करे है। ओखर तीर ले 9 लाख रूपया ले ज्यादा नगद पैसा और 10 मोबाइल

0: जब्त करेगे हे। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घौ फेर, राज्य सरकार हा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारी मन के प्रभार मा करिन फेरबदल। गोरेला पेंडा मरवाही जिला के कलेक्टर बदले गीस। प्रदेश मा अवैया बछर ले नवा शिक्षा सत्र 1 अप्रैल ले होही शुरू। औ कोल लेवी घोटाला मामला मा काली गिरफ्तार कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल ला 17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू के रिमांड मा भेजे गीस। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन एहे सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:20 होने को हैं। संस्कृत समाचार अब हम दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः उद्घोषः 21st शताब्द्याः नूतन भारतं विकसित राष्ट्रनिर्माणस्य लक्ष्यं प्रति द्रुतगत्या अग्रेसरति। मेलबोर्न नगरे भारतीय समुदायस्य भव्यं सम्मेलनं चासौ संबोधयति। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये रक्षा सुरक्षा सहयोगाय ऐतिहासिकं संयुक्त घोषणापत्रं हस्ताक्षरितम्। अनेन सहैव ऑस्ट्रेलिया देशस्य यूरेनियम धातोः दीर्घकालिक आपूर्तेः महत्वपूर्ण सन्धिः अपि निष्पादितः। उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णनेन भुवनेश्वरे गभीर समुद्र मत्स्यपालन संपदः शाश्वत उपयोगाय राष्ट्रियाभियानस्य विहितं विधिवत् अनावरणम्। राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः अंतर्गतं वयस्क साक्षरता मानदण्डानवाप्य उत्तराखंड राज्यं देशस्य पूर्ण साक्षर राज्यानां गौरवपूर्ण सूच्यां सम्मिलितम्। प्रावृष्टावत कृत्स्नेहि देशे व्याप्ता दिल्ल्यां विगतरात्रिकालात् अश्रांत वृष्ट्या सामान्य जनजीवनम् अत्यन्तं बाधितम्। अपि च भारत इंग्लैंडयोः मध्ये पंच क्रीडात्मिकायाः चतुर्थी अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अद्य रात्रौ तावत् 10 क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् 21st शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धो वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति।
3: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है।
2: विगत 12 वर्षेषु स्वस्य तृतीयं ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापत पयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधानां ऊर्ध्वगामितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज इत्यसावपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जन उत्साहं दृष्ट्वा एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोः नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्ट मण्डलस्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिंद प्रशांत क्षेत्रे शांतिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
3: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग

0: स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणा पत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग

0: जनविद्युत्पाताभ्यां सह जातायाः अत्यधिकवृष्ट्या प्रभाविताः। अनया विविधस्थानेषु जलावरोधस्थितिः सञ्जाता, यया यातायातव्यवस्था अत्यन्तं बाधिता अभवत्। दिल्लीसर्वकारेण ज्ञापितं यत् जलौघम् अपाकर्तुं दिल्लीजलबोर्ड लोकनिर्माणविभागं समेत्य नगरनिगमस्य दलानि कार्यं कुर्वन्ति इति। भारतीय पिकलबॉल संघेन आगामिनि पिकलबॉल विश्वचषके 26-अधिक-2000तमवर्षे प्रतियोगितायाः प्रोषेण्यां भारतस्य प्रतिनिधित्वं विधातुं पुरुषमहिलावर्गयोः भारतीयदलस्य घोषणा कृता। एयं विश्वस्तरीया क्रीडा प्रतियोगिता अस्मिन्नेव वर्षे 30 अगस्त मासस्य सितंबर मासस्य 6 दिनांकं यावत् वियतनाम देशस्य दानांग नगरे आयोजयिष्यते। अन्ताराष्ट्रिय पिकलबॉल क्षेत्रे विख्यातः हर्ष मेहता अस्मिन् प्रतिनिधित्वं विधास्यति। पुरुष क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां भारत इंग्लैंडयोः मध्ये प्रचलन्त्याः 5 क्रीडात्मिकायाः 20-प्रति-20 श्रृंखलायाः चतुर्थी अन्ताराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अद्य रात्रौ 10 वादने ब्रिस्टल नगरस्य काउंटी ग्राउंड क्रीडांगणे क्रीडिष्यते इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं, समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का।
2: ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुना।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के

लीजिए सुनते हैं राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल के युगल सरों में फैज अनवर की रचना, संगीत है साजिद वाजिद का, फिल्म का नाम है दबंग।

नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान के युगल स्वरों में लीजिए सुने इरशाद कामिल की रचना। संगीत प्रीतम का है। फिल्म का नाम है लव आजकल।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लक्ष्मीकांत भाई, हमन बात करते हैं खेती किसानी की, तो हाँ। भाई आज के बेरा में जिन खेती होते ना, माने ऐसन खेती जेमा हमार पुरखा मन के ज्ञान घलोक रही थे और नवा जो के नवा तकनीक घलोक रही थे
4: और नवाचार के जब हम गोट करथन त हमर छत्तीसगढ़ में संभावना बहुत रही थी, इसे गोठियात रहे ना, तब पारंपरिक जोन हमर बीज है, सुपर फूड की जोन हमर तिरहावा है, ओकर हम ब्रांडिंग कर सकते हैं। हमर छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी, रागी माने जोन मिलेट से है ना, और चौर में कहन त है ना, जीरा फूल जैसे खुशबू वाले धान जोन हवाई परंपरा है हमर, त एकर कीमत भी ज्यादा मिलते, तेला सुघर ढंग ले हम मिलिंग करा के वाला है ना, ब्रांडिंग भी कर सकते हैं,
3: प्रसंस्कृत कर सकते
4: हैं, और सिर्फ मंडी में ही धान या मिलेट बेच के हम कम दाम पाथन ना, ओकर बजाय हम ओकर प्रसंस्करण जैसे भी कहे ना तक कर सकते हैं। रागी के जैसे आटा बना ले हैं, कोदो के बिस्कुट बना ले हैं, जीरा फूल के जो धान है वाला चावल करवा के कुटवा के सुघर पैकेजिंग करके हम बेच सकते हैं।
3: अब बात इसने एकीकृत खेती ला अपना के बात करन, यू ला अपना सकते हैं। पुरखा मन का है कि एक एक के भरोसा झन रहे,
4: हाँ।
3: माने सिर्फ धान के भरोसा रहे और कोनो भी कारण ले फसल ने नुकसान हो गए तो दिक्कत हो जाये, एक साथ कतकुन कामला कर सकते हैं, ये सलाह हमारे सियान मन देवा और विशेषज्ञ मन घलो कही थे। जैसे खेत के बीच में धान बो दे रहे, मेड़ में राहेर पपीता या कोनो भी दिगर जिनिस, और खेत के कोना मा छोटे से तालाब बना के मछली या बत्तख पालन कर सकते हैं। धान के संगे संग मछली, अंडा और फल बेचे ले हमार महीना अगरिया नगद आमदनी

0: कई शुरू में तो बने लाभ मिल जाते
1: तो
0: फिर इकल माटी की गुणवत्ता फसल की गुणवत्ता ओखर उत्पादन और हमरो स्वास्थ्य पर इकर प्रभाव
1: देखा हमारे जो समय है हमारा वैया पीढ़ी पर बड़ नुकसान के हमला हमार माटी भी खराब हो गए हमला फसल उत्पादन भी कम मिलते खेत है फिर हमार कम काम के
0: ये बात है कि वो जैविक उत्पाद की आमदनी जिन रुपया पैसा वो बने मिलते तो जैविक खेती ला अपना की अपन उपज की कीमत बढ़ा सकते हैं
1: और अपन उपज ला जो बन मिले हमला है ना जैसे हम ब्रांडिंग के गोट कर रहे हैं ना पहले तो वैसे उत्पाद ला हमारे बीच अभी ई कॉमर्स कंपनी बहुत सारे उपलब्ध है तो वहाँ हम अपन उत्पाद ला हम अपन स्थानीय बाजार से हम पूरा विश्व वैश्विक जो बाजार है वहां तक पहुंचा सकते हैं हमला यहाँ कोनो चीज जिनिस के एक रुपया कीमत मिले थे तो हो सकत है हमारे वैश्विक बाजार है वहाँ चार रुपये मिल जाए
0: सही
1: है ना तो हमार आर्थिक सुदृढ़ीकरण ही है तो और एक चीज और कर सकते हैं हमारे संगवारी मन जो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में है कि अपन खेत में अपन गांव में जो होम स्टे है हाँ हमारे मेहमान रुके जो व्यवस्था होते वो ला बना सकते हैं भाई हरियाली के बीच कौन मेहमान आके रुकी तो कतका सुघर लागी है और हमारा जो स्थानीय पर्यटन है और हमारे जो समूह है वो आर्थिक लाभ बढ़ावा मिली
0: इसने ही कहा होते अभी जैसे बिहार के बिना मैंने हमेशा देखा मावा की भाई कहूँ जगह की बुकिंग करे है तो पता चलत रही इसकी महीनों सालों पहली बुकिंग हो गई तो जगह की कमी घलो होती से अब एक हल्ले दो फायदा है एक तो बड़ सुघर जगह घलो मिल जाए प्रकृति के बीचों बीच और ये ना एक यादगार पल हो ही वो संगवारी मन भर तो भाई ऐसे है संगवारी हो गोट बात तो बहुत अकन है जितना करबो वतनेश कम है फिर अब हमार क्रम आज की सलाह के बेरा है और आज की सलाह माँ जानकारी के विषय है कि लाभ की खेती अपनावन आर्थिक लाभ कमावन और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वाई के मेश्राम प्राध्यापक हैं आप मन कृषि महाविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर माँ एक संग गोट बात करे समित भाई तो सुनथन क्रम आज की सलाह आपो मन ला सुनवाथन
2: संगवारी हो खेती किसानी तो हम सबो जन करथन पर कई बार ये देखे में आते कि हमन ला मेहनत के हिसाब ले लाभ नहीं होवे ऐसे में हमन अतिरिक्त आय खातिर कोनो दिगर फसल पर अपन ध्यान ला लगाथन जेखर ले हमन ला अतिरिक्त आय हो सके पर संगवारी हो जानकारी के अभाव में एमे हमन सफल नहीं हो पावन तो यही बात ला ध्यान रखत हुए बेरा बेरा में हमन आप मन पर जानकारी लेकर आथन क्रम होते आज की सलाह जेमे आज हमन आप मन पर लेकर आए हन लाख के खेती अपनावन आर्थिक लाभ कमावन ये विषय में जानकारी जानकारी देवत है डॉक्टर योगेश कुमार मेश्राम प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर डॉक्टर साहब आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है
3: जी धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब ये बताते हो कि लाख का होते और एकर खेती कैसे करे जाते
3: सब किसान भाई मन ला राम राम लाख एक छोटे से कीड़ा होते और वो कीड़ा हा पोषक पौधा मन में बैठ के अपन शरीर से एक पदार्थ रथे रेजिन ओला निकालते ओला निकाल के बहुत सारा ओकर उत्पादन करते और पूरा पौधा में वो छा जाते आखिरी में पाके के बाद हम ओला काट के बेचथन और आय प्राप्त करथन ये होते लाख
2: अच्छा अच्छा अब ये बताते हो डॉक्टर साहब कि लाख के खेती खातिर हमला कैसे जगह के चुनाव करना चाहिए
3: लाख के खेती पर जैसे लाख हाँ पौधा मन में होते ओकर पोषक पौधा बड़े बड़े पेड़ रहते तो जहाँ पे हमन बंजर जमीन है या जे भूमि में हमन खेती नहीं करत हन और खेत के मेड़ मन में हमन पोषक पौधा ओकर लगा सकथन और वो पोषक पौधा में हम लाख ला चढ़ा सकथन और लाख की खेती कर सकथन
2: डॉक्टर साहब जैसे कोई नवा किसान संगवारी मन है लाख के खेती के बारे में कुछ भी नहीं जाने है ना वो अगर ये क्षेत्र में आना चाहते लाख की खेती करना चाहते तो एकर बार ओला का करना पड़ी
3: सभी किसान भाई मन ला ये जानकारी बतात हूँ मैं जैसे हर जिला में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है हर जिला में हो चुके हैं तो वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में जाके हमारे विषय वस्तु विशेषज्ञ है कीट विज्ञान के उकर से जाके लाख के खेती के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे हर जिला किसान भाई मन सुन सकते हैं और सलाह ले सकते हैं
2: तो एकर जो बीज वगैरह की व्यवस्था सब कहाँ से मिलते
3: एकर बीज के जो किसान भाई मन पहले से जो लाख के खेती करत है जैसे हमारे अग्रणी जिला है कांकेर जिला है महासमुंद जिला है कोरबा जिला है जगदलपुर है नारायणपुर है उती के जो किसान मन है व्यापारिक तौर से लाख के खेती करत है तो उकर मन से बीजा लाख हमार किसान भाई मन प्राप्त कर सकते हैं
2: अच्छा
3: काबर की वो हमार जो लाख उत्पादक किसान भाई मन है वो मन बीज घला बेचते और कच्चा लाख घला बेचते तो जब बिहन लाख लगाए के समय आते वो समय हमार किसान भाई मन लाख के बीज प्राप्त कर सकते
2: तो एकर फसल जो है साल भर में कतका बार लगा सकते हैं

0: एकर जैसे फसल दो स्ट्रेन रथ है एकर, एक रथ है कुसमी रथ है और एक होते रंगीनी।
1: अच्छा,
0: और ये कुसमी और रंगीनी में ओकर पौधा मन है अलग अलग रथ है। जैसे हमन कुसमी लाग के खेती करबो तो ओमे कुसुम और सेमिया लता पौधा आते, और अगर रंगीनी खेती करबो रंगीनी लाख के खेती तो ओमे आते बोईर बेर और परसा। ये चार पौधा है जो अलग अलग फसल में अलग अलग होते। जैसे कुसमी फसल है ओकर दो फसल होते अग्घनी और जेठवी। अग्घनी ला प्लाई में हमन लगाबो।
1: अच्छा,
0: और छह महीना बाद जनवरी फरवरी में वहाँ पाक जही।
1: अच्छा,
0: धान काट के बेच देबो जी। ओकर बाद जेठवी फसल आई कुसमिच के, ओला हमन जनवरी फरवरी में फिर लगाबो और जून जुलाई में काट देबो। ऐसे साल भर वो कुसमी फसल है चली। लेकिन कौन सा पौधा मा? कुसुम और सेमिया लता मा। अब दूसरा स्ट्रेन है कर रंगीनी फसल। रंगीनी में एक केतकी फसल रथे और दूसरा बैसाखी फसल रथे। केतकी फसल जून और जुलाई में हमन चढ़ाबो पौधा मन में और अक्टूबर नवंबर में काटबो। ओकर बाद फिर बैसाखी फसल तैयार करबो। अक्टूबर नवंबर में हम लगाबो और अप्रैल मई में हम काट बोला।
1: अच्छा, हमला ये पता कब चलते डॉक्टर साहब की ये फसल तैयार हो गए?
0: जैसे कि कुसमी फसल हमन जून जुलाई में लगा थन, ठीक है, तो जून जुलाई में लगाबो तो ओकर छोटे छोटे कीड़ा थे वहाँ कोमल तना में चढ़ी, एकदम छोटे छोटे जे पावर कांच से इसे देखबो तो दिखी। वो छोटे छोटे कीड़ा मन हा चढ़े के बाद में एक जगह बैठ जाये। एक जगह बैठे के बाद में पौधा के रस ला चूसते भोजन भर अपन।
1: अच्छा,
0: ओकर बाद अपन पीठ ले ओकर पीठ मा वह रथे वाहिका रेजिन वाहिका, वहां से वो रेजिन ला निकालते और अपन ऊपर पूरा छा देते और धीरे धीरे इतना सारा निकालते कि वो जो तना है ना एकदम मोट बन जाते। ओकर ऊपर पूरा धूसर करल के रेजिन है बाढ़ जाते, तहन वहाँ पूरा लाशासन दिखते वहाँ।
1: अच्छा,
0: और जब पकने वाला रहते तो वो है संतरा रंग के हल्का हल्का गोल गोल दिखते संतरा रंग के, तो हमन समझ जाबो कि वो है पाक गए है।
1: अब जैसे फसल पाक गए हमार, अब फसल ला तोड़ लेना हमन, तोड़े के बाद में एकर भंडारण के कोई सावधानी रखेला पड़ते का?
0: हाँ, हमन लाख ला काट के जिला स्टिक लाख कथन काट के रखबो। ओकर बाद जे पक्का फर्श है।
1: अच्छा,
0: पक्का फर्श में और सूखा रहना चाहिए, नमी नहीं रहना चाहिए और ज्यादा तापमान घला नहीं रहना चाहिए। तापमान ज्यादा रही तो वो गल जही रेजिन हरे हुआ, तो हल्का ठंडा रहना चाहिए और ओला बिछा के रखते नीचे में फर्श में, बाकी झिल्ली वगैरह में ओला नहीं रखना चाहिए।
1: अच्छा, झिल्ली में रखे में का दुष्प्रभाव होते?
0: झिल्ली में अगर बंद रही तो ओकर तापमान बढ़ जाते।
1: अच्छा,
0: और बढ़ जाही तो वो जो रेजिन है ना वो गले लग जाते, तो एक दूसर में चिपक जाते हो।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताते हो कि लाख के बीज अपन ले आए। हाँ। लेकिन अब जो नवक संगवारी मन है वो मान लो तो पता नहीं है कि ये कैसे लगाई जाही, तो ये कैसे लगाए जाते एक बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हो।
0: लाख लगाए के पहली हमन ओकर पोषक पौधा ला पहली तैयार करबो। हमर किसान भाई मन करा पोषक पौधा पहले से तैयार रहते, मतलब हमर जैसे किसान भाई मन के बाड़ी में या खेत में कुसुम के झाड़ है या बोईर के झाड़ है या परसा के झाड़ है या अगर सेमिया लता लगा है अपन बाड़ी में, तो ओला पांच महीना पहले काट छांट दी।
1: अच्छा,
0: नवा शाखा है बर।
1: ओकर
0: बाद जब जैसे सीजन नहीं, जैसे कुसमी और रंगीनी के सीजन है अलग अलग, जैसे हमन कुसमी है कुसमी फसल लेथन अग्घनी अग्घनी फसल, तो उमे है जून जुलाई में लगाना है हमन ला, तो जून जुलाई के पहले हमार पौधा है अच्छा तैयार रहना चाहिए। कौन कौन सा पौधा? जैसे कुसमी लेथन था सेमिया लता है और कुसुम के, तो कटाई छटाई पहली कर देन ओकर नया शाखा आगे पांच महीना पहले, तो अभी जून जुलाई में नया शाखा निकल गए। तो हमन हा किसान से संपर्क करबो जो बीजा लाख देते, वहां ले लगभग 700 से 800 रुपया किलो में मिल जाते बीजा लाख। तो हमन ओ किसान से ओ बीजा लाख ला लेके आबो। अब बीजा लाख लेके आबो और ओकर लेके आए के तुरंत बाद हमन चढ़ाबो। कैसे चढ़ाबो? जैसे तीन चार जकना है ओकर नीचे 50 से 70 ग्राम के जो बीजा लाख रथे वाला बांधबो रस्सी के सहायता से बांध देबो। तब का हुई ओहा जैसे लाबो तो तीन दिन के अंदर ओकर जो निम्फ है शिशु है छोटे छोटे एकदम छोटे हमार आंखी में नहीं दिखे, ओहा निकल के सीधा चढ़े लग जाए। हमला लाख लगाए के तीन दिन के अंदर वो काम ला करना है लाने। अगर वो तीन दिन हमन भुला गए तो ओकर जो बच्चा मन है निम्फ है नवा बच्चा मन ओ निकल के भाग जाते।
1: अच्छा,
0: तो 3 दिन के हमन ला करेल जरूरत पड़ती। और बीजा जैसे हमार कुसुम पेड़ है बहुत बड़े रहते तो उमें लगभग 5 से 8 किलो लगाते हैं और ओकर बदले हमन 50 से 60 किलो लाख प्राप्त होते हैं।
1: अच्छा,
0: 5 से 8 किलो लगाए में। और अगर हम सेमिया लता लगाए हैं हमार कई किसान भाई मन जो उत्पादक भाई मन है वो मन है ड्रिप पद्धति से सेमिया लता लगा है तो वो मन है एक सिरा से लगाते लगभग एक जो सेमिया लता पौधा में ना 70 से 80 ग्राम एक पौधा में लगते और 300 ग्राम से 400 ग्राम लाख एक पौधा से हमारे मिलते।
1: अच्छा,
0: तो एकर जो बीजा लगाए के और हमार उत्पादन आय के बहुत डिफरेंस है, ज्यादा मिलते। और हमार जो सबसे ज्यादा रेट कुसमी लाख हमला देते ओकर रेट ज्यादा रहते और रंगीनी लाख में रेजिन के जो क्वालिटी है वो कम मिलते तो एकर रेट कम रहते।
1: तो ये कर अंतर में का समझ में आते डॉक्टर साहब कि कैसे अंतर हमन जान सकबो कि ये परसा लाख है ये कुसमी लाख है ये बेर वाला लाख है ये कैसे पता चली।
0: जैसे मैं आप फसल बताया हूँ ना कुसमी और रंगीनी है ना, कुसमी बोले से कुसुम और सेमिया लता में लगते और रंगीनी बोले से परसा और बोईर में लगते। अब आप मन देखो ये बोईर वाला लाख है तो समझ जाओ ये रंगीनी लाख है, ये परसा में लगे है तो समझ जाओ आप मन है कि ये रंगीनी लाख है। और कुसुम लाख ला देखो तो कुसुम के लाख है अलग से मोट मोट दिखते है, सबसे ज्यादा उत्पादन और मोट कुसुम के लाख में पाहू आप।
1: तो एकर वजन भी ज्यादा रहा था।
0: हाँ, वजन ज्यादा रहते है। अगर जो लाख में एक तत्व रहते रेजिन रेजिन कंटेंट वो है ज्यादा रहते हमारे कुसमी लाख में, तेकर से हमारे जो कुसमी लाख है ओकर रेट ज्यादा रहते और रंगीनी के रेट है कम रहते।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अब फसल तो लग गए फसल कट गए, अब एकर बाजार व्यवस्था कैसे रहते।
0: बाजार व्यवस्था जैसे बाजार में कई व्यापारी मन लाख ले लाते कच्चा लाख ओकर मन कर बेच सकते किसान भाई मन और कुछ कुछ हमारे वन विभाग द्वारा भी लेते वो उनकर मन कर भी बेच सकते और समूह में किसान भाई मन जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं तो ओकर माध्यम से भी उत्पादन करके ज्यादा मात्रा में बेच सक।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमर बीच में आयो और अधिक सुघर जानकारी दियो कि लाख की खेती अपना के हमर किसान संगवारी मना कैसे आर्थिक लाभ कमा सकते, तो ये विषय में जानकारी दे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: संगवारी हो, हमर किसान वाणी क्रम आज के सलाम सुघर जानकारी ला हमन अभी सुनत रहें कि लाख की खेती अपनाथन त आर्थिक लाभ मिलते। डॉक्टर वाई के मेश्राम जोन है हमला सुघर जानकारी देवत रहिन कृषि महाविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले रहिन है। एकर तिरगोट बात हमर समित भैया खोत रही।
3: लक्ष्मीकांत, इतना सुघर जानकारी और गोट बात के बाद ना हमन सुनथन और संगवारी मन ला सुनाथन ये सुघर सुघर गीत जिला गाय है श्यामदास मानिकपुरी और संगवारी मन।
1: संगवारी हो, खेती किसानी ता मेहनत के हिसाब ले लाख।

कहते छत्तीसगढ़ माँ भुइयां के भगवान भैया भुइयां के भगवान भुइयां के भगवान भैया भुइयां के भगवान सबला भरोसा है तोरी ऊपर मोरी नगरिया किसान मोरी नगरिया।

0: संगवारी हो सुघर गीत ला सुनत रहें श्यामदास मानीपुरी और संगवारी मन ले
1: लक्ष्मीकांत हमर हाँ? कराना हेलो चौपाल ले जुड़े एक सूचना है हाँ? तेला संगवारी मन ला बता देता संगवारी हो अवैया शुक्रवार 10 जुलाई 2026 के प्रसारित हुआ हेलो चौपाल कार्यक्रम में इधरी के विषय हुई उद्यानिकी फसलों में नर्सरी प्रबंधन। आप मन की समस्या और जिज्ञासा के समाधान खातिर हमारे संग स्टूडियो में विशेषज्ञ हो ही डॉक्टर बलदेव अग्रवाल। आप मन हाँ विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र बालोद मा। आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर हमारा फोन कर सकते हो। हमारे फोन नंबर है पहली फोन नंबर है 4003482, दूसरे यह फोन नंबर है 4003483 और तीसरे यह फोन नंबर है 4003484। रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग हो ही शुक्रवार 10 जुलाई माने काले 2026 के 11:30 ले 12 बजे तक और ये कार्यक्रम के प्रसारण की बात करें संगवारी हो तो प्रसारण हो ही शुक्रवार माने काली संध्या बेरा 7:30 माँ। तो भाई आप मन के फोन कॉल के अभूरा रही और सूचना ही चे सिरावत है।

0: हम हैं भारत के किसान, हम
1: किसान, हम
2: किसान।
1: लक्ष्मीकांत,
3: हाँ,
1: अब बेरा है कृषक प्रश्न मंच के। भाई हमारे संगवारी मन हमारे कार्यक्रम ला कितना ध्यान लगा के सुनते, ये कृषक प्रश्न मंच के जब ओखर मन के जवाब आते तो एक हल्ले पता चलते। तो संगवारी हमार आज के प्रश्न ला लिख ले रहो। हमारा आज के प्रश्न है, लाख के कीड़ा अपन शरीर ले कौन पदार्थ ला निकालते। प्रश्न ला एक घों बता देता हूँ कि लाख के कीड़ा अपन शरीर ले कौन पदार्थ ला निकालते। और सही जवाब पर हमारे मेल आई डी है राय आज के प्रश्न 23@gmail.com। पाँचों हफ्ता मन पूछे रहे हैं कि कटहल के प्रमुख किस्म कौन कौन से हैं। तो एक सही जवाब है ख्वाजा, गुलाबी, सिंगापुरी, स्वर्ण मनोहर, NJ1, NJ2, NJ3 और NJ15, मुक्तम और बरकता। भाई सही जवाब भेजे जिन संगवारी मन भेजे है ओखर नामला हमार संगवारी बताही लक्ष्मीकांत।
3: तो हमार संगवारी मन जो सही जवाब भेजे हैं गंडई टिकरी पारा ले हैं जागेश्वर देवांगन, कचरी बाई देवांगन, दीपक देवांगन, जयश्री और ऋषभ ऋचा देवांगन, दलदल सिवनी ले हैं मनोज कुमार पटेल, रेखा देवी, अमित कुमार, अजीत, जितेंद्र नौम्या, कोपरा राजीम ले हैं लक्ष्मी नारायण पटेल, देवकी पटेल, राधिका पटेल, सैलबाई पटेल, परसा टोला अम्बागढ़ चौकी ले हैं संगवारी मन ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र तुसारणी मसिया, बठेना पाटन जिला दुर्ग ले हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, पार्थ कश्यप, कौशल अरविंद, मुरली वर्मा, रानीगांव नगरी ले हैं खिलेश कुमार साहू, चित्रेखा शुभम, सेजल साहू, भीमखोज तरपोंगी ले हैं संतोष गुप्ता, हितेश, होमेश गुप्ता, गर्रापार बांधा बाजार ले गंगाराम साहू, सुलोचना साहू, मानवेंद्र राव, राकेश साहू मन।
1: तो सही जवाब भेजिए जम्मू संगवारी मल्ला गाड़ा गाड़ा
3: बधाई।
1: भाई ऐसे है कि संगवारी हो हमार चौपाल मना गीत संगीत होत रहना चाहिए, काबर की एखले हमारो मन के उत्साह बढ़ते हो आपो मल्ला ये क्रम बने लागते। तो अब सुनथन और आपो मल्ला सुनवाथन कृष्ण कुमार पाटिल के और संगवारी मन के गाये सुघर सुघर गीत ला।

0: संगवारी हो ये सुगर सुगर गीत सुने जिला गावत रहीने कृष्ण कुमार पाटिल और संगवारी मना तो भाई ये रही से किसान वाणी प्राजक रहीन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: संगवारी हो जाए के बेरा हो गए है, जाए के पहले हम बता देते हैं काली के कार्यक्रम। काली चौपाल आज की बात में गोट कर बोन हरी पत्तेदार सब्जी के खेती अपनावन और पोषण दोनों पावन। हेलो चौपाल में मिली हमारे समस्या के सुगर समाधान उद्यानिकी फसलों में नर्सरी प्रबंधन विषय ऊपर। विशेषज्ञ रही डॉक्टर बलदेव अग्रवाल, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र बालोदली। गीत संगीत चौपाल संग गांव गली तको ममाही तदेव विदा। कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला लक्ष्मीकांत
0: और मोनिका के राम राम, राम।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे। चौपाल मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत का पहला गीत जिसके लिए आवाजें हैं जावेद अली, इरफान और शादाब की। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने, संगीत तैयार किया है प्रीतम ने। फिल्म का नाम है तुम मिले।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तक सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

चित्रपट संगीत का अगला गीत आवाज है केके की। समीर के लिखे इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है हैरिस जयराज ने। फिल्म का नाम है रहना है तेरे दिल में।

रहना है तेरे दिल में। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज थी केके की। गीत लिखा था समीर ने और संगीत तैयार किया था हैरिस जयराज ने। और इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडिया वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए

बांस गीत। कलाकार हैं गुलाल राम निषाद और साथी। किस्सा हरिश्चंद्र तारामती का है।

0: todavía, ¿yo?
1: रोहित कुमार
2: वाजी वाह
1: सुंदर मनमोहन फूल के ऊपर नजर हर पार गए
2: तब मुर्गिया
1: हे भगवान
2: हाँ
1: क्या बस में खाकी के झोरा ला भाट रहे फूल में तो
2: अच्छा
1: पर ये नमूना के फूल नहीं पाए
2: नहीं पहुंचाया
1: बिना तोड़े ये फूल ना हाँ। मैं वापस काशी में नहीं जाऊँ
2: नहीं जाऊँ कहा जी गुरु जी
1: ऐसे सोच करके रोहित कुमार हाँ। तो फूल के ऊपर ध्यान लगा दी भैया
2: वाजी वाह
1: का करे थे
2: मुरली।

0: ya yo.
1: अरे फूला ना जाना ना क्या खाते भैया जाना था भागा जाए ना।

0: भैया दोनों ढंडारा में डंगा ने ले चूहा चूहा चले गए।
1: हाँ तब मोर भैया
0: ऊपर में फूल गई।
1: हाँ।
0: गुरु विश्वामित्र हर सर पापन के बैठे
1: वारी
0: काढ़े रहे।
1: अच्छा
0: सारे बदन में होकर बिखर भींगे रहे।
1: भींगे मोर भैया
0: टपले रोहित कुमार के बीच मस्तक के मनीला।
1: हाँ
0: काट दीस भैया
1: वारी वाह
0: रोहित कुमार है डारा ला छोड़ दीस
1: छोड़ दे
0: छोड़ करके माँ माँ करके अपन मस्तक ला पकड़े
1: पकड़े मोर भैया
0: क्या होते मोर
1: क्या होते जी
2: जय हो भैया जय हो।

0: Yeah.
1: दोनों हाथ ना छोड़ करके मुड़ ला रोहित कुमार पकड़े
2: पकड़े मोर भैया
1: हाँ। बार बार बर्जे पर बर्जे ला नहीं मानियो माँ
2: वाह जी वाह
1: मोर मस्तक लकाए गड़ी से दाई
2: हाँ।
1: ऐसे रोहित कुमार बेटा हा फुलवारी में कहा
2: वाह मोर भैया
1: सर्प के नशा सारी वदन में भींगा
2: भींगे लगे मोर भैया
1: गांजा का नशा चढ़े लगे
2: चढ़ा थे जी
1: तब कहा थे मुरली
2: कहा हो थे मोर भैया।

0: अरे जिस सभा में रावण लड़ने कहा थे गुरु जी और मल्लिन करे पुकार कहा थे, छोटा सा एक बादर आए कि फुलवा करे उधार कहा थे।
1: एली माता रहे
2: तौन मोर भैया,
1: आज बेटे ले खोज चले लगी भैया।
2: चला थे गुरु जी,
1: जाके फुलवार ये सारी दुनिया भर ला खोज।
2: हाँ।
1: रोहित कुमार धरनी में पड़े
2: पड़े हुए
1: खुरचत रहे जमीन में भैया।
2: वाजी वाह,
1: सर पके नशा शरीर में भींगे
2: भींगे रहे मोर भैया।
1: उसी समय माता की नजर है तो रोहित के ऊपर में पड़ गई।
2: पड़े मोर भैया,
1: माता हर का कहे भैया,
2: का कहा थे मोर भैया।
0: जय हो जय हो।

0: शरीर है जमला देख करके माता छाती लठावा थी बेटा।
1: वाजी
0: रोहित कुमार ते कैसे हो गए बेटा?
1: हाँ
0: हाँ सोला मैं कैसे देखूं?
1: वारी वाह
0: माता है मस्तक लठठा दे छाती लठठा वाती
1: पिटा थे मोर भैया
0: बेटा खुरच खुरच के अपन प्राण लगावा
1: गमावा थे मोर भैया
0: पूरी जाए।

0: रोहित।
1: हाँ
0: क्या बताऊँ बेटा, मोरिया दुखिया के शरीर
1: वारी
0: वारी धरती फाड़ जाते, मैं समाप जाते हूँ।
1: हाँ
0: अरे बालक के दुखला नहीं
1: नहीं सहिते कहा थे मोर भैया।
0: बताऊँ बेटा तब मोर पास में ना पैसा ना कौड़ी।
1: वारी वाह,
0: मैं आपके लिए कहाँ से कब्र के लिए कपड़ा
1: कपड़ा लाऊं कहा थे।
0: मैं बिल्कुल अनाथिन हो गई बेटा।
1: वारी
0: दोनों हाथ में माता तारामती रोहित कुमार ले उठा।
1: वाजी वाह,
0: ले ले नीर है तो उन बहावा
1: बहावा थे मोर भैया।
0: भैया उस समय का होते
1: वाजी वाह।

0: Ciao, pia, ciao. Acá.
1: ले मोर भैया
2: हुआ की बा
1: माता तारा मती रोहित कुमार बेटा ला उठा ली भैया।
2: अच्छा
1: उठा करके अपन छाती हृदय में लगा ली।
2: वाह वाह मोर भैया
1: लगा के कहे बेटा
2: हाँ।
1: समय हर सांझ हो गई
2: सांझ हो गए
1: कहाँ लेके जाऊँ।
2: वाह जी वाह
1: चंद्र मालिक के पास दो चार पैसा।
3: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बांस गीत। कलाकार थे गुलाल राम निषाद और साथी। किस्सा हरिश्चंद्र तारामती का था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं आपके कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कार्यक्रम को आज की हेडलाइंस के साथ। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल का दौर शुरू हुआ। महिला सिंगल्स में कोको गॉफ और कैरोलिना के बीच मुकाबला जारी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू होंगे। देर रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच कल से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर शुरू होगा और 17 वर्षीय अश्वथ एस पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स राउंड रॉबिन में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करते हुए भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बने। तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के साथ, जहां इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट के सेमीफाइनल का दौर शुरू हो चुका है और अब से एक से दो दिनों में फाइनल की तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन खिलाड़ी खिताबी मुकाबले के लिए दांवपेच लगाते नजर आएंगे। आज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल खेले जा रहे हैं, जहाँ कोको गॉफ और कैरोलिना के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अब से कुछ देर में मार्ता कोस्यूब और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने होंगी।
1: पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी ने इस विंबलडन में अपना शानदार सफर जारी रखते हुए फ्रेंच ओपन 2026 के उप विजेता फ्लेवियो कोबोली को 6-4, 7-6, 6-0 से हराकर पुरुषों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल हुए क्वार्टर फाइनल में फेरी ने कोबोली को 2 घंटे और 14 मिनट तक चले मुकाबले में मात दी। इसी के साथ आर्थर क्रोएशियाई दिग्गज गोरान इवानिसेविच की बराबरी करते हुए विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दूसरे वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी बन गए हैं। एक तरफ फेरी ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है तो दूसरी ओर ज्वेरेव ने भी अपने शानदार सीजन को जारी रखते हुए कुछ अहम उपलब्धियां हासिल की। 1.5 महीने पहले रोलैंड गैरोस में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के बाद ये जर्मन खिलाड़ी अपने करियर में पहली बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल तक पहुंचा है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने टेलर फ्रिट्स को 6-4, 6-4 और 6-2 से हराकर अपना सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया। अब उनका मुकाबला आर्थर फेरी से कल होगा। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल मुकाबले में यानिक सिनर का मुकाबला अपने 8वें विंबलडन खिताब के लिए खेल रहे नोवाक जोकोविच से होगा। फाइनल मुकाबला 12 जुलाई को खेला जाएगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो चारों ग्रैंड स्लैम में सबसे प्राचीन ये खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम माना जाता है वर्ष का। सेमीफाइनल मुकाबले शुरू हो गए हैं और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशेष सेमीफाइनल के जो आज के मुकाबले खेले जा रहे हैं, दोनों मैच को लेके क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास?
2: शक्ति, अभी कैरोलिना मुझोवा और कोको गॉफ के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, जो कि बहुत ही एक कांटे की टक्कर पे चल रहा है, क्योंकि पहला सेट कैरोलिना ने 6-2 से जीता, उसके बाद कोको गॉफ ने अगला सेट 6-1 से जीता। अभी मुकाबला तीसरे सेट में 6-6 की बराबरी से चल रहा है और मैच पॉइंट पे गेम चल रहा है। इसके कुछ ही देर बाद मार्ता कोस्यूब और लिंडा नोस्कोवा जो है वो आमने सामने नजर आएंगी। महिला सिंगल्स में इस बार बहुत सारे उलटफेर होते नजर आए हैं। एलिना रायबकीना, अरेना सबालेंका और सेरेना विलियम्स, जिन्होंने इस साल वापसी करी विंबलडन में, वो भी बाहर हो गई हैं। तो इस बार हमको एक नया चेहरा विजेता के रूप में दिखाई देगा।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक नया चैंपियन मिलेगा। और जिस तरह आपने अभी मुकाबले के बारे में बताया, तीसरा सेट चल रहा है और एक बेहद कड़ा और करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इस बार हमने विंबलडन में ऐसे मुकाबले देखे भी कि जो लोग सोचते थे कि ये 1 से 1.5 घंटे का खेल है, वो 5-5 घंटे तक के मुकाबले चले। तो ये आज का हाल है। और कल कौन कौन से मुकाबले होने वाले हैं विशेष मेंस सिंगल्स में?
2: मेंस सिंगल्स में जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा वो आर्थर फेरी और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। अलेक्जेंडर ज्वेरेव हाल ही में अभी फ्रेंच ओपन के विजेता हैं और आर्थर फेरी ने वाइल्ड कार्ड से एंट्री ली थी इस टूर्नामेंट में और बहुत ही शानदार प्रदर्शन के साथ वो सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला विश्व नंबर 1 यानिक सिनर और बहुत ही विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी नोवाक डी जोकोविच के बीच खेला जाएगा। जोकोविच 7 टाइटल पहले ही जीत चुके हैं, वो अपने 8वें टाइटल के लिए लड़ाई कर रहे हैं। रोजर फेडरर जो महान दिग्गज खिलाड़ी, वो 8 टाइटल जीत चुके हैं। तो अगर जोकोविच ये टाइटल जीत जाते हैं विंबलडन का, तो वो रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे।
0: जी बिल्कुल, सर्बिया के इस खिलाड़ी की नज़र जो है अपने आइडियल रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी, उनके रिकॉर्ड पर भी होगी कि उसकी बराबरी की जाए। लेकिन अभी कह सकते हैं कि एक बेहद कड़ा सेमीफाइनल मुकाबला उनको खेलना है सिनर के साथ। और अब इसके बाद बात करते हैं फुटबॉल के महाकुंभ फीफा विश्व कप की, जहां पर आज से क्वार्टर फाइनल के मुकाबले शुरू होंगे। आज देर रात 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। तो आइए जानते हैं किन किन टीमों ने इस दौर में जगह बनाई।
3: फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच धीरे धीरे अपने आखिरी सफर की ओर बढ़ रहा है। 48 टीमों के साथ शुरू हुए टूर्नामेंट में अब सिर्फ 8 टीमें बची हैं। फ्रांस, मोरक्को, स्पेन, बेल्जियम, नॉर्वे, इंग्लैंड, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड ने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। कुल 8 टीमों में से 6 टीमें यूरोप की हैं। इन 4 मैचों की विजेता टीम सेमीफाइनल खेलेगी और फिर फाइनल के बाद विश्व फुटबॉल को नया विजेता मिलेगा। इस वर्ष कई उलटफेर भी देखने को मिले, जब नॉर्वे ने ब्राजील जैसी चैंपियन टीम को राउंड ऑफ 16 में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि पराग्वे ने 4 बार की विजेता जर्मनी को राउंड ऑफ 32 के मैच में पेनल्टीज द्वारा हराकर उनका सफर समाप्त किया। फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना पहले भी फीफा विश्व कप जीत चुकी हैं, जबकि मोरक्को, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम को अभी भी अपने पहले खिताब का इंतजार है। इनमें से कोई भी टीम अभी तक फाइनल में नहीं पहुंची है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल या फाइनल तक का सफर उन टीमों का बढ़ता है जो पूर्व चैंपियन रही या फिर अपने पहले खिताब का इंतजार कर रही टीमें कोई करिश्मा करती हैं। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो यूरोप का दबदबा एकदम एक तरफा देखने को मिलता है। 8 में से 6 टीमें हैं। विशेष हमारे साथ हैं। विशेष, आज का जो मुकाबला होना है मोरक्को और फ्रांस के बीच में, किसका पलड़ा कितना भारी है?
2: देखिए शक्ति, मैं बताना चाहूँगा कि फ्रांस जो है वो 2 बार की विश्व विजेता रह चुकी है। फीफा विश्व कप उन्होंने 2 बार जीता है। और वहीं मोरक्को की अगर बात करें तो उन्होंने इससे पहले सिर्फ 1 सेमीफाइनल मुकाबला ही खेला है, तो ये उनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाला है। अगर इस विश्व कप की बात करें तो फ्रांस ने अपने पहले मुकाबले में सेनेगल को 3-1 से, दूसरे में इराक को 3-0 से, फिर नॉर्वे को 4-1 से और स्वीडन को 3-0 से और पैराग्वे को 1-0 से हराया था। तो फ्रांस जो है वो डोमिनेट करते हुए खेल रही है इस बार। वहीं अगर मोरक्को की बात करें तो उन्होंने प्रभावित किया है अपने खेल से, जब उन्होंने ब्राजील के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला, स्कॉटलैंड को हराया, हेती को हराया और राउंड ऑफ 32 में नीदरलैंड्स को पेनल्टी में 3-2 से शिकस्त दी और कनाडा को राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में 3-0 से हराया। तो अभी बहुत ही ज़्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं कि कौन इसको जीतेगा। हालांकि फ्रांस का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है और जो उनके मिडफील्डर हैं डियाज, उन्होंने अटैकिंग की जिम्मेदारी ली है इस बार और कहा है कि हम लोग किलियन एम्बापे को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। और कप्तान अशरफ हकीमी जो हैं मोरक्को के, उन्होंने भी इस चीज़ पर दिखाया है।
0: जी बिल्कुल, उन्होंने दिखाया है कि टीम जो है तैयार है एक बड़े मुकाबले के लिए और ऐसा ही एक बड़ा मुकाबला इंतजार कर रहा है ब्रिस्टल में, जहां भारतीय क्रिकेट टीम आज इंग्लैंड के साथ अपना 4th T20 मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी। ये मैच रात 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को अगर ये सीरीज ड्रॉ करानी है तो हर हाल में ये मुकाबला जीतना होगा।
4: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में इस दौरे की अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। इंग्लैंड फिलहाल श्रृंखला में 2-0 से आगे है, जबकि श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था। तीसरे T20 में इंग्लैंड से मिली 125 रनों की करारी हार के बाद टीम बड़े स्तर पर रणनीतिक बदलाव कर सकती है। टीम को इस मैच में अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। अभिषेक शर्मा इस सीरीज में अच्छी लय में दिखे हैं, हालांकि युवा वैभव सूर्यवंशी 2 मुकाबलों में अब तक अपना जलवा बिखेरने में नाकाम रहे हैं। ऐसा ही हाल कप्तान श्रेयस अय्यर का भी रहा है, जो अब तक सीरीज में अपने नाम के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। वहीं ईशान किशन, अक्षर पटेल और तिलक वर्मा भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। शिवम दुबे कुछ हद तक लय में जरूर दिखाई दिए हैं, लेकिन उनके बल्लेबाजी क्रम में लगातार बदलाव देखने को मिले हैं। श्रृंखला में अब तक इंग्लिश गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते ही नजर आए हैं। वहीं अगर भारतीय गेंदबाजी की बात की जाए तो उसमें भी धार दिखाई नहीं दी है। बीच के ओवरों में कमजोर और महंगी गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम को पिछले दोनों मुकाबलों में खामियाजा उठाना पड़ा है। दूसरी ओर इंग्लैंड के लिए घरेलू सरजमी पर इस सीरीज में अब तक सब कुछ सही घटता नजर आ रहा है। फिल सॉल्ट, जोस बटलर, जैकब बिथिल, सैम करन और टॉम बेंटन भी लगातार बल्ले से रन बना रहे हैं। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर नई गेंद से भारतीय बल्लेबाजों के लिए सरदर्द साबित हुए हैं, जबकि जोश स्टंग, आदिल रशीद और विल ने भी इंग्लैंड के लिए अच्छा अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में भारत एक नई ऊर्जा और रणनीति के साथ मैदान पर उतरकर अपना लक्ष्य सीरीज ड्रॉ कराने पर रखेगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो श्रेयस अय्यर की मैन इन ब्लू चाहेगी कि आज इस मुकाबले को जीता जाए और जिस तरह की अब तक की सीरीज गई है कुछ अच्छी और मीठी यादें लेकर के इंग्लैंड से लौटा जाए। और ऐसी ही एक याद जुड़ने वाली है अक्षर पटेल के खाते में, यदि वो आज प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं, उनको मौका मिलता है तो ये उनका 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच होगा। इस मौके पर अक्षर पटेल ने खुद भी कहा कि वे इस उपलब्धि के लिए बेहद उत्साहित हैं।
5: मैं फर्स्ट टाइम T20 खेल रहा था, तब इमेजिन भी नहीं किया होगा कि यार मैं 100 मैच खेलूंगा। बहुत ही स्पेशल टूर रहेगा ये इंग्लैंड वाला मेरे लिए, क्योंकि जैसे सेकंड T20 में 100 विकेट हुए एंड फोर्थ T20 में 100 मैचेस हो रही है, सो यू नो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है एंड मैं बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ ये मोमेंट को।
0: एक ऐसा ही स्पेशल डे कल भी इंतजार कर रहा है जहां महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड की टीमें एकमात्र टेस्ट मैच के लिए ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर उतरेंगी। 140 साल पहले इस मैदान ने पहले पुरुष टेस्ट क्रिकेट मैच की मेज़बानी की थी और अब ये मैदान 140 साल के बाद पहली बार महिला टेस्ट मैच की मेज़बानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया खेल के क्षेत्र में एक दूसरे के अहम सहयोगी हैं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा के दूसरे चरण में आज प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में खेलों के क्षेत्र में अतुलनीय विकास हुआ है।
6: भारत के एथलीट, भारत की टीम बेटर से बेस्ट होती जा रही है, यही कॉन्फिडेंस भारत को स्पोर्टिंग लीग के नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत होस्ट कर रहा है, भारत 2036 ओलंपिक्स को होस्ट करने का भी दावेदार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने भारत में खेलों के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विस्तार में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
6: खेलो इंडिया मिशन का नाम सुना होगा, ये अभियान पूल लेवल से ही हजारों खिलाड़ियों का एक पूल तैयार कर रहा है। भारत में स्कूल, यूनिवर्सिटी, नेशनल लेवल, स्कूल लेवल खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, इनमें लाखों एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं। भारत के रिमोट एरियाज में भी स्पोर्ट्स इंफ्रा तैयार किया जा रहा है। सांसद खेल महाकुंभ से गांव-गांव में स्पोर्ट्स को फिटनेस से जोड़ा जा रहा है, करियर अपॉर्चुनिटीज से कनेक्ट किया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट फील्ड में दिख रहा है।
0: तो खेल हर क्षेत्र में जोड़ने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस के साथ बैठक के बाद श्री मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की तुलना क्रिकेट के खेल से की और श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया आने वाले समय में कॉमनवेल्थ और ओलंपिक जैसे बड़े खेलों की मेजबानी करेंगे।
6: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन T20 जितने तेज है, पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। आने वाले वर्षों में दोनों देशों में ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे, इससे हमारा खेल सहयोग तो बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की भी अनेक संभावनाएं बनेगी।
0: तो क्रिकेट डिप्लोमेसी का एक शानदार पार्ट कहा जा सकता है इसको। और इसी कड़ी में भारत में भी एक शानदार पहल की गई है। अगले दशक में भारत को खेलों की दुनिया में एक बड़ी ताकत बनाने के मकसद से खेल मंत्रालय ने आज ओलंपिक खेलों से जुड़े सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों यानी NSF को निर्देश दिया है कि जो 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेल खेले जाने हैं उसके क्वालिफिकेशंस को लेकर के या फिर सिलेक्शन को लेकर के जो भी स्टैंडर्ड्स या फिर मापदंड हैं उनको समय रहते ही सार्वजनिक कर लिया जाए। और अंत में चलते चलते बात कर लेते हैं अश्वथ एस की, जिन्होंने पुणे इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर रॉबिन राउंड में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करते हुए भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। कन्याकुमारी के इस 17 वर्षीय लड़के ने अंतिम दौर में काले मोहरों से खेलते हुए अमेरिका के कर्णन वैद्यनाथन को हराकर ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। और अब श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय, अपने सुझाव आप हमें sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोत्स्युक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India and Australia adopt a joint declaration on defense and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific. Also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says India aspires to be one of world's top 3 economies, driven by motto of grow more, achieve more, addresses Indian diaspora in Melbourne. National Commission for Women forms a high-level expert committee to review regulatory framework and laws governing IVF clinics. Government waives basic customs duty on key components used in electronic devices to promote their domestic production. Iran accuses US of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks US bases in Bahrain, Kuwait and Qatar. And in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. And now the news in detail. India and Australia today adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deal was signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia.
6: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
5: Later, briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals.
7: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcomes today, adoption of the Joint Declaration on Defense and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
5: The Foreign Secretary said the two leaders also reviewed progress in economic cooperation. Following the India-Australia CEO's forum, they agreed to accelerate negotiations on the Comprehensive Economic Cooperation Agreement, building on the gains achieved under the Economic Cooperation and Trade Agreement, which has led to a 55% increase in bilateral trade. India and Australia also expanded cooperation in emerging technologies through the operationalization of the Australia-India Partnership for Cyber-Critical Technologies and Supply Chains. Australia also reaffirmed its support for India's Gaganyaan human space flight mission. The two leaders also reiterated their commitment to the Quad as an important platform for regional cooperation, including counter-terrorism and disaster relief. Prime Minister Narendra Modi today said India's aspiration to become one of the world's top three economies at the earliest is driven by the motto of Grow More, Achieve More. Mr. Modi was addressing the Indian community at the Marvel Stadium in Melbourne.
6: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है हम अधीर है बेसब्र है हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप थ्री इकोनॉमी बनना चाहते हैं.
5: Speaking at the Melbourne Meets Modi event, Prime Minister Modi also referred to Operation Sindoor. He said the operation demonstrated the effectiveness of India's homegrown defence systems in carrying out anti-terror operations.
6: भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
5: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से जारी है चित्रपट संगीत रावण। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं नंदिनी श्रीकर और विशाल शेखर की। पंछी जालूनवी ने इस गीत को लिखा है और संगीत तैयार किया है विशाल शेखर ने।

रावण। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी नंदिनी श्रीकर और विशाल शेखर की। इस गीत को लिखा था पंछी जालूनवी ने और संगीत तैयार किया था विशाल शेखर ने। और इसी के साथ चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए नाटक गांठ। लेखक हैं श्री डी एस भटनागर। निर्देशक हैं सत्येंद्र शरत।

0: अरे रानी, ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई?
1: क्या तैयार होती, तुम्हें आने में कितनी देर हुई है कुछ अंदाजा है?
0: क्या करता, लंच के बाद बड़े साहब ने बुला लिया, इस साल का शेड्यूल डिस्कस करते रहे। अब उनसे कैसे कहता कि आज शाम फिल्म देखने जाने का प्रोग्राम है, इसलिए जल्दी घर जाना चाहता
1: हूं। ये कोई नई बात है, तुम लाख कह जाओ जल्दी आऊंगा, मैं जानती हूँ तुम आ ही नहीं सकते। टिकट ले आए?
0: नहीं भाई, साहब के पास से उठा और सीधा यहाँ चला आया, देर जो हो रही थी वही ले लेंगे।
1: अच्छा हुआ जो नहीं लाए।
0: क्यों?
1: आज हम लोग फिल्म देखने नहीं जाएंगे।
0: वाह, ये भी कोई बात हुई, नहीं जाएंगे? अरे देर से सही, मैं आ तो गया और अभी शो का वक्त भी है।
1: फिल्म ना देखकर हम कुछ रुपए मेहमान की खातिरदारी के लिए बचा लेंगे, वरना बड़ी मुश्किल होगी।
0: मेहमान? कौन मेहमान?
1: ये खत आया है,
0: देखो।
1: तुम्हारे कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं मंगल सेन, मुरादाबाद में।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मंगल सेन, लाओ दिखाओ जरा।
1: ये लो।
0: प्रियवर नरेश, मुझे आशा है तुम और भाभी सकुशल होगे। मेरा इरादा तुम्हें थोड़ा परेशान करने का है, यानी मैं एक नौकरी के सिलसिले में 3 दिन के लिए बंबई आ रहा हूँ, तुम्हारे पास ठहरूंगा। तुम्हें कुछ कष्ट अवश्य होगा, लेकिन बीते दिनों की खातिर तुम उसे सहन कर लोगे, ऐसी आशा है। मैं अगले बृहस्पतिवार को अमृतसर एक्सप्रेस से पहुंच रहा हूँ। भाभी को प्रणाम, सस्नेह, तुम्हारा मंगल सेन। तो जनाब मंगल सेन आ रहे हैं
1: और हमारे लिए समस्याएं ला रहे हैं।
0: समस्याएं?
1: आज की महंगाई के जमाने में 4 दिन किसी को अपने घर रखना खेल नहीं है, समझते हो इसका मतलब क्या होता है?
0: क्या?
1: कम से कम 100 रुपए का खर्चा। इस महंगाई ने दुखी कर दिया है, आया गया कोई भी अच्छा नहीं लगता, भगवान जाने कब तक चलेगी ये महंगाई।
0: रानी, ये महंगाई खत्म नहीं होगी, ये बढ़ती ही जाएगी जब तक विश्वव्यापी जनसंख्या विस्फोट बंद नहीं होता। ये सीधा डिमांड और सप्लाई का मामला है।
1: तुमसे जब भी कोई बात करो तुम अपना समाजशास्त्र ले बैठते हो। मैं घर की समस्या की बात कर रही हूँ, जनाब करने लगे विश्व की समस्याओं की बातें।
0: तुम समझती नहीं हो रानी, हमारा 2 आदमियों का परिवार एक इकाई है, इसकी कोई भी समस्या एक इकाई की समस्या है। अगर विश्व की लगभग सभी इकाइयों की वही समस्या हो तो वो विश्व की समस्या हो जाती है। इसी रूप में जनसंख्या बढ़ने की समस्या विश्व की समस्या है, क्योंकि वो किसी एक परिवार की नहीं, हर परिवार की समस्या है।
1: बस जी, रहने भी दो अपना लेक्चर। मैं कह रही थी वो आएंगे आपके दोस्त, उनके सामने खाने को क्या रखेंगे, क्या नाश्ते में रखेंगे, वो कहाँ सोएंगे? इस छोटे से कमरे में गैर मर्द के रहते मुझे नींद नहीं आएगी, मैं बहुत परेशान हूँ।
0: तुम बिल्कुल परेशान मत हो रानी, ये सब चिंता मुझ पर छोड़ दो। देखो 6:15 बजे हैं, 10 मिनट में तुम तैयार हो जाओ, 5 मिनट का रास्ता है, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धो लेता हूँ।
1: भाग दौड़ में सिनेमा देखना मुझे नहीं अच्छा लगता, कहीं इंटरवल तक जाकर मेरा सांस ठहर पाता है।
0: ओफो, अब तैयार हो जाओ मेरी अच्छी रानी।
1: अच्छा, ये क्या दूध वाले, फिर एक बोतल
2: दूध? एक अज बाटली मिला माई जी।
1: 3 दिन से तुम एक ही बोतल दे रहे हो, हमें कम पड़ता है, हमारा टोकन 2 बोतल का है, 2 बोतल लाओ, समझे दूध वाले?
2: हम कैसा करेगा माई जी, जितना बाटली मिलेगा उतना देने सकेगा, जास्ती किधर से लाएगा? 2 मिलेंगे 2 देगा, 1 अज मिलेगा 1 अज देगा, नहीं मिलेगा नहीं देगा।
1: अच्छा सुनो दूध वाले।
2: बोलो माई जी।
1: कल सवेरे से हमें 3 बोतल दूध चाहिए, मेहमान आने वाले हैं 4 दिन के लिए।
2: अभी दूध कमती आता माई जी, अभी नहीं दे सकेंगे।
1: अरे भाई तुम कोशिश तो करो ना।
2: अरे खाली पीली आपको लाने को बोल के जाऊं, पीछू नहीं लाऊं, ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लगता। कोई कोई ब्लैक में देता सो अपना धंधा नहीं।
1: हम ब्लैक के दाम हमें भी नहीं चाहिए।
2: तो बराबर सवेर 2 बाटी लाएगा माई जी।
1: ठीक है 2 ही लाओ। ओह माय गॉड, क्या
3: आइए मैम साहब।
1: अंडे क्या भाव है?
3: 6 रुपया डजन।
1: 6 रुपए?
3: अंडा तो देखिए मैम साहब कितना बड़ा है, फार्म से अभी आया है।
1: अच्छा 6 ही अंडे दे दो।
3: बहुत अच्छा साहब, बहुत दिन में इधर आया मैम साहब।
1: हाँ पहली दुकान से सामान लेते थे ना तो वहीं से घर लौट जाते थे, आज आगे चले आए इधर।
3: ये देखिए और कुछ लेंगे, फ्रेश पनीर आया है।
1: नहीं नहीं नहीं। अच्छा एक डबल रोटी दे दो।
3: आज ब्रेड नहीं आया मैम साहब।
1: क्यों?
3: बोलते हैं फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर लोग स्ट्राइक कर दिए हैं, 3 दिन हो गया अभी समझौता नहीं हुआ, बनेगा नहीं फिर आएगा कहाँ से?
1: कब तक आने की उम्मीद है?
3: कौन बोलेगा मेम साहब, मजूर को पेट को रोटी नहीं मिलेगा काम क्यों करेगा? महंगाई सबके लिए है मेम साहब, लेकिन सबसे जास्ती त्रास देती है गरीब को।
1: हाँ हमें भी त्रास देती है, सबको त्रास देती है।
3: वो बरोबर मेम साहब, लेकिन सरकारी बाबू को महंगाई का कितना भत्ता मिलता, उसका पगार डबल हो गया। मजूर क्या हवा में जीता है मेम साहब, उसका भी बाल बच्चा है, उसको वही पुरानी मजूरी, उसको भी पेट भरना मांगता है।
1: हाँ वो तो है ही। अच्छा ये लो रुपए 6 अंडों के।
3: मेहरबानी मेम साहब, फिर आना मेम साहब।
1: अच्छा
0: मिस्टर मंगल सेन का गोरेगांव की इस खोली में स्वागत है।
4: खोली
0: जनाब? भैया बंबई में सिंगल रूम को खोली ही कहते हैं। बस यही अपना ड्राइंग रूम है, यही बेडरूम, यही डाइनिंग रूम, यही स्टडी, और वो पीछे वो छोटा सा खिड़की लगा बरामदा है ना, वही रसोई है हमारी। रानी, रानी
5: आई।
0: ओ, देखो ये है श्री मंगल सेन, हमारे कॉलेज के सहपाठी। और मंगल ये है हमारी श्रीमती जी रानी।
4: प्रणाम भाभी।
1: नमस्ते। जब से आपका पत्र मिला ये बहुत खुश हैं, आपकी बहुत तारीफ करते हैं।
4: ये इनका प्यार और बड़प्पन है भाभी, मैं तारीफ के लायक कहा।
1: ये आपको स्टेशन पर ठीक टाइम पर मिल गए थे?
0: अरे मैं भागता दौड़ता प्लेटफार्म पर पहुंचा ही था कि मंगल सेन की ट्रेन आ गई।
4: भाभी नरेश स्टेशन पर ना मिलते तो मैं आपके इस बंबई शहर में आदमियों के जंगल में खो जाता। नरेश की मदद से ही मैं आपके यहाँ पहुंच पाया।
0: अब बनो मत यार।
4: नहीं भाई, मैं छोटे शहर का रहने वाला हूँ, इस महानगरी में पहली बार आया हूँ, भला कहाँ मुरादाबाद और कहाँ बंबई।
1: हाँ ये तो है ही। अच्छा मैं चलकर नाश्ता तैयार करती हूँ।
0: हाँ, अच्छा हाँ ये तो बता भाभी कैसी है?
4: ठीक ठीक ही चल रही है।
0: और तू?
4: देख ले यार तेरे सामने खड़ा हूँ, सिंगल वन पीस।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा यार ये बता तेरा यहाँ आज क्या प्रोग्राम है?
4: 10:30 बजे कोलाबा पहुंचना है इंटरव्यू के लिए। कई तरह के टेस्ट करते हैं ये लोग, 3 दिन लगेंगे
0: बस। अरे इतनी दूर बंबई आए हो और सिर्फ 3 दिन के लिए?
4: नरेश ये वक्त भी बड़ी मुश्किल से निकाला है यार, बस शनिचर की रात को लौट जाऊंगा, मुरादाबाद से ही रिजर्वेशन करवा लिया था।
0: अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट करके तुम हमारे साथ ही चलना। बात यह है मंगल, रानी एक स्कूल में पढ़ाती है, हम दोनों 8:30 बजे नाश्ता करके घर से चल देते हैं, 8:50 की लोकल पकड़ते हैं, रानी भायखला उतर जाती है और मैं विक्टोरिया टर्मिनस तक जाता हूँ, तो वहाँ तक मेरे साथ चलना, वहाँ से मैं तुम्हें कोलाबा की बस में बैठा दूंगा।
4: नरेश मैं यहाँ से सीधी टैक्सी ना कर लूँ कोलाबा तक?
0: बात क्या है यार? भैया यहाँ फासले बहुत लंबे हैं, टैक्सी में तुम्हारे बहुत रुपए खुल जाएंगे।
4: ओह ऐसा, तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चला चलूँगा।
0: और मंगल हम लोग सवेरे का नाश्ता घर पर करते हैं, लंच और शाम की चाय जहाँ भी हों रेस्टोरेंट में ले लेते हैं, शाम को घर लौटते हैं तो एक एक प्याला चाय बिस्कुट के साथ लिया तो लिया, नहीं फिर रात को डिनर लेते हैं। और यार कभी कभी तो इतना स्ट्रेन हो जाता है कि रात का खाना भी रेस्टोरेंट में ही खाना पड़ता है।
4: यानी दिन भर घर का खाना नसीब नहीं होता।
0: भाई क्या करें मंगल, बड़ी मशीन जैसी जिंदगी है इस महानगरी बंबई में, छोटे शहरों जैसा आराम और सुकून यहाँ कहाँ।
4: पर कहते हैं यार जिसने शहर बंबई नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा।
0: हाँ वो बात अपनी जगह ठीक है। अच्छा अब तुम बाथरूम हो,
4: किधर जाना?
0: इधर आओ, वो खुला हुआ दरवाजा देख रहे हो?
4: हाँ हाँ,
0: वो 3 कमरों के बाद।
4: हाँ
0: वही बाथरूम।
4: अच्छा फिर मैं रहा। नरेश भाई मैंने तैयार होने में देर तो नहीं लगाई ना?
0: क्या कहने हैं मंगल सेन, अरे खूब स्मार्ट दिख रहे हो। अरे इस सज धज के साथ तुम्हारे सिलेक्शन में कोई शुभ नहीं हो सकता।
4: अरे मत बनाओ यार।
0: मैं क्या बनाऊंगा तुम्हें, तुम बने बनाए बिग बॉस हो। बस सिलेक्शन कमेटी के सामने जाने की देर है।
4: तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए अग्रिम धन्यवाद।
0: बॉस ब्रेकफास्ट आ ही रहा है। क्या बताएं मंगल, बड़े शहर बस नाम के ही बड़े हैं, यहाँ हर चीज की दिक्कत है, रहने की जगह से लेकर खाने पीने की चीजों तक, अब देखो तुम्हारी भाभी ने सारी मार्केट छान मारी पर उन्हें ब्रेड नहीं मिली। पराठे सिखवाऊं तुम्हारे लिए?
4: नहीं नहीं यार, पर नरेश हमारे यहाँ इतनी दिक्कत नहीं है, चीजें खुलेआम मिलती हैं। मैं सफर के लिए एक डबल रोटी लेता आया था, वो वैसे ही रखी है, निकाला देता
0: हूँ। नहीं भाई उसे रहने दो, ये तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि।
4: क्या अजीब लगेगा यार, अरे चीज पास है, काम आ जाएगी, नहीं तो पड़ी पड़ी सूख जाएगी। मैं लाता हूँ।
0: हाँ ये बात तो है, काम तो आ जाएगी।
4: लो
0: हाँ रानी जरा जैम ले आना। मंगल दोस्त तुम्हारी डबल रोटी से ब्रेकफास्ट तो पेट भराव हो जाएगा। अच्छा ये बताओ तुम शाम को कब तक फ्री हो जाओगे?
4: क्या कह सकता हूँ, ये तो दिन भर के प्रोग्राम पर डिपेंड करेगा।
0: मैं इसलिए पूछ रहा था कि आज शाम को मैं और रानी एक बर्थडे पार्टी में इनवाइटेड हैं, वहाँ से 10:30 से पहले नहीं लौट सकेंगे।
4: कोई हर्ज नहीं, मैं थोड़ा घूम लूँगा, बम्बई देख लूँगा, गेटवे है, मैरिन ड्राइव है, चौपाटी है।
0: बिल्कुल ठीक, मगर तुम्हारे रात के खाने में देर हो जाएगी, हम लोग तो घर लौटकर ही बना पाएंगे।
4: ऐसा कोई बात नहीं, मैं किसी होटल में खा लूँगा।
0: यार मंगल तुम्हें दिक्कत तो होगी लेकिन।
4: ठीक है नरेश, तुम इस बात को इतना तूल क्यों दे रहे हो? मैं घूम फिर कर और खाना वाना खा कर कोई 10:30 के करीब लौटूंगा, ठीक है ना?
0: माइंड ना करना मंगल, बम्बई की लाइफ ही कुछ ऐसी है कि।
4: इट्स ऑल राइट नरेश, आई अंडरस्टैंड।
1: मैं देख रही हूँ नरेश, कल रात जब से तुम्हारे दोस्त मंगल सेन विदा हुए हैं तुम मनमने से हो रहे हो, क्या बात है?
0: क्या बात होती, कुछ भी नहीं है।
1: कैसे नहीं है? तुम कल रात से बहुत तनमने हो रहे हो, न जाने क्या सोच रहे हो, ऐसा लगता है जैसे अपने अंदर गुम हो गए हो। तुम्हें मेरी कसम, बताओ क्या बात है?
0: कोई खास बात नहीं।
1: फिर भी कुछ तो है।
0: रानी तुम्हें याद होगा जब हम कानपुर थे अपनी इस नौकरी के इंटरव्यू के सिलसिले में मुझे हेड ऑफिस दिल्ली जाना पड़ा था।
1: हाँ।
0: वहां मैं अपने कॉलेज के जमाने के एक दोस्त सुंदरलाल के यहाँ ठहरा था।
1: हाँ, और वहां से लौटने पर भी तुम कई दिन अनमने से रहे थे इसी तरह।
0: हाँ दिल्ली में सुंदर ने अपनी परेशानियों के बावजूद मुझे बड़ी खातिरदारी से रखा था, महंगाई तब भी थी और मुझे जो परेशानियां अब हैं वो तब सुंदर को थी, लेकिन मैं वहां से लौटा तो उसके लिए अपने मन में गांठ लेकर।
1: उन्होंने बुरा सलूक किया था तुम्हारे साथ?
0: उनका सलूक बहुत अच्छा था लेकिन वहां न जाने मुझे क्या हो गया, मैं उनके हर बर्ताव में अपनी बेइज्जती देखने लगा।
1: बिलावजह?
0: हाँ बिलावजह। लेकिन अब जब मंगल मेरे पास यहां रहकर गया है वैसे ही जैसे मैं सुंदर के यहां रहा था, तो मुझे सुंदर के बड़प्पन और अपने छोटेपन का बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा है। सच पूछो तो मैंने मंगल को अपने घर एक वक्त ढंग से खाना भी नहीं खिलाया, इसके मुकाबले में सुंदर ने मेरी बड़ी खातिर की थी और मैं इतना ओछा निकला कि उसके बर्ताव में बनावट और कमी देखता रहा।
1: उस पुरानी बात के लिए दुखी होने से क्या फायदा?
0: नहीं रानी, अपने अनुचित बर्ताव का मेरे दिल पर बड़ा भारी बोझ है। मैंने जब सुंदर को लिखा कि मुझे इंटरव्यू के लिए दिल्ली आना है और मैं उसके पास ठहरूंगा, तो उसने तार से जवाब दिया था।
1: हाँ हाँ मोस्ट वेलकम, मुझे याद है।
0: मैं दिल्ली पहुंचा और सुंदर के यहां ठहरा, वो किसी सरकारी कॉलोनी में कमरा लेकर रह रहा था। सवेरे जब अपने अपने काम पर जाने के लिए हम और सुंदर अपने कमरे से बाहर निकले तो भाभी दरवाजे तक आई थी, उन्हें जैसे कुछ ख्याल आ गया, उन्होंने धीरे से आवाज देकर सुंदर को बुलाया। मैं दरवाजे के पास ही खड़ा था, उनकी बातें मैं साफ सुन सका।
5: देखो जी, परसों तुम 20 रुपए लाए थे ना, उनमें से सिर्फ 4 बचे हैं, दो का शाम को दूध आ जाएगा। तुम और रुपयों का इंतजाम कर लेना, नहीं तो कल ना दूध आ सकेगा, ना चाय बन सकेगी, ना सब्जी।
6: आज रात के लिए सब्जी है या नहीं?
5: कल शाम 4 रुपए की सब्जी आई थी, उसमें से 3 टमाटर बचा लिए हैं, आलू है, गोभी है। सब्जी कितनी महंगी है, पर मेहमान के आगे रुखी दाल रोटी नहीं रखी जाती। अपनी ना सही, मेहमान की इज्जत तो है।
6: अच्छा, मैं कोशिश करूंगा, मांगूंगा लोगों से दफ्तर में, कोई देता ही नहीं, सबकी हालत ऐसी है। परसों 20 रुपए बड़ी मुश्किल से मिले थे। अच्छा, और कुछ
5: नहीं? बस इसी का ध्यान रखना।
6: अच्छा,
0: तो रानी, हाथ तंग होते हुए भी सुंदर ने मेरी आभगत में कोई कसर नहीं होने दी। मुझे वहां बड़ा अपनापन, बड़ा स्नेह मिला, मैं बहुत खुश था। उस दिन रात को खाना खाने के बाद बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो कब आधी रात बीत गई पता ही नहीं चला। हम बातें करते रहे, कॉलेज की, प्रोफेसरों की, लड़कों की, बातें जो खत्म होने में ही नहीं आती थी।
2: अरे भाई नरेश, हा? वो हरमिंदर याद है तुम्हें? न्यूटन हॉल में रहा करता था।
3: अरे किसकी याद दिला दी सुंदर। जितना मोटा था उतना ही ऊंचा चौड़ा, हंसने हंसाने वाला
2: पूरा देव था देव। बड़ा संतरा छील कर फांकों का गोला साबुत मुंह में ऐसे रख लेता था जैसे कोई मुंह में रसगुल्ला रख ले।
1: सच?
3: और क्या भाभी,
2: उसका मुंह मानो जूस निकालने की मशीन था। 2-3 बार मुंह चलाया और रस गायब।
1: अरे नहीं,
3: बड़ा ही दिलचस्प आदमी था। मेरा यार एक दिन प्रोफेसर वालिया की क्लास में सो गया, तुम्हें याद है ना सुंदर?
2: हाँ, अच्छी तरह।
1: हद हो गई, और प्रोफेसर वालिया को पता नहीं चला?
2: देवी जी, वालिया अपनी घड़ी देखते रहते थे, जब 10 मिनट रह जाते तो लेक्चर खत्म करके रोल कॉल लेते थे। उनकी क्लास को हमेशा कुछ मिनट पहले छुट्टी मिल जाती थी।
1: वाह, बड़ी मौज थी लड़कों की।
3: और क्या भाभी, वालिया के स्टूडेंट्स उन्हें अब तक याद करते हैं।
1: उनकी क्लास में सो गया हरमिंदर?
3: हाँ भाभी, हुआ ये कि हरमिंदर पीछे की बेंच पर बैठा करता था। वालिया ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए मुड़े तो हरमिंदर बेंच पर लेट गया। लेक्चर के बाद रोल कॉल लेते हुए वालिया ने हरमिंदर का नाम पुकारा, हरमिंदर सूद। लो जी, वहां जवाब नदारद। दोबारा नाम पुकारा, हरमिंदर सूद, और निगाह उसकी सीट की तरफ उठाई। लड़कों ने भी पीछे मुड़कर देखा। हरमिंदर आंखें मलता हुआ खड़ा हो रहा था, बोला, अरे भाई मुझे क्यों जगा दिया। सारी क्लास हंस पड़ी, वालिया भी हंसने लगा।
1: प्रोफेसर वालिया ने उसे डांटा नहीं?
2: नहीं, रोल कॉल पूरी करके स्टाफ रूम चले गए।
1: ये कैसा लड़का था, यही कुछ पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज आता था?
3: अरे भाभी, हर क्लास में ऐसे कुछ लड़के जरूर होते हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं होता, मस्त मलंग होते हैं, 2-4 घंटे की तफरी के लिए कॉलेज आते हैं। और हाँ सुंदर, हरमिंदर की प्रोफेसर शास्त्री से भी तो कुछ कहा सुनी हो गई थी ना?
2: हाँ, तुम्हें याद होगा। हाँ, हमारी मॉरल क्लासेस प्रोफेसर शास्त्री लिया करते थे।
3: हाँ, बिल्कुल,
1: उनके यहाँ भी हरमिंदर ने कोई ऐसी हरकत की?
2: हाँ, प्रोफेसर शास्त्री गांधी जी के भाषा संबंधी विचारों के बारे में बता रहे थे। गांधी जी कई भाषाओं के ज्ञाता थे, गुजराती उनकी मातृभाषा थी, अंग्रेजी, संस्कृत उन्होंने स्कूल में पढ़ी थी, बाद में उन्होंने और भाषाएं भी सीख ली थी, हिंदी, उर्दू, तमिल। और
1: कितनी बड़ी बात है, हमें तो एक भी भाषा ठीक से नहीं आती।
3: वो तो है भाभी।
2: गांधी जी की चर्चा करते करते प्रोफेसर शास्त्री अपने बारे में बताने लगे कि वो खुद भी कई भाषाएं जानते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, पाली, बांग्ला, फारसी और एक दो और। हरमिंदर कभी बैठे बैठे बोल उठा, सर, यू आर ए लिंग्विस्ट। लड़के समझे हरमिंदर ने शास्त्री जी की लैग पुलिंग की है, हंसी की एक हल्की सी लहर क्लास में दौड़ गई।
1: प्रोफेसर शास्त्री बहुत बिगड़े होंगे?
2: नहीं देवी जी, वो स्वभाव से बहुत शांत थे। बड़ी संजीदगी से उन्होंने कहा, नहीं हरमिंदर, मुझे जितनी भाषाएं आती हैं वो मेरे लिंग्विस्ट कहलाने के लिए काफी नहीं है, मैं तो भाषाओं का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, आजकल जर्मन भाषा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बस फौरन हरमिंदर बोल उठा, अरे छोड़िए सर, कहीं बुड्ढे तोते भी पड़े हैं।
1: अरे कैसा बदतमीज था।
2: एक सेकंड के लिए क्लास में सन्नाटा छा गया, फिर सारी क्लास ठाका मारकर हंस पड़ी।
1: प्रोफेसर शास्त्री ने सजा नहीं दी उसे?
2: शास्त्री जी बहुत सज्जन आदमी थे, उन्होंने उसी वक्त क्लास डिसमिस कर दी। बाद में हरमिंदर ने शास्त्री जी से क्षमा मांगी और बात खत्म हो गई।
6: बाप रे, कितनी देर हो गई, चौकीदार पहरा देने लगा।
5: वो तो 11 बजे से हर आधे घंटे पर आवाज लगाता रहा है, पर आप लोग बातों में इतने मगन थे कि
0: कितना अच्छा कट गया भाभी, वरना हम इसे सोकर नष्ट कर देते।
6: तो अब सवेरे तक का वक्त नष्ट करने के बारे में क्या राय है जनाब? 2 बजे हैं।
0: जो पंचों की राय सो हमारी राय।
6: तो फिर सोया जाए।
5: हाँ भाई, आज तो बहुत देर हो गई है।
0: हाँ, मेरी वजह से देर हो गई भाभी। अच्छा भाई, गुड नाइट।
6: गुड नाइट नरेश।
1: वहां तुम्हारा खूब जी लगा होगा।
0: हाँ, जब तक लगा तब तक लगा। दूसरे दिन मुझे न जाने क्या हो गया, मुझे वहां कुछ भी अच्छा न लगता था। उन लोगों के हंसने बोलने में बनावट, भाभी की बीमारी बहाना महसूस होने लगी। एक एक मिनट मुझे वहां खलने लगा। फिर मैं हूं हां में बात करता रहा और काम खत्म होने पर पहली गाड़ी से वापस कानपुर आ गया, सुंदर के लिए अपने दिल में गांठ लेकर। मैंने तय कर लिया अब कभी सुंदर से नहीं मिलूंगा।
1: तुम्हारे इस तरह ऐंठ जाने की कोई वजह थी ही नहीं, तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल अनुचित था, असंगत था।
0: आज मैं समझता हूं, सुंदर की भी वही परेशानियां थीं जो आज बंबई में मैं महसूस कर रहा हूं। रहने के लिए छोटा सा एक कमरा, कॉमन बाथ लैट्रिन, सिर से ऊपर महंगाई, मामूली तनख्वाह, दूर दूर के फासले, बसों का खर्च।
1: उनकी परेशानियां तुम्हारी परेशानियों से ज्यादा थीं। कम तनख्वाह में एक बच्चा सामने था, एक होने वाला था।
0: हाँ, तुम ठीक कहती हो रानी,
1: ऐसी जिंदगी एक जंजाल है।
0: पुराने दोस्त का आना किसे बुरा लगता है रानी,
1: लेकिन कोई मेहमान को कहां तो ठहराए और क्या उसकी खातिर करे।
0: जब मैं दिल्ली गया था, भाभी मुबारक मर्ज में मुब्तिला थी, उन्हें कामकाज करने में मुश्किल पड़ती थी, इसी वजह से उनके बड़े बच्चे को उसकी नानी ले गई थी। उस हालत में भी भाभी ने मेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आने दी थी।
1: इस सब के बावजूद तुमने वहां से लौटने के बाद आज तक उन लोगों को एक खत भी नहीं लिखा, कितनी बुरी बात है।
0: उस वक्त मैं शैतान की गिरफ्त में था, लेकिन मंगल के आने पर मुझे सुंदर से अपनी तुलना करने का अवसर मिला और उस तुलना में सुंदर महान निकला और मैं बहुत छोटा, ओछा और बौना।
1: अपने को इस तरह बुरा भला कहने से तुम्हें चैन हासिल नहीं होगा।
0: हाँ, जब तक मेरे दिल की ये गांठ नहीं खुलेगी, जब तक मेरे दिल का ये मैल नहीं धुलेगा, मुझे सुकून हासिल नहीं होगा। मैं सुंदर से माफी मांगना चाहता हूँ, वो मेरा पुराना दोस्त है, वो मुझे जरूर माफ कर देगा, जरूर माफ कर देगा। मैं उसे खत लिखूंगा।
1: फिर देर क्यों करते हो, जो सोचा है कर डालो, मैं राइटिंग पैड लाती हूँ, ये लो।
0: हाँ, लो। प्रियवर सुंदर, इतने दिन बाद मेरा यह पत्र पाकर तुम अवश्य चकित होगे, पर यह जानकर प्रसन्न भी होगे कि अगले सप्ताह में दिल्ली पहुंच रहा हूं, तुमसे बहुत सी जरूरी बातें करनी हैं। भाभी को प्रणाम, तुम्हारा नरेश।
1: बस अब इस बात को अपने मन से दूर कर दो, भूल स्वीकार करना पाप से मुक्त होने जैसा है।

0: आपकी इस विजिट को हम नहीं मानते, अब आप भाभी जी को साथ लेकर आइएगा।
1: गर्मियों की छुट्टियों में जब उनका स्कूल बंद होगा ना भाभी, तभी आने की कोशिश करेंगे।
0: कोशिश नहीं, पक्की बात कीजिए। लगता है आपके भाई साहब स्कूटर ले आए।
1: हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अच्छा भाभी, इजाजत दें, प्रणाम।
0: अच्छा भैया, नमस्ते।
2: नरेश, तुम बंबई लौटने भी लगे, लेकिन वो जरूरी बातें तो तुमने की ही नहीं जिनका तुमने अपने पत्र में जिक्र किया था।
1: हाँ सुंदर, तुमने ठीक याद दिलाया। तुम्हारे पास आकर मैं भूल गया था कि मैं क्यों आया। सुंदर, तुम जितने ग्रेट आदमी हो, मैं उतना ही छोटा बौना।
2: यार बेकार की बात मत करो, काम की बात करो नरेश, गाड़ी का वक्त हो रहा है।
1: सच मानो, मैं यही कहने के लिए आया था।
2: मैं समझा नहीं।
1: सुंदर, पिछली मर्तबा मैं जब यहां आया था, भाभी की तबीयत खराब थी, फिर भी उन्होंने मेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आने दी। पर एक दिन मुझे जाने क्यों ये ख्याल आया कि तुम लोग मुझसे ऊब गए हो, जानबूझकर मेरी उपेक्षा कर रहे हो।
2: तुम क्या कह रहे हो यार, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा।
1: बस तुम्हारे लिए मेरे मन में गांठ पड़ गई, उसे खोलने के लिए ही मैं आया था। तो मैं अपनी भूल बताकर तुमसे माफी मांगने, कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया।
2: कैसी बातें करते हो नरेश, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जीने के साधन संकुचित होते जा रहे हैं, लोगों की आर्थिक समस्या बढ़ती जा रही है, ऐसे जमाने में कौन किसकी अच्छी तरह से खातिरदारी कर सकता है। अगर यही स्थिति रही नरेश, तो मुझे डर है हमारी

गांठ, अभी आपने ये नाटक सुना। इसके लेखक थे श्री बी एस भटनागर, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुतिकरण सहायक सुदर्शन कुमार और तकनीकी सहायक दयानंद शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, सुरेंद्र सेठी, सुनीति कोहली, रामावतार शर्मा, प्रेम भाटिया, चांद नारायण सक्सेना और डॉली शर्मा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया था।

शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो चौपाल कार्यक्रम का विषय होगा उद्यानिकी फसलों में नर्सरी प्रबंधन। आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे डॉ. बलदेव अग्रवाल, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र बालोद। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 4003-482-4003-483 और 4003-484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी और इस कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित कुमार गंधर्व का काया राग पूरिया धनाश्री में बड़ा ख्याल। विलंबित रचना एक ताल में निपत है। बोल हैं बल गई जोत। द्रुत रचना 3 ताल में निपत है। बोल हैं कहाँ चला हो रे। तबले पर संगतकार हैं वसंत राव आचरेकर और हारमोनियम पर हैं गोविंद राव पटवर्धन। तो आइए सुनते हैं पंडित कुमार गंधर्व का काया राग पूरिया थनाश्री में बड़ा ख्याल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित कुमार गंधर्व का गाया राग पूरिया धनाश्री में बड़ा ख्याल। आपके साथ तबले पर संगतकार थे वसंत राव आचरेकर, हारमोनियम पर थे गोविंद राव पटवर्धन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत। अनुरोध गीत कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ सीमा शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आपकी पसंद के खूबसूरत गीतों के साथ हम हाजिर हैं, तो आइए सुनते हैं इस पहले गीत के लिए किन किन श्रोताओं ने अपनी फरमाइशें भेजी हैं। आप हैं पोटिया कला दुर्ग से सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू, पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर और कुशल शाह, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश से राजेश वर्मा, प्रीति और आर्यन वर्मा, मुन्ना भाई और पिंकी स्वर्णकार, ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श और सार्थक चंसोलिया, जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, खमारमुड़ा से आप हैं सतीश गिरी गोस्वामी, श्रेयांश गिरी गोस्वामी, ग्राम सरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर और सीताराम कांगड़ा, चर डोंगरी पिपरिया कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, अजय और जयकिशन साहू, पलारी से हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और पूजा वर्मा, गिर्रा पलारी से हैं वीरेंद्र साहू, सोनू आशीष और कपिल साहू। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी की लिखी है रचना। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है गजब।

अगले गीत के लिए फरमाइशें भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं दरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अल्पना यादव, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवहाणकर, सिद्धांत और टुकटुक गवहाणकर, अड़ार नांदगाड़ से माखन वर्मा, गोपी भूपेश और दीपेश वर्मा, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो से देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामोरिया, ग्राम फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद और पुष्पेंद्र डूडी, मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश और शीतल कश्यप, सोनू सुरेश और राजपाल पंकज, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा और अमित राय, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे, विनोद खडसे, भानपुरी मुसरा से आत्माराम यादव, सुखदेव और विदेशी यादव, भाटापारा से दानसी रावत दानू, शुभम, सौरभ और पद्मनी रावत। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार और वंदना शास्त्री की आवाजों में गुलजार की लिखी है रचना। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है पलकों की छाव में।

इस गीत के लिए फरमाइशें भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने। आप है लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा और पुष्पराज मरावी, मलियान सरथना मेरठ से अनिल जैन, संयम मुस्कान और जीवयम जैन, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा और संजय सोनी, मन की लोरमी से नारायण खांडे, रजनी तुषार, समीर खांडे, कस्बा बराड़ा अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल और रंजीत कौर, ग्राम कन्हैया जिला बालाघाट से अखिलेश कुमार यादव, ज्योति अंकित, श्रद्धा और सौरभ यादव, बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, सविता और स्वाति माखीजा, दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र और नोखीलाल वर्मा, वंदनानगर इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता और कार्तिक खर्चे, गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से पूजा रघुवंशी, नंदिनी बबीता रघुवंशी, दहियान बांदा बाजार राजनांदगांव से हरिओम साहू, रेवाराम साहू, रानू और सरस्वती साहू, ग्राम भरसुदा से भगवानी सेन, संतोषी, गजेंद्र सेन और चिराग सेन। कुछ खत हैं, लचनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी और शिवम साहू, शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, नासिर खान और अयाज अल्फैज खान, गोल बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद और परमानंद, धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे। आप सभी की फरमाइश पर आए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में राजेंद्र किशन की रचना। संगीत है चित्रगुप्त का, फिल्म का नाम है पतंग।

इस अगले गीत के लिए फरमाइशें भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं पहंदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत और लखनलाल देवांगन, गूढ़ाराज से पेंटर मनोज साहू, चित्रेखा देवेंद्र और लवीना साहू, अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रिहान, बाजार वार्ड महासमुंद से भीष्म दास, नर्मदा हिरमनी, दीपक और लक्ष्यदास, उवरेठी पारा भाटापारा से अनिता साहू, वीणा नेहा और मोनिशा साहू, ससपुर से छोटकू साहू, मोहित राम, लोकेश और रामकिशन साहू, भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल और चंपा साहू, चौरादा बार नवापारा से बलादा बाजार से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला, खुशबू और ज्योति ठाकुर, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, पहारा अहिवारा से पोषण बंछोर, चंद्र किरण और प्रीति बंछोर, कुछ खत है सिमगा से लवकुश सेन, प्रहलाद सेन, आदित्य, आशीष और प्रकाश सेन, श्रृंगी ऋषि, महानदी, सिहावा, पर्वतंचल, ग्राम बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, रिंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, वर्धमान रेडियो श्रोता संघ सिमगा से सविता प्रदीप जैन, मोनिका और शिवानी जैन, मगलोर से पुनुराम साहू राज, तेजेश्वरी साहू, राजश्री और राजवीर साहू, कोरदा लवन से हैं भूजर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद वर्मा, गुलशन कुमार और शिव कुमारी वर्मा, पावर हाउस भिलाई से जामुल से विकास वर्मा, खुशी ग्रंथ संजय और पूजा प्रधान, शिक्षक नगर दुर्ग से हैं राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा, हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस, शांति वैष्णव, रामनगर रायपुर से राजेश अम्बादे, शशिकला अम्बादे और पूजा अम्बादे, कोटा रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि, खुशी और ओजल वर्मा, दुर्गापारा रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक यादव। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म दो झूठ का ये गीत। इसे गाया है किशोर कुमार और उषा मंगेशकर ने। एमजी हशमत ने इस गीत को लिखा है और संगीत तैयार किया है शंकर जयकिशन ने।

0: बारिश तेज है, अरे अरे अरे भीग जाएंगे, अरे मैंने कहा बारिश तेज है।
1: इस अंतिम गीत की नई फरमाइशें भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं चिरमरी कुरासिया कालरी से, इंद्रपान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ और राम सहोदर, माँ महामाया चौक मेघा पारा, चिल्फी से रामकुशल पटेल, संतोषी, दीपांशु और दिव्या पटेल, नयागंज वार्ड भाटापारा से विष्णु साहू, पूरब साहू, वीरा, हर्ष और कुमकुम साहू, वार्ड नंबर 2 गंडई पंडरिया से शिवा यादव, राज यादव, रिंकू और तरुण यादव, सैया मालगी से सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवारानी, आकाश प्रतिभा, पूर्वी और पूनम चंद्रवंशी, गेंदा टोला बाजार चौक से बीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि, योगिता और गजेंद्र गुप्ता, बगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा और अदिति बंसोड़े, हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे, गेंदाटोला बाजार चौक से वीरेंद्र कुमार गुप्ता। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी की रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है बॉबी।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत अब यहीं समाप्त होता है। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत किया सीमा शर्मा ने। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियू को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. India and Australia today adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deals were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the 3rd Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said, "The Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia." Later briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said, "Both the sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals." Prime Minister Narendra Modi today said, "India's aspiration to become one of the world's top three economies at the earliest is driven by the motto of grow more, achieve more." Mr. Modi was addressing the Indian community at the Marvel Stadium in Melbourne.
2: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप थ्री इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
3: Speaking at the Melbourne Meets Modi event, Prime Minister Modi also referred to Operation Sindoor. He said, "The operation demonstrated the effectiveness of India's homegrown defence systems in carrying out anti-terror operations." Mr. Modi said, "The India-Australia partnership has reached new heights, driven by shared values, strong people-to-people ties, and expanding cooperation across key sectors." He described the 1 million strong Indian diaspora as a vital pillar of bilateral relations. Speaking on the occasion, Australian Prime Minister Anthony Albanese described the Indian community as a living bridge between the two countries. Union Home Minister Amit Shah stated that a secure border, a prosperous border region, and a vigilant society together can make the country secure. The Home Minister said this while addressing a conference of superintendents of police, that is SPs, from border districts in New Delhi today. Mr. Shah said, "The government is creating a robust system to make the country completely infiltration-free." He noted that the Narendra Modi-led government has scientifically increased border infrastructure by 400%. Referring to the Vibrant Villages program, the Home Minister said that under the initiative, efforts are being made to prevent migration, create jobs and ensure 100% implementation of government welfare schemes. Mr. Shah said, "The government is fencing the over 1,600-kilometer long India-Myanmar border at a cost of 31,000 crore rupees." He stressed the importance of ensuring that information on demographic changes caused by abnormal factors in border areas is communicated from the grassroots to the highest level at the earliest. The Home Minister stated that the government's objectives are to prevent proxy war, illegal infiltration, radicalization, narcotics trafficking, smuggling, drone-related threats, cybercrime, organized crime, and demographic changes, and to make border areas more livable. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has arrived in Oman after concluding his visit to Kuwait. Upon arrival, the External Affairs Minister was received by Director General, Foreign Ministry of Oman, Sheikh Ahmed Al Maskari. Dr. Jaishankar is currently on an 11-day trip to Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, New York, and Brussels. The National Commission for Women, that is NCW, today constituted a high-level expert committee amid growing concerns over irregularities in the rapidly expanding assisted reproductive technology, that is ART, sector. The panel will undertake a comprehensive review of the regulatory framework and concerned laws governing IVF clinics, ART centers, and gamete banks, with a focus on protecting the reproductive rights, dignity, and safety of women. Former judge of the Delhi High Court, Justice Asha Menon, will chair the expert committee. And that is the end of this news bulletin.
0: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:10 हुए हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा अब समाप्त होती है। प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ कल 5:53 पर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।